मन सामान्य बनाए रखने के लिए ये सबसे ज्यादा मदद करता है। जिन लोगों को हमेशा से थकान, कमजोरी एंड डिहाइड्रेशन होता रहता है, उसके लिए पानी पीना अति आवश्यक हो जाता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जरा सा कुछ हैवी खा लिया, जरा सा कुछ ऑयली खा लिया तो पेट खराब हो जाता है। ये अधिकतर उन लोगों को होता है जो गर्मियों में पानी कम और खाना ज्यादा खाते हैं। पाचन तंत्र को हमेशा से बेहतर बनाने के लिए भी पानी का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को लगता है हमारी स्किन हमेशा से जवा रहे, हम 45, 46, 47 की एज में भी 25 के लगे, तो उन महिलाओं को भी पानी की मात्रा को अपने जीवन में बढ़ा देना चाहिए, जिससे हमारी स्किन में निखार और ताजगी हमेशा बनाए रखता है। मांसपेशियों और जोड़ों के सही कार्य में ये सहायक होता है। अब आते हैं योग के दौरान शरीर में ऊर्जा बनाने रखने के लिए भी पानी का महत्व। योग को करते करते यदि हमें प्यास लग जा रही है, योगा को करते करते अगर हमें बीच में पानी की प्यास लग जा रही है, तो थोड़ा सा विश्राम करके हम पानी ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि योग के साथ साथ पानी को भी हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। योग करने से लगभग 20 से 30 मिनट पहले थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, एंड योग के तुरंत बीच में पानी बिल्कुल न पिए, थोड़ा सा बचे। योग समाप्त करने के बाद धीरे धीरे पानी पिए। बहुत ठंडा पानी तुरंत पीने के बजाय सामान्य तापमान का पानी बेहतर रहता है। गर्मियों में हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक छोटे से योग आसन है, जिसको करने से साथ ही साथ हमें पानी को पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। पूरे शरीर का व्यायाम एक सूर्य नमस्कार के माध्यम से हो जाता है, शरीर में ऊर्जा और लचीलापन बढ़ाता है। दूसरा आता है ताड़ासन। शरीर का संतुलन सुधारता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। फिर उसके बाद आता है भुजंगासन, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायक होता है। और उसके बाद आता है वज्रासन, भोजन करने के बाद किया जाने वाला सबसे आसान यह आसन होता है, जो पाचन में मदद करता है। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हमने आपको कई बार बता के रखा है कि मन को शांत करता है, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। शीतली प्राणायाम, जो बिल्कुल भी, ये मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा आवश्यक होता है गर्मियों में, जिसको करने से गर्मी में शरीर को ठंडक और मानसिक शांति देने वाला यह प्राणायाम माना जाता है। सुबह उठकर सामान्यता से पानी पिएं, फिर हल्का योग और प्राणायाम करें, ये एक स्वस्थ दिनचर्या होती है। दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी लेते रहें और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें, प्यास, थकान, कमजोरी। यदि आपको याद न रहे तो थोड़ा सा अपने लिए सचेत हो जाएं, यानी कि टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी शरीर की जरूरत है और योग शरीर व मन का संतुलन, दोनों का साथ गर्मियों में हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखता है। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों के लिए हम फिर से मिलेंगे एक नए योग सीरीज में। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। जैसा कि हम हमेशा से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए निरंतर कुछ न कुछ करते आते हैं, चाहे वो खान पान को लेकर के हो, चाहे वो योग अभ्यास को लेकर के हो, चाहे वो मानसिक शांति को लेकर के हो। क्योंकि कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य अगर एक बार गिर गया तो धन भी उसे उठा नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही आज जो कुछ हम लोग लेकर के आए हैं वो आपके लिए तो सबसे सर्वोपरि है ही, खास करके उन सभी के लिए है जो कि जॉब में है। आजकल बच्चे कम उम्र में ही उन्हें जॉब मिल जाती है, या फिर बड़े बुजुर्ग हों या छोटे बच्चे, उन्हें क्या हो जाता है कि मोबाइल की लत लग जाती है। मेरा इशारा शायद आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं और उसका निवारण और उसका संचालन हम खुद कैसे कर सकते हैं। संचालन से याद आया, जब हम अपने आप को स्वयं चलाने की कोशिश करते हैं तो ही बहुत सारी चीजें बिगड़ती हैं, बनती हैं। ठीक उसी को अगर हम स्वचालित रूप से करने लगते हैं तो हमारा शरीर

भी स्वस्थ रहता है, हमारा मानसिक स्तर भी अच्छा होता है और हम अपने मन के मुताबिक काम भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही योग प्राणायाम के साथ में एक ऐसी डिजीज के बारे में जो कि आजकल आम हो गई है। हर घर में हर एक दूसरे इंसान को ये प्रॉब्लम है ही, जो कि है सर्वाइकल। सर्वाइकल सबसे पहले हम जानेंगे कि वो है क्या, क्योंकि सर्वाइकल सिर्फ और सिर्फ मोबाइल देखने से या फिर कहीं घूमने फिरने से, अगर आप कहीं जा रहे हैं और हल्की सी अगर मोच आ गई तो लोगों को लगता है कि हमें सर्वाइकल हो गया है। सर्वाइकल एक्चुअल में है क्या? सर्वाइकल का मतलब है गर्दन का वो हिस्सा, यानी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन के ऊपर 7 कोशिकाएं C1, C7, ये जब सब एक साथ मिल करके, जब इस हिस्से की हड्डियां, डिस्क, मांसपेशियां या नसों में समस्या होती है तो वो आम बोलचाल में लोग इसे सर्वाइकल कहते हैं। ये क्यों होता है, ये इसके कारण क्या है? जैसे लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर पर झुककर काम करना और एक ही टक उसे देखते रहना, गलत तरीके से बैठना या सोना, आजकल बहुत ज्यादा देखा गया है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो, तकिया 2 ले लेना और 2 तकियों पर आराम से लेट

मामलों में यदि ये व्यायाम, योग और सही बैठने की आदत से हम इसकी आदत बना सकते हैं। फिजियोथेरेपी और जरूरत पड़ने पर दवाइयों में काफी आराम भी मिल सकता है, लेकिन कहते हैं ना, योग से जुड़ें और सही बैठने की आदत डालें तो हमें इन सब चीजों की भी कोई जरूरत नहीं होती है। यदि नस पर अधिक दबाव हो या गंभीर समस्या हो तो आगे जांच और विशेष उपचार की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसके कारण आपको लगता होगा कि शायद इसके कारण भी हम बता दें कि ये किन कारणों से होता है। यदि आपको लगता है कि आपको सर्वाइकल है तो ये कुछ ऐसे छोटे मोटे सिम्टम्स होने लगते हैं कि आपको गर्दन में हल्का सा दर्द होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा और या आपको उठने बैठने और चलने में भी प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसे नियम जो मैं आज आपको बताऊंगी, यानी सर्वाइकल में अपनाने वाले योग्य नियम। गर्दन को लंबे समय तक एक ही स्थिति में बिल्कुल ना रखें। मोबाइल को नीचे झुककर देखने की बजाय आंखों के सामने ही रखें और कम समय के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करें। जब भी आप मोबाइल का इस्तेमाल करें तो आप जीरो पॉइंट का ही, लेकिन आपको चश्मा लगा करके ही मोबाइल को देखना है। हर 30-40 मिनट बाद 2-3 मिनट का ब्रेक जरूर लें। यदि आप किसी जॉब में हैं या घंटों बैठकर आपको काम करना पड़ रहा है, बहुत ऊंचा या बहुत मोटा तकिया ना लगाएं, पतला तकिया बेहतर रहता है। अचानक गर्दन झटकने या भारी वजन उठाने से भी बचें। कई बार मैंने देखा है महिलाएं सुबह जब काम करती हैं अपने घरों में, पानी भारी से भारी बाल्टी को यूं ही झटके में उठा लेती हैं, या फिर जमीन पर कोई चीज गिर जाती है तो उसे झटके से झुक करके उठा लेती हैं। तो ये आदतें भी आगे चल करके आपको सर्वाइकल का शिकार बना सकती हैं। रोज 20-30 मिनट हल्की सैर करें। पर्याप्त नींद यानी कि 7-8 घंटे की नींद पर्याप्त नींद कहलाती है, जो कि हर किसी को लेनी चाहिए। सर्वाइकल के लिए योग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल कई घरों में सुनने को मिला है, देखने को मिला है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको यही कहते हैं कि आप अपना वजन कम करें और योग अभ्यास करें। गिरवा संचालन यानी गर्दन को धीरे धीरे ऊपर नीचे और दाएं बाएं घुमाने के लिए यह आसन किया जाता है। आप रोज 15-20 मिनट इस आसन को कर सकते हैं, जो कि है ग्रीवा संचालन। दूसरा है ताड़ासन। कई बार बहुत सारी सीरीज में हमने ताड़ासन के बारे में बताया है। भुजंग आसन, मकरासन, मामरी आसन, मांजरी आसन या उसे कैट काउ स्ट्रेच भी कहते हैं, बालासन और अंत में शवासन, जो कि 5-10 मिनट हम आराम की मुद्रा में जाकर के इसको कर सकते हैं। अब आता है प्राणायाम की स्थिति। अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम 10 मिनट और 5 मिनट करके आप अपने को स्वस्थ बना सकते हैं। सर्वाइकल के लिए आज मैं आपको एक डाइट चार्ट भी देने वाली हूं, जो कि सुबह से लेकर के शाम तक का आपको हर एक खाने की डाइट उसमें बताई जाएगी। सबसे पहले तो सुबह गुनगुना

सभी का स्वागत करती है आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। आप सुन रहे हैं पहली किरण, जहां हम हर सुबह को एक नई सोच, एक नई रोशनी के साथ जीने का तरीका सिखाते हैं, सीखते हैं और कुछ नए प्रयास से उन्हें ढूंढते हैं। और आज का विषय है मोरपंख। क्या कभी आपने गौर किया है उस मोरपंख के बारे में, जिसे हम किताबों में रखते हैं, मंदिरों में सजाते हैं या श्री कृष्ण के मुकुट में देखते हैं? वो सिर्फ एक सुंदर पंख नहीं, एक आध्यात्मिक संकेत है, एक संदेश है प्रकृति की ओर से अपने जीवन को हर रंग से सजाने के लिए।

मोर पंख, मयूर, पिकॉक, मोर, कितने खूबसूरत नाम हैं इस सुंदर से पक्षी के। जितना खूबसूरत ये दिखता है उतने ही खूबसूरत फायदे इसके पंखों के भी हैं। हमारे देवी देवताओं को ये अत्यंत प्रिय हैं। माँ सरस्वती, श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी, इंद्रदेव, कार्तिकेय, श्री गणेश, सभी को मोर पंख किसी न किसी रूप में प्रिय हैं। पौराणिक काल में महर्षियों द्वारा इसी मोर पंख के कलम बनाकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। मोर के विषय में माना जाता है कि ये पक्षी किसी भी स्थान को बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीजों के प्रभाव से बचा कर रखता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग हमारे अपने घरों में मोर के खूबसूरत पंखों को लगाते हैं। मोर पंख की जितनी महत्ता भारत के लोगों के लिए है शायद ही किसी अन्य देश के लोगों के लिए हो। हमारे यहाँ माना जाता है कि मोर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सबसे प्रभावशाली है। हालांकि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी देशों के लोग मोर पंख को दुर्भाग्य का सूचक मानते थे, लेकिन मोर पंख की शुभता का अनुभव होने के बाद उसे शुभ चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया गया। आज हम बात कर रहे हैं मोर पंख की। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार मोर को हेरा के साथ संबंधित किया जाता है। मान्यता के अनुसार आगर्स, जिसकी 100 आंखें थी, उसके द्वारा हेरा ने मोर की रचना की। यही वजह है कि ग्रीक लोग मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती के साथ जोड़कर देखा जाता है। लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली और धन धान्य व संपन्नता के लिए पूजी जाती हैं। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। मोर पंख को बांसुरी के साथ घर में रखने से रिश्तों में प्रेम रस घुल जाता है। एशिया के बहुत देशों में मोर के पंखों को आध्यात्म के साथ संबंधित किया जाता है। क्वान यिन, जो कि एक आध्यात्म का प्रतीक है, का मोर से खास रिश्ता माना गया है। क्वान यिन प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है, इसलिए संबंधित देशों के लोगों के अनुसार मोर पंख से नजदीकी अर्थात क्वान यिन से समीपता मानी गई है। मोर पंख के विषय में और मैं आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले ये प्यारा सा भजन।

आज हम चर्चा कर रहे हैं मोर पंख पर। बौद्ध धर्म के अनुसार मोर अपने सारे पंखों को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का ही प्रतीक माना जाता है। ईसाई धर्म में मोर के पंख अमरता, पुनर्जीवन और आध्यात्मिक शिक्षा से संबंधित हैं। इस्लाम धर्म में मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का प्रतीक माना जाता है। और हाँ, एक बात और आपने गौर भी किया होगा कि घरों में मोर पंख रखने से कीड़े मकौड़े घर में दाखिल नहीं होते, यानी इसके बारे में जितनी भी चर्चाएं हैं कि नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है, बिल्कुल सही है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं पहली किरण, जहां हर सुबह एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ आपका स्वागत करती है। आज की सुबह हम एक ऐसे पंख की बात कर रहे हैं जो ना तो उड़ता है ना ही बोलता है, फिर भी हजारों दिल में रंग भर देता है। जी हाँ, मोर पंख, जिसमें इंद्रधनुष छुपा है, शांति छुपी है और एक पूरी आध्यात्मिक दुनिया बसी है। कभी श्री कृष्ण के सिर का ताज बनता है तो कभी किसी संत की पिच्छी, कभी आंखों को सुकून देता है तो कभी मन को गहराई देता है। मोर पंख हमें सिखाता है, चुप रहो फिर भी चमको, झुको फिर भी मुकुट बनो, त्याग करो फिर भी सबसे सुंदर दिखो। तो चलिए, आज की पहली किरण के साथ हम जीवन के उन रंगों को अपनाएं जो सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि आत्मा को सजाते हैं। आप तैयार हो जाएं एक ऐसी उड़ान के लिए जो पंखों से नहीं सोच से भरी है, मोर पंख जैसी, बिल्कुल हर रंग से भरी हुई सोच। चलिए अब आपको एक और कहानी की ओर लेके चलते हैं, एक मोर पंख और भगवान। एक बार एक छोटा बच्चा था, नाम था आरव। बहुत चंचल, बहुत जिज्ञासु, लेकिन मन बेचैन रहता था। वो रोज भगवान से सवाल करता, भगवान आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, कहाँ हो आप, क्यों मुझे समझ नहीं आता कि मैं कौन हूँ। एक दिन वो पास के जंगल में गया और रास्ते में उसे एक चमत्कारी मोर पंख मिला और रास्ते में उसे एक चमकदार मोर पंख मिला। उसने उसे उठाया और अपने बैग में रख लिया। रात को सपना आया, एक तेज प्रकाश हुआ और उसी मोर पंख से भगवान की आवाज आई, बेटा जिस मोर पंख को तू सिर्फ एक सुंदर चीज मानकर बैग में रख लाया है, उसी में तुझे तेरे सारे सवालों के उत्तर मिल सकते हैं। आरव चौंका, सुबह उठते ही वो ध्यान में बैठ गया और मोर पंख को निहारने लगा। वो सोचने लगा, हर रंग है पर कोई शोर नहीं, मतलब बिना बोले भी अपनी उपस्थिति का प्रमाण दो, मौन में भी प्रभाव होता है। दूसरी बात आरव के जहन में आई, पंख झड़ता है पर मोर रोता नहीं, मतलब जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, त्याग के बाद भी सुंदरता बनी रह सकती है। फिर आरव ने सोचा, सभी रंग मिलकर ही बनते हैं सुंदर, कोई एक नहीं चमकता, मतलब सामूहिकता, सहयोग और संतुलन, यही जीवन का मूल है। श्री कृष्ण ने मुकुट पर उसे जगह दी क्योंकि वो हल्का था, सुंदर था और अहंकारी नहीं था, यानी ईश्वर उन्हीं को सिर पर बिठाते हैं जो सरल और समर्पित होते हैं। आरव ने उस दिन के बाद से ईश्वर से सवाल पूछना बंद कर दिया। अब वो मोर पंख को देखता और मुस्कुरा देता क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, ईश्वर किसी रूप में नहीं पर हर रंग, हर पंख, हर मौन में मिलते हैं। जैसे मोर पंख सिर झुकाकर मुकुट बनता है, वैसे ही जीवन में नम्रता और समर्पण ही असली शोभा है।

हैं अपना सुबह का आध्यात्मिक शो पहली किरण, जिसमें आज मैं बात कर रही हूँ आपसे मोरपंख की। तो चलिए मोरपंख के और भी गुणों से आपको रूबरू कराते हैं इस प्यारी सी कहानी के माध्यम से। हिंदू धर्म में मोर के पंख का विशेष महत्व है। मयूर पंख से माना जाता है कि नवग्रह की विपत्तियां जो होती सारी दूर हो जाती हैं। मोर के पंखों में सभी देवी देवताओं और सभी नवग्रहों का वास होता है। ऐसा क्यों होता है? हमारे धर्म ग्रंथों में इससे संबंधित कथा है। वो कथा ये है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को पक्षी शास्त्र में वर्णित मोर के महत्व के बारे में बताया और कहा कि प्राचीन काल में संध्या नामक एक असुर हुआ था। वह बहुत शक्तिशाली और तपस्वी असुर था। गुरु शुक्राचार्य के कारण संध्या देवताओं का शत्रु बन गया था। संध्या असुर ने कठोर तप कर शिवजी और ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी और शिवजी ने प्रसन्न होकर असुर को कई सारी वरदानी शक्ति प्रदान की। शक्तियों के कारण संध्या बहुत शक्तिशाली हो गया। शक्तिशाली संध्या भगवान विष्णु के भक्तों को सताने लगा था। असुर ने स्वर्ग पर भी आधिपत्य कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। जब किसी भी तरह देवता संध्या को जीत नहीं पा रहे थे, तब उन्होंने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार सभी देवता और सभी नौ ग्रह एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। अब वह मोर बहुत शक्तिशाली हो गया था। मोर ने विशाल रूप धारण किया और संध्या असुर का वध कर दिया। तभी से मोर को भी पूजनीय और पवित्र माना जाता है। तो ये तो थी नौ ग्रहों की कहानी। अब चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा भजन। अब चलते हैं मोर पंख के उन सभी रंगों की ओर जो अपने अंदर जीवन के हर एक सार को समेटे हैं। सबसे पहला रंग नीला, जो है शांति और भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक, और इससे ये समझ आता है कि ये रंग सत्य, असीमता और भक्ति का प्रतीक है। मोर का मुख्य रंग नीला श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। फिर आता है हरा, जो कि प्रकृति और समृद्धि का प्रतीक है। ये रंग जीवन संतुलन और करुणा को दर्शाता है। दिल के चक्र यानी हार्ट चक्र से जुड़ाव रखता है हरा रंग। बैगनी रंग यानी आध्यात्मिक ऊर्जा और रहस्य का प्रतीक। ये ध्यान, अंतर्ज्ञान और आत्मिक ऊंचाइयों का प्रतीक माना जाता है। सुनहरा यानी गोल्डन रंग दिव्यता और जागरूकता का प्रतीक। ये ब्रह्म ज्ञान, तेज और दिव्यता का प्रतीक है। आत्म प्रकाश की अनुभूति कराता है सुनहरा रंग। आत्म प्रकाश की अनुभूति कराता है सुनहरा रंग। पीला रंग बुद्धि और ऊर्जा का प्रतीक। मानसिक स्पष्टता, सूर्य की तरह आशावाद और आत्मबल का रंग माना जाता है पीला रंग। भूरा व ताम्र रंग स्थिरता और धरती से जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है। ये संतुलन और वास्तविकता को दर्शाता है। रूट यानी जड़ चक्र से जुड़ाव रखता है। अब आते हैं काले रंग की ओर। इसको गहरा नीला रंग भी बोला जाता है। रहस्य, शक्ति और मौन का प्रतीक। ये आत्मनिरीक्षण और गहराई का प्रतीक है। अज्ञात की सुंदरता है। तो कितने सारे रंगों को अपने एक छोटे से, हल्के से और सुंदर से पंख में समाहित करता है मोर। अब जान लेते हैं कि इन सभी रंगों का हमारे किन चक्रों से जुड़ाव है। मूलाधार चक्र, जो भूरे रंग या ताम्र रंग से संबंधित है। स्वाधिष्ठान चक्र, जो नारंगी रंग से संबंधित है। मणिपुर चक्र, जो पीले रंग से संबंधित है। अनाहत चक्र, जो हरे रंग से संबंधित है। विशुद्ध चक्र, जो नीले रंग से संबंधित है। और आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई भी कहते हैं, जो कि संबंधित है बैगनी रंग से। सहस्त्रार चक्र, जो सुनहरे या फिर उज्ज्वल प्रकाश से संबंधित है। तो इस तरह से हमारी पूरे जीवन को, पूरे ब्रह्मांड को और हर एक रंग को अपने आप में समाहित करके रखता है मोर पंख, जो देखने में तो एक साधारण सी वस्तु जैसा है, पर ये जीवन, आत्मा और ब्रह्मांड के रंगों का अद्भुत संगम है। इसमें हर रंग छिपा है और हर रंग हमें एक नई दिशा देता है।

मोर पंख। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मोर पंख को भारतीय संस्कृति में अत्यंत शुभ, पवित्र और आध्यात्मिक प्रतीक माना गया है। अलग अलग धर्मों और परंपराओं में इसका अलग अलग महत्व भी है। हिंदू धर्म में मोर पंख भगवान कृष्ण का आभूषण है। कृष्ण के मुकुट में मोर पंख होता है, जो प्रेम, करुणा और सौंदर्य का प्रतीक है। इसे पहनकर वे प्रकृति और जीवन से जुड़ाव दिखाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का नाशक माना गया है मोर पंख। मोर पंख को घर में रखने से बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। वास्तु दोष निवारक है मोर पंख। वास्तु शास्त्र में मोर पंख का प्रयोग दोषों को दूर करने में होता है। विशेषतः मुख्य दरवाजे पर मोर पंख लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है मोर पंख। सरस्वती माता के वाहन मोर को कई किंवदंतियों में माना जाता है कि सरस्वती माता का वाहन हंस के अलावा मोर भी है। इसलिए मोर पंख ज्ञान और कला का प्रतीक भी माना गया है। बौद्ध धर्म में मोर पंख का महत्व बुद्धि और करुणा का प्रतीक माना गया है मोर पंख। जी हाँ, बौद्ध धर्म के अनुसार मोर को करुणा और ज्ञान का प्रतिरूप माना जाता है। इसका पंख सज्जनता और विवेक का प्रतिनिधित्व करता है। विष को अमृत में बदलने की शक्ति रखता है मोर पंख। बौद्ध धर्म में ये भी कहा गया है कि मोर सांप यानी विष को खा जाता है और फिर भी सुंदरता में रहता है। ये बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार नकारात्मकता और सकारात्मकता के अनुसार नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने का प्रतीक है। अब बात कर लेते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म में मोर पंख का महत्व अहिंसा के प्रतीक के रूप में माना जाता है। जैन संत मोर पंख से बनी पिच्छी यानी झाड़ू का प्रयोग करते हैं ताकि किसी भी छोटे जीव को हानि न पहुंचे। ये करुणा और जीव दया का प्रतीक माना गया है। सिख धर्म में प्राकृतिक सौंदर्य और संतुलन का संकेत माना गया है मोर पंख। सिख धर्म में मोर पंख का कोई विशेष धार्मिक विधान नहीं है, परंतु गुरु गोविंद सिंह जी की पोशाक और शस्त्र सज्जा में कभी कभी मोर पंख दिखते हैं, जो सौंदर्य और वीरता के प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो अगर इन सभी के सारांश के रूप में जानेंगे तो हिंदू धर्म में श्री कृष्ण नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा और वास्तु उपायों के लिए अपनाया जाता है मोर पंख, जिसको आध्यात्मिकता, प्रेम और सुरक्षा की दृष्टि से जोड़ा गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार करुणा विषहरण क्षमता रखता है।

में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों है। तो मेरे भी जहन में ऐसा ही कुछ आया और फिर मैंने खोजबीन की, जिसपे मुझे निष्कर्ष रूप में ये पता चला कि ये परंपरा विशेषकर सिया मुस्लिम समुदाय और भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानीय सांस्कृतिक आस्था से जुड़ी है। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस्लाम धर्म और मुहर्रम की पृष्ठभूमि की ओर चलते हैं। मुहर्रम इस्लामी वर्ष का पहला महीना है, लेकिन सिया मुस्लिमों के लिए ये शोक का महीना होता है। 10वीं तारीख को यौमे आशूरा आता है, जिस दिन हजरत इमाम हुसैन, जो पैगंबर मोहम्मद के नवासे थे, करबला के मैदान में शहीद हुए थे। ये दिन त्याग, बलिदान, सत्य और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की मिसाल है। अब मोरपंख का इससे क्या संबंध है? मोरपंख करबला के प्रतीक के रूप में सांस्कृतिक परंपरागत तौर पे माना गया है। भारत, पाकिस्तान और कुछ अन्य एशियाई देशों में सिया मुसलमान अलम यानी ध्वज लेकर जुलूस निकालते हैं। अलम के साथ जो झंडियां या कपड़े लगे होते हैं, उनमें अक्सर मोरपंख या मोरपंख के आकार के तावीज या सजावट दिखाई देती है। हजरत अब्बास से जुड़ी मान्यता के अनुसार हजरत अब्बास इमाम हुसैन के भाई थे, जिन्हें बाबुल हवाज और शेरे करबला भी कहा जाता है। मान्यता है कि उनके अलम यानी झंडे की शान को मोरपंख से सजाया जाता है, जो बहादुरी, वफादारी और इज्जत का प्रतीक है। इसलिए मुहर्रम के पहले लोग मोरपंख को कपड़े या टोपी के साथ पहनते हैं, जो श्रद्धा, शोक और प्रतीकात्मक इज्जत के रूप से जुड़ा हुआ है। अब जानते हैं कि मोरपंख पहनने के भावार्थ क्या हैं। मोरपंख शांति, साहस, सुंदरता और पवित्रता का प्रतीक है। काले या हरे रंग के कपड़े के साथ में इसको धारण करने से माना जाता है कि ये शोक यानी काला इमामों की विरासत यानी हरा इस रूप में दिखाया जाता है। पहनना या लगाना, इसको धारण करना एक श्रद्धांजलि और करबला के बलिदान की याद माना जाता है। पर गौर करने की बात यह है कि इस्लाम में मोरपंख पहनने की कोई धार्मिक अनिवार्यता नहीं है। ये अधिकतर स्थानीय संस्कृति, सिया परंपरा और इज्जत की निशानी के रूप में उपयोग किया जाता है। मुहर्रम में मोरपंख का पहनना एक सांस्कृतिक श्रद्धांजलि है, हजरत अब्बास की बहादुरी और करबला की पवित्रता को सम्मान देने के प्रतीक के रूप में।

अब मैं आपको एक और कहानी की ओर लेके चलूंगी, जो कि मोर पंख पर ही आधारित है। एक सुंदर, भावनात्मक और शिक्षाप्रद कहानी, जिसे आप अपने रेडियो पर सुनने वाले हैं, उसी शो में जो आपका पसंदीदा है। जी हाँ, भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण, मेरे यानी आरजे आकांक्षा के संग। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं। कहानी का नाम है मोर पंख वाला उपहार। सादगी, श्रद्धा और ईश्वर से जुड़ाव दिखेंगे हम इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है वृंदावन के एक छोटे से गांव से, जहां एक नन्हा बालक कृष्ण प्रेम में डूबा रहता था। उसका नाम था नंदू। नंदू बहुत गरीब था। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे ना खिलौने, लेकिन उसके पास था एक मोर पंख। हर दिन वो पंख अपने माथे पे लगाकर खुद को कान्हा समझकर नाचता, मुस्कुराता और मंदिर जाकर कृष्ण भगवान से ढेरों बातें करता। लोग कहते पागल हो गया है, पर नंदू कहता, मोर पंख वाला कन्हैया मेरा दोस्त है और दोस्त से तो बात होती है ना। एक दिन गांव में बड़ा त्योहार आया, जिसका नाम है जन्माष्टमी। सभी बच्चे नए कपड़े पहनकर मंदिर में पहुंचे। नंदू के पास कुछ नहीं था, बस वही पुराना पंख। उसने उसे सजाया, साफ किया और भगवान के चरणों में रख दिया। वो बोला, कान्हा, सब लोग तुम्हें सोना चांदी चढ़ाते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये पंख है, लेकिन ये मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, तुम्हारे लिए लाया हूँ। तभी मंदिर के पुजारी ने देखा, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सिर से मुकुट गिर गया था और वहाँ वो नंदू वाला पंख खुद ब खुद उड़कर जाकर टिक गया। लोग चकित रह गए। पुजारी बोले, ये चमत्कार नहीं, श्रद्धा का प्रताप है। उस दिन से मंदिर में हर साल उसी मोर पंख की प्रतिकृति भगवान को पहनाई जाने लगी। नंदू अब भी वैसे ही है, सादा, मासूम, पर भगवान के सबसे करीब। ईश्वर को चढ़ावा नहीं चाहिए, ना सोना ना चांदी, उन्हें चाहिए भक्ति भाव और सच्चा प्रेम, और मोर पंख उसका प्रतीक है। तो चलिए फिर बांके बिहारी लाल को याद करते हैं और सुनते हैं ये बांके बिहारी वाला भजन।

अब जरा जानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मोर पंख का क्या महत्व है। वैज्ञानिक कारण है कि मोर पंख के रंग वास्तव में रंग द्रव्य यानी पिगमेंट के कारण नहीं होते, बल्कि एक विशेष तकनीक से बनते हैं जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरल कलरिंग। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मोर के पंखों की सतह पर माइक्रोस्कोपिंग स्ट्रक्चर सूक्ष्म रचनाएं होती हैं, जो प्रकाश को परिवर्तित यानी रिफ्लेक्ट और अपवर्तित यानी रिफ्रैक्ट करती हैं। जब सूर्य की किरणें इन सतहों पर गिरती हैं, तो अलग अलग कोणों से अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, जैसे नीला, हरा, सुनहरा, बैंगनी आदि। इसलिए जब आप मोर पंख को अलग अलग एंगल से देखते हैं तो रंग बदलते हैं, और ये इंद्रधनुषी प्रभाव कहलाता है। अब चलते हैं प्रकृति की दृष्टि से जानते हैं मोर पंख का महत्व। मोर पंख रंग बिरंगे इसलिए होते हैं क्योंकि ये मोर की पहचान और आकर्षण का माध्यम है, खासकर जब वह नाचता हो। नर मोर अपने रंग बिरंगे पंखों से मादा मोर यानी मोरनी को आकर्षित करता है। ये एक प्राकृतिक चयन का हिस्सा है। ये रंग सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि प्रभाव और संदेश देने के लिए भी होते हैं, जैसे जानवरों में ताकत, सुंदरता या उपस्थिति दिखाना। अब चलते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण की ओर और जानते हैं कि मोर पंख का क्या महत्व है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अनुसार मोर पंख के ये विविध रंग जीवन के हर भाव का प्रतीक है, जैसे नीला रंग शांत व कृष्ण का प्रेम, हरा रंग समृद्धि व प्रकृति का प्रतीक, सुनहरा रंग दिव्यता व ज्ञान देने वाला, बैंगनी रंग रहस्य और ध्यान में गूढ़ता लाने वाला। कहा जाता है कि मोर पंख में सातों चक्रों यानी एनर्जी चक्रास के रंग समाहित हैं, जिससे ये संपूर्ण ऊर्जा का संतुलन बनाए रखता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने मोर पंख को अपने सिर पर सजाया। ये सौंदर्य, विनम्रता, ज्ञान और प्रकृति से एकता का प्रतीक है। तो इस प्रकार विज्ञान के तौर पे अगर हम देखें तो मोर पंख स्ट्रक्चरल कलरिंग से प्रकाश का खेल है। प्राकृतिक रूप से देखें तो आकर्षण और संकेत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और आध्यात्मिक रूप से देखें तो सातों चक्रों और जीवन के रंगों साथ ही साथ में आत्मिक संतुलन बनाने में पूरी तरह से उपयोगी है मोर पंख।

अभी हमने बात की मोरपंख की, अब थोड़ी और गहराई में उतरेंगे और मंथन करेंगे। मोरपंख हमें सिखाता है कि जीवन के हर रंग को अपनाओ, चाहे वह सुख का हो या संघर्ष का, क्योंकि जब सभी रंग एक होते हैं तभी आत्मा इंद्रधनुष बनती है। कभी आपने मोरपंख को गौर से देखा है? उसमें कोई एक रंग नहीं, दर्जनों रंग होते हैं, नीला, हरा, सुनहरा, बैंगनी और जाने कितने। पर क्या ये सब रंग रंगों की दवात से आए हैं? नहीं, ये रंग आते हैं प्रकाश के खेल से, जो हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली रंग हमारी दृष्टि में होता है। विज्ञान कहता है ये स्ट्रक्चरल कलरिंग है, बिना रंग लगाए भी ये प्रकृति की ऐसी पेंटिंग है जो हर कोण से नया रूप दिखाती है। प्रकृति कहती है ये एक संदेश है, आकर्षण का, चयन का, जीवन का। मोर इन रंगों से न केवल खुद को सुंदर बनाता है बल्कि प्रकृति के साथ संवाद करता है। आध्यात्म कहता है मोर पंख वो है जिसमें सभी चक्रों के रंग छुपे हैं। ये नृत्य करता है तो लगता है ब्रह्मांड की ऊर्जा बोल रही है, इसलिए श्री कृष्ण ने इसे अपने मुकुट पर सजाया, क्योंकि ये सिर झुकाकर सिर सजाता है। क्या हम भी अपने जीवन को ऐसे ही नहीं जी सकते? सोचने वाली बात है। रंगों की कहानी है, पंखों की जुबानी है, ये मोर का उपहार नहीं, खुद ईश्वर की निशानी है। ना रोशनाई ना कूची, ना रंग की पहचान, फिर भी हर रंग बोले मैं हूँ इस जीवन का ज्ञान। कभी नीला बनकर शांति दे, कभी हरा बनकर संजीवनी, कभी सुनहरा बनकर जगाए प्रकाश की प्रेरणा। ये पंख नहीं जीवन के रंग हैं, जो हमें हर रूप में अपनाना सिखाते हैं। तो चलिए अपने जीवन को इन सभी रंगों से भरते हैं, एक नई ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं और आगाज करते हैं एक नई सुबह का। तो आइए अब इस मोर पंख से मंथन की ओर चलें, एक ऊर्जावान विचार और एक ऊर्जावान संदेश की ओर, जो सुनने वाले के दिल दिमाग को झकझोर देने वाला है और उसमें भर देने वाला है रोशनी। किस तरह की? कई सारे रंगों की, जो आपके जीवन में हर तरह से होती ही है। कभी खुशी, कभी गम, कभी गुस्सा, कभी प्रेम, कभी नाराजगी, कभी मुस्कुराहट और कभी आंसू के रूप में। तो ये सारे रंग जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो वो क्या हो जाता है? सदाबहार रूप में महक उठता है। शायद आपको ये जानकर झटका लगेगा कि जिस मोर पंख को हम इतनी श्रद्धा से सिर पर सजाते हैं, वो पंख खुद मोर के लिए दर्द का प्रतीक होता है। जी हाँ, हर साल जब पंख झड़ते हैं तो मोर चुपचाप उस बिच्छोह को सहता है। किसी से शिकायत नहीं, कोई चीख नहीं, क्योंकि वो जानता है जिसे आज मैं छोड़ रहा हूँ वो कल किसी के लिए प्रेरणा बन जाए। क्या हम भी उस मोर की तरह त्याग कर सकते हैं? क्या हम भी अपने दुख को किसी और की ताकत में बदल सकते हैं? बिल्कुल, सोचने वाली बात है। कभी कभी तुम्हारा सबसे सुंदर रूप तुम्हारे सबसे कठिन त्याग के बाद सामने आता है ना? तो आज का मंथन बस इतना कहता है, जीवन को रंग दो मगर अहंकार से नहीं, विनम्रता से। दिखो सबसे सुंदर मगर सबसे शांत रहकर, और जब समय आए त्याग का तो मोर की तरह मुस्कुराकर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा त्याग किसी और के मुकुट की शोभा बन सकता है। तो किसी की मुस्कान बने, किसी के मुकुट की शोभा बने, किसी के जीवन को आसान करें। अभी आप सुन रहे थे अपना रेडियो आध्यात्मिक कार्यक्रम जिसका नाम था पहली किरण। मैं थी आपकी रेडियो साथी आरजे आकांक्षा। अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ में। आज का विषय था मोरपंख, जो हमें सिखाता है बहुत सारे रंगों को अपने जीवन में आत्मसात करना। इन सभी रंगों के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे आज्ञा दें। राधे राधे, अल्लाह हाफिज, रब रखा।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ, नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात, आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉन स्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक, मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: Hey, क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan. Aajya Khan.
2: क्या बात है सुबह ही, हर रोज की तरह आज के मौसम ने भी हमको लाजवाब कर दिया है। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और आप इस वक्त सुन रहे हैं अपना मॉर्निंग वाला शो विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सुबह ही आपको पता है कि हम आते हैं, आपका वेलकम करते हैं। क्यों? क्योंकि अपना वेलकम कोई अपना ही करता है। कितना अच्छा लगता है ना जब आप अपने रिश्तेदार के यहाँ बड़े सालों बाद जाएं, या आप जब घर जाएं तो आपकी छोटी बहन या छोटा सा भाई आपका वेलकम करे, बहुत प्यारा लगता है। फिलहाल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपसे छोटा ही हूँ, बट ठीक है, मान लेने में क्या बुराई है यार। मैथ्स में आपने न जाने कितने सारे एक्स वाई जेड सब माने हैं। सो फिलहाल आइए, ये मानना मनाना तो चलता रहेगा क्योंकि ये मॉर्निंग वाला शो है। फिलहाल वक्त है आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ बढ़ने का। सो आज का थॉट ऑफ द डे क्या है ये तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा शॉर्ट सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, क्योंकि आज होने वाली है बहुत सारी बातें और आज है स्पेशल डे।

0: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan.
1: हाँ जी, तो वापस से आ गए हैं और इस बार वादे के अनुसार हम आपको बताने वाले हैं कि आज का मॉर्निंग शो क्या है, मॉर्निंग शो क्या है या थॉट क्या है। भाई इसलिए मैंने कहा क्योंकि थॉट पे डिपेंड करता है कि आज का शो कैसा जाएगा। तो देखिए ना, कितना खूबसूरत सा छोटा सा थॉट है। थॉट कहता है कि आपने कभी गौर किया है कि जो होगा देखा जाएगा कहना ही हमेशा सही फैसला होता है। पक्का किया है ना? इवन मैं खुद भी कई बार बोलता हूं, जब कोई सिचुएशन आती है मुझे लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपने घर वालों को बोलता हूं जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने फ्रेंड से बात करते वक्त जब वो टेंशन में होता है, मैं कहता हूं जो होगा देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, सच तो ये है। पर हां, उसको करने का जो कह सकते हैं सलीका है, वो ज़रूर हमारे हाथ में होता है। और सलीका कोई भी अपनाया जाए, लेकिन हिम्मत ना हारा जाए और ट्राई किया जाए, मुझे लगता है इससे बेहतर सलीका क्या हो सकता है। फिलहाल आपने भी ये डायलॉग बहुत मारे होंगे, इवन आपके फ्रेंड्स ने कमेंट भी किया होगा, अच्छा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जब होगा तब देखा नहीं जाएगा। बट एक्चुअल में सच बताया तो ये सच है कि जो होगा देखा जाएगा, ये कहना मतलब होता है खुद को यकीन दिलाना, क्योंकि हम इंसान हैं यार, हमको नहीं पता होता है कि आगे क्या हो सकता है। कुछ भी हो सकता है लाइफ में, कोई भी आ सकता है, कोई भी लाइफ से जा सकता है, लाइफ में कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, लाइफ का कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। बट क्या है, जो होगा देखा जाएगा। जैसे मैजिकल वर्ड थैंक यू एंड सॉरी हम हमेशा मानते हैं, मुझे लगता है इसको सुपर्ब मैजिकल वर्ड कहा जाए, जो होगा देखा जाएगा। बट ये वर्ड नहीं है, ये स्टेटमेंट है, ये बात है, ये वो एहसास है, ये वो वादा है जो हम खुद से करते हैं उस नेचर में जहां सच में हमको नहीं पता कि क्या होगा और क्या देखा जाएगा, लेकिन हम तैयार हैं, जो होगा देखा जाएगा। सो फिलहाल आज का थॉट मुझे लगता है आप तक पहुंच गया है, और अब आप भी इस तरह की सिचुएशन में खुद से कहने वाले हैं जो होगा देखा जाएगा।

0: आयु आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: मैं छाया पटवार रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

ये गाना किसी ने एक फ्लावर के सामने गा दिया था, और आज नहीं बल्कि 158 साल पहले गाया था, और उस फ्लावर ने इतना सीरियसली ले लिया कि भैया 158 साल बाद खिला है एक फूल। अब आप सोचेंगे यार मैं मजाक कर रहा हूँ, नहीं मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, दरअसल मैं बता रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में वैज्ञानिकों ने सियानैंथस हुकेरी नाम का एक दुर्लभ हिमालयी फूल को 158 साल बाद दोबारा खोजा है, और ये फूल भारत में आखिरी बार यकीन कीजिए कि 1867 में खिला था, ये दर्ज किया गया था, और तब से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर मिले इस बैंगनी नीले फूल का जो नंबर है वो 50 से भी कम है, यानी 50 से भी कम संख्या में है। दरअसल रिसर्चर्स ने इसे भारत में लुप्त प्रायः श्रेणी में रखने की सिफारिश की है, और ये खोज देश की हालिया सबसे अहम वनस्पति खोजों में से एक मानी जा रही है। अब अगर आप भी इस फूल को देख लेंगे तो मतलब आप धन्य हो जाएंगे भाई साहब, और जाहिर सी बात है इतना कीमती है। अगर आपको मैं ये कहूँ कि किसी को तोहफा करने का आपको मौका मिले तो ये फूल आप किसको तोहफे में देंगे, सोचिए। लेकिन साथ ही साथ ये गाना एंजॉय कर लीजिए।

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।

0: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan. Aajya Khan.
1: तो भैया, अगर आप भी आज के ज़माने में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको कोई कहता है चंपू, तो उसको साबित कर दिए यू आर नॉट चंपू, क्योंकि अब आप एआई के ज़माने में। सो चलिए हम बताते हैं, फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किया गया है मुफ्त एआई कोर्स, जिसको सिर्फ 4.5 घंटे में आप सीख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, और साथ ही इसका मिलने वाला है सर्टिफिकेट। सो कैसे करना है रजिस्ट्रेशन, आइए सब आपको बताते हैं। सो देखिए, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक अच्छा मौका है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मंत्रालय प्रौद्योगिकी, जी हाँ, यानी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया एआई मिशन के तहत युवा एआई नाम की एक पूरी मुफ्त ऑनलाइन एआई कोर्स लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है देश के 1 करोड़ लोगों तक एआई की बेसिक्स जानकारी देना। अब जाहिर सी बात है, ये कोर्स क्या देता है, चलिए बताते हैं। दरअसल ये कोर्स फ्यूचर स्किल्स प्राइम और आई गॉट कर्मयोगी जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, और इसे पूरा करने में लगभग 4.5 घंटे का वक्त लगता है। सो बात आती है कि भाई ठीक है, हमने 4.5 घंटे दे दिए, तो इस एआई से हमको मिलने क्या वाला है। तो आपको बता दें, एआई क्या है और कैसे काम करता है, पहली चीज आप ये बात जानेंगे। दूसरा, एआई का सुरक्षित और जिम्मेदाराना इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, ये अभी आप इसमें जानेंगे। भारत में एआई के वास्तविक उपयोग क्या है, इसको भी आप जानेंगे। एआई से जुड़े नैतिक पहलू कौन कौन से हैं, ये भी आपको बताया जाएगा। और साथ ही एआई में करियर की अपॉर्चुनिटीज यानी करियर के क्या मौके हैं, ये भी आप जानेंगे इस युवा एआई से। सो कौन कर सकता है आवेदन, ये भी हम बता दें, यानी कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। दरअसल आपको बता दें, ये कोर्स सभी के लिए खुला है, स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स, इवन यहाँ तक कि शिक्षक, वर्किंग प्रोफेशनल्स, बिजनेस ओनर्स, घर में काम करने वाली गृहणियाँ, ये एआई सीखने में इंटरेस्ट रखने वाला कोई भी इंसान इसमें शामिल हो सकता है। इसके लिए एआई का कोई पहले का अनुभव ज़रूरी नहीं है, यानी वो भी सीख सकते हैं जिनको एआई के बारे में एआई का ए भी नहीं पता है। सो इसके बाद हम बता दें आपको कि गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिलने वाला है। दरअसल सभी मॉड्यूल और असेसमेंट पूरा करने के बाद आपको भारत सरकार द्वारा जारी ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसे आप अपने रिज्यूमे, सीवी या लिंक्डइन प्रोफाइल में भी जोड़ सकते हैं। सो एआई की दुनिया में पहला कदम बढ़ाने का ये बेहतरीन मौका है। अगर आप भी फ्यूचर के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो इस कोर्स का फायदा आप भी ले सकते हैं। सो फिलहाल हम तो ले रहे हैं अगला म्यूजिकल ब्रेक, लेकिन आप ले लीजिए इसका फायदा, जिसको हमने कहा है युवा एआई। सुनते रहिए अपना 89.6 FM, सिर्फ अपने आरजे अदनान के साथ।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840 3395 84 88 40 35 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
5: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Arjia Khan. Arjia Khan.
1: ये खुशबू तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। अरे ये तो उसका परफ्यूम है। अरे ये स्मेल तो बारिश में ही आती है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो स्मेल से जुड़ी हुई होती हैं। जी हाँ, खुशबू यानी स्मेल। सो ये स्मेल के बारे में आपको आज एक जबरदस्त बात बताने वाले हैं, जिसको शायद आपने सुना होगा लेकिन इतने अच्छे से आप जान नहीं पाए होंगे। जाहिर है, अंदाजा मत लगाइए, मैं ही आपको बताता हूं एक ऐसा फैक्ट जो इंसानों के बारे में। दरअसल आज हम बात करेंगे एक ऐसे टाइम मशीन की जो हम सबके पास है, पर हमें अक्सर उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। आपने कभी सोचा है कि बारिश की पहली बूंदों के साथ मिट्टी की सौंधी सी खुशबू आते ही आपकी वो बचपन की बातें और वो छुट्टियां क्यों याद आ जाती हैं? या फिर किसी खास परफ्यूम की महक से आपके किसी पुराने दोस्त की याद आखिर क्यों आ जाती है? क्या ये कोई जादू है? ना ना ना ना, ये तो साइंस है। जी हाँ, दरअसल इसकी वजह जो है वो है लिम्बिक सिस्टम, यानी हमारी बाकी इंद्रियों की जानकारी

0: बीतता चला जाता।
1: सच
0: बिल्कुल पता ही नहीं चलता। अब देखो जब हमारी शादी हुई थी तो मेरी उम्र 20 साल थी और तुम्हारी 16।
1: सच आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
0: और आज मैं 45 साल का हो गया हूँ लेकिन तुम केवल 22 साल की हो।

0: Now you are listening. Good morning, Kota, with your favorite Arjia Khan. Arjia Khan.
1: अगर हमारी तरह आप भी परेशान है कि यार बचपन का नाता कोई गांव से रहा नहीं है और गांव में रहने का, ठहरने का, खाने का, आने का, जाने का बड़ा मन करता है, और आप भी कभी कभी हमारी तरह बाइक उठा करके निकल पड़ते हैं सड़कों की तरफ और सड़कों से होते हुए किसी गांव की सड़क की तरफ और सोचते हैं काश को कोई यहाँ पर होता हमारा, जिसके साथ हम भी बैठ करके गाँव का फील ले पाते। खैर, इस गांव के फील से मुझे त्रिपुरा का एक ग्राम यानी गांव याद आ रहा है जिसका नाम है अल्पना ग्राम। जी हाँ, जिसे मिला है ये टाइटल कि वो है बेस्ट टूरिज्म विलेज इंडिया का। अब आप सोचेंगे आखिर ऐसा क्या है। दरअसल आपको बता दें, त्रिपुरा का ये गांव जहां दीवारों पर उकेरी गई अनोखी कला इस गांव को और भी खास बना देती है और बना देती है ओपन एयर म्यूजियम। जी हाँ, आपको लगेगा जैसे किसी खुले म्यूजियम में आप आ गए। बड़ा ही बेहतरीन नजारा होता है। दरअसल अगरतला के पास लंकामूरा गांव की महिलाएं मिट्टी के घरों की दीवारों पर पारंपरिक अल्पना कला बनाती हैं। कच्चे चावल के पेस्ट से बनाई जाने वाली ये पारंपरिक बंगाली कला समृद्धि का प्रतीक है। सो इसे भारत सरकार द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज का नेशनल अवार्ड भी मिला है और इसीलिए इसको हमने बताया ना कि ये बेस्ट टूरिज्म विलेज है। दरअसल आपको बता दें कि अल्पना शब्द का अर्थ जो है वो कला से आया है, जो 1000 साल पुरानी पारंपरिक बंगाली लोक कला है। दरअसल ये शब्द संस्कृत के अलिपना से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है लेपना या रंगों से सजाना। सो गांव की इस अनूठी विरासत को देखने के लिए मकर संक्रांति के वक्त का अल्पना उत्सव मनाया जाता है। दरअसल अल्पना बनाना सिर्फ सजावट नहीं बल्कि नेचर के लिए एक अनूठा समर्पण भी दिखाता है, क्योंकि चावल के पेस्ट से बनी इस कलाकृति को चींटियां, कीड़े मकौड़े और पक्षी अपना भोजन बनाते हैं, जिसे कहीं ना कहीं परंपरा में भूत यज्ञ या जीवों के प्रति आभार जताना भी माना जाता है। आज इस गांव की पहचान एक जीवंत सांस्कृतिक धरोहर बन चुकी है, जहां के रहने वाले ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुले हैं। जब गांव की दीवारें, गलियां और रास्ते इस पारंपरिक कला से सज गए तो इस गांव को अल्पना ग्राम की पहचान मिल गई। सो क्या आप भी नहीं जाना चाहेंगे अल्पना ग्राम?

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
6: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
5: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
7: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
8: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
9: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं, क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व केनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

मोगैम्बो खुश हुआ, या फिर आपको याद होगा, हाँ जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दे। इस तरह के कई सारे डायलॉग्स हैं जो बॉलीवुड के हैं, लेकिन फिलहाल मीमर्स इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जी हाँ, सो आपको कुछ ऐसे मूवीज़ के कुछ खास डायलॉग्स हम बताने वाले हैं आज इस अपने इस मॉर्निंग शो में, जो कि मीमर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं और आप कई सारी रील्स में ऐसे डायलॉग्स को पाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि आप भी जब रील स्क्रॉल करते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे डायलॉग्स मिल ही जाते हैं। देखिए, बॉलीवुड ने सिर्फ बेहतरीन फिल्में या गाने ही पहली बात तो नहीं दिए हैं, बल्कि कई आइकॉनिक डायलॉग्स भी दिए हैं जो कि आज भी सदाबहार बन गए हैं। सो आज के वक्त में आइकॉनिक डायलॉग्स मीम्स बनकर के इंटरनेट पर सेंसेशन बन जाया करते हैं। दरअसल आपको बता दें, सोशल मीडिया यूजर्स बॉलीवुड के आइकॉनिक डायलॉग्स को मीम्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सो सिर्फ फनी ही नहीं, बल्कि कई सैड और सीरियस सीन भी फनी मीम्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। सो कुछ कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी फेमस हो गए हैं। अब जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दे, दरअसल ये डायलॉग सुपर कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी का है। ये सीन उस वक्त का है जब अक्षय कुमार राजपाल यादव को पैसा डबल करने का झांसा देता है। ये सीन अभी सबसे ज्यादा आइकॉनिक कॉमेडी सीन्स में से एक माना जाता है। मोगैम्बो खुश हुआ, दरअसल अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर मूवी मिस्टर इंडिया का ये डायलॉग अमरीश पुरी का है और ये फिल्म में खलनायक बने थे। सो फिल्म में खलनायक जब भी खुश होता है वो यही सिग्नेचर डायलॉग बोलता है। ये डायलॉग उनकी पहचान बन गया और आज भी इंटरनेट पर सबसे फनी मीम्स में से एक है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, भाई यह कैसे छूट सकता है। सो 2.5 किलो का हाथ हमारे सनी पाजी के पास तो है ही है, लेकिन सबसे पॉपुलर डायलॉग्स में से एक तारीख पे तारीख भी है। भले ही आज ये फनी मीम्स के लिए याद किया जाता है, लेकिन ये फिल्म दामिनी का सबसे सीरियस सीन था। सो वकील के रूप में सनी देओल पीड़िता को इंसाफ नहीं मिलने से परेशान होकर कोर्ट में अपना गुस्सा निकालते हुए नजर आते हैं और फिर इसी डायलॉग को बोलते हैं, अब भाई इन सारी रेस में मुझे घर जाना है। आलिया भट्ट कैसे छूट सकती हैं। जी हाँ, सो आलिया भट्ट का ये डायलॉग आज बेस्ट कॉरपोरेट मीम्स में से एक है, लेकिन ये फिल्मी दुनिया का यानी उस फिल्म का है जिसमें हमने कहा राजी। राजी का सबसे इमोशनल डायलॉग है। फिल्म में इंडियन स्पाई एजेंट बनी आलिया अपने मुल्क वापस जाने के लिए रोते हुए गुहार लगाती हैं। हालांकि ये आजकल आपको ऑफिस में ओवर टाइम करने वाले लोगों के मीम्स में नजर आता है। और एक डायलॉग जो भाई हम सब लोगों का काफी ज्यादा फेवरेट है, साला ये दुख खत्म का ही नहीं हो रहा है। तो दरअसल ये मीम भी इंटरनेट का सबसे पॉपुलर मीम्स में से एक है। हालांकि ये सीन जो आज मीम बन गया है, ये विकी कौशल की फिल्म मसान का सबसे सैड सीन है। सो विकी अपनी प्रेमिका को हमेशा के लिए खोने के बाद गंगा घाट पर अपना दर्द बयां करते हैं। और इस तरह बॉलीवुड के कुछ सीन्स डायलॉग्स आज भी मीम की दुनिया में मशहूर हो गए हैं। सो बॉलीवुड में आइकॉनिक डायलॉग्स की लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी है, और अब अगर आपको भी कुछ याद है तो आप भी बता सकते हैं।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening Good Morning Gonda with your favorite Aajya Khan.
2: भैया अब वापस से एक बार आपका स्वागत करते हैं आपके मॉर्निंग वाले स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। और आपने ट्यून किया रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। एक बहुत अहम बात जो कि आपसे साझा करना है। दरअसल आज के बच्चों को अगर हम देखते हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जो देख रहे हैं, ये कुपोषण से तो बच गए हैं, लेकिन अगर हम इंडियन में बच्चों की बात करें तो घेर रहा है इनको मोटापे का खतरनाक जाल। जी हाँ, अक्सर आप भी अपने घर में या अपने पड़ोस में या आते जाते बाजार में ऐसे कई सारे भारतीय बच्चों को देखते हैं, यानी हमारे ही सोसाइटी में, हमारे ही आसपास हमारे ही लोग होते हैं जिनके बच्चे जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा मोटापे से घिरे हुए नज़र आते हैं। दरअसल आपको स्टडी के बारे में अगर बताया तो स्टडी के मुताबिक भारत में जो बच्चे शुरुआती सालों में दुबले पतले थे वो उम्र बढ़ते ही तेज़ी से मोटापे का शिकार हो रहे हैं। 7 से 7 साल की उम्र में जहां 5.2% बच्चे ओवरवेट थे, वहीं 9 साल के होते होते ये आंकड़ा 3 गुना बढ़ करके 14.6% हो गया। सो बात आती है कि भाई कुपोषण घटा पर नई मुसीबत आखिर क्या है। दरअसल आपको बता दें कि सरकारी डेटा यानी पोषण ट्रैकर के हिसाब से पिछले 3 सालों में बच्चों में बौनापन यानी स्टडिंग और कम वजन की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी कमी इसमें आई है। इसके अलावा कम होना एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन अब बच्चों का अचानक ज़रूरत से ज़्यादा मोटा होना एक नई साइलेंट इमरजेंसी बनकर आ गया है। सो ये आपको भी पता है और ये हमको भी पता है कि हम अगर बाहर निकलते हैं या कहीं भी देखते हैं तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये कहीं ना कहीं मोटापे से परेशान हो रहे हैं। और ये सच में कहीं ना कहीं सच में ऐसा कह सकते हैं कि एक नई साइलेंट इमरजेंसी बन रहा है, यानी बच्चों में इस तरह का मोटापा सच में ये एक इमरजेंसी की अलामत है। फिलहाल आपको हम बताने वाले हैं कि वो क्यों फूलता है बच्चों का बॉडी इस तरह से, सो ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा शॉर्ट सा म्यूजिकल वाला ब्रेक। फिलहाल आप सुनते रहिए अपना गोंडा FM 89.6 FM, क्योंकि यही है गोंडा शहर की धड़कन।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 88403395 84 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

0: भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: Now you're listening Good Morning Gonda with your favorite RJ Khan.
2: सो ब्रेक के बाद एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, और इस वक्त आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सो जाने से पहले हमने बताया कि देखिए, आजकल हमारे घर या हमारे घर के आसपास दिख रहे बच्चे जो है वो मोटापे बीमारी से घिरे हुए हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों फूल जाती है बॉडी, ये हमें बताना है। दरअसल अगर हम स्टडी के हिसाब से आपको बताएं तो बच्चों के पास खाने की कमी नहीं है, बल्कि उनकी बेहद ख़राब लाइफस्टाइल इसके लिए ज़िम्मेदार है। जी हाँ, जंक फूड खाना, पोषण की कमी और फिजिकल एक्टिविटी यानी कि खेल कूद ना करना इस मोटापे का सबसे बड़ा कारण है। सो आखिर क्या है कि भविष्य में बीमारियों का बड़ा खतरा है? जी हाँ, बचपन का ये मोटापा आगे चलकर बच्चों में कम ही उम्र में टाइप 2 डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा रहा है। इसलिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यानी हमारी ये जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी देखभाल अगर हमने नहीं की, उनको फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं कराई और उनकी लाइफस्टाइल पर ध्यान नहीं दिया, तो हम बहुत बड़ी बीमारी की तरफ उनको धकेल देंगे। हालांकि ये कोई भी नहीं चाहता है कि इस तरह से हो, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा सच बात है। तो कहीं ना कहीं कोशिश करें कि अपने घर के बच्चे को खुले मैदान की तरफ ले जाएं, उसके साथ खुद भी खेलें, आउटडोर एक्टिविटी करें, जिससे आपका भी वक्त अच्छा गुजरे, आप भी फिट रहें और घर का बच्चा भी फिट रहे, और साथ ही साथ बच्चों को बैठे बैठे हर चीज़ के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल कराना भी सही नहीं है। बच्चों को निकलने दें, उनको खेलने दे, उनको सीखने दे, तभी शायद वो अपनी जिंदगी जी पाएंगे। तभी तो आज हम गर्व से कह पाते हैं कि भाई हम 90s के किड्स हैं, हमने अपना बचपना बहुत अच्छा जिया, इसमें कोई शक की बात नहीं। सो हम भी क्यों ना मौका दे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, और उसको भी मौका दे ताकि वो एक्सप्लोर करे। हालांकि इस बीमारी से बचाना हम सभी लोगों के लिए जरूरी है। आई होप कि ये बात आप तक जरूर पहुंची होगी, और आज से ही आप अपने घर के बच्चों और अपने जानने वालों के बच्चों को ये जरूर इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़े और उनकी लाइफस्टाइल बेस्ट हो।
3: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
4: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
4: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
5: अरे सुना
6: क्या,
5: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
6: वाओ,
5: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
7: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: भाई मोहन एक बात बता।
1: हाँ रिंकू पूछ।
0: कभी स्टेडियम में गर्मी क्यों नहीं लगती है?
1: भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा गर्मी नहीं लगती, पर मुझे नहीं पता तू ही बता क्यों नहीं लगती।
0: क्योंकि हर सीट पर फैंस होते हैं।

0: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Arjia Khan. Arjia Khan.
1: So, देखिए ना, देखते देखते आपसे विदा लेने का वक्त आ गया। लेकिन दरअसल मैंने एक कविता कहीं पढ़ी थी, हाँ तुम मेरे मित्र हो। ये कविता किसकी है मुझे ये तो नहीं मालूम पता चला, लेकिन मुझे बेहतर बहुत लगी। कविता लिखती कुछ यूं है कि तुम मेरे मित्र हो अगर तुम समानता, करुणा और मानवता में यकीन रखते हो। तुम मेरे मित्र हो अगर तुम किसी की सुंदरता से पहले उसके संघर्ष में उसके चेहरे की चमक देखते हो। तुम मेरे मित्र हो अगर तुम हर उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हो जो इंसान को इंसान नहीं समझता, तो तुम मेरे मित्र हो। तुम मेरे मित्र हो अगर तुम जातिवाद, पाखंडवाद, हिंसा, असमानता, अन्याय और अंधविश्वास के स्पष्ट विरोधी हो। हाँ तुम मेरे मित्र हो अगर तुम बराबरी, स्वतंत्रता और न्याय के लिए लड़ते हो। हाँ तो तुम मेरे मित्र हो। ये कविता मुझे बहुत पसंद आई। इस कविता ने बहुत छोटे हो करके भी बहुत कुछ कह दिया। शायद लिखने वाले इसीलिए लाजवाब लिखते हैं। फिलहाल आज का शो कैसा लगा ये हमको आप बता सकते हैं। फिलहाल अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए अपना रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: सुनोर भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM कोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर। क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
6: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
6: विजिट करें अल्टस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
8: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
9: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा TV एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335984। अब बारी है आपकी।
10: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
11: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
10: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
11: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
10: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
12: मैं ममता पांडे, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
13: की गूंज, राव की गूंज, राव की गूंज।
14: अभी रायपुर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा किरण दीदी?
15: समता मैम, आधे घंटे अभी और लगेंगे। और जिम्मी, ये लो आम का पना पियो, और देखो अब मुंह मत फुलाओ।
16: जिम्मी, तुम गुस्सा हो कि इतनी गर्मी में तुम्हें गांव ले जा रहे हैं, तो लौटते समय देखना चहक रही होगी।
14: पर आज गांव की गूंज की टीम एक पर्यावरण संरक्षक शिव कुमार मौर्य के गांव रायपुर जा रही है।
15: आज हम लोगों की कोशिश है कि लोगों को समझाएंगे कि कैसे इतनी गर्मी से बचें और धरती के टेम्परेचर को कम करने में हम सब सहयोग कैसे करें।
16: चलो तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग सुना देते हैं, जो 5 जून को तुमने भी गाया था ना पर्यावरण दिवस पर, तब तो सबसे ज्यादा तुमने ही लोगों को शपथ दिलवाई थी।

0: यह मत सोचिए गाना सुनाकर आप लोगों ने मना लिया, हम तो आप सबसे अभी भी गुस्सा हैं। एसी चलाकर आराम से रहते, कितना आराम था।
1: सब में हमारी प्यारी जिमी को लू लग जाएगी, सनबर्न हो जाएगा, और ये सारा टाइम रूम में ही रहती है, उसी में ही खाना खाती है, एक मिनट के लिए भी रूम से बाहर नहीं निकलती है।
2: इसकी मम्मी बता रही थी कि ये किसी को रूम में आने ही नहीं देती है। कहती है कि जितनी बार दरवाजा खुलता है उतनी जल्दी गर्मी अंदर आ जाती है।
3: ये तो बहुत गलत बात है। क्या 3 महीने गर्मी पड़ेगी तो ऐसी ही पड़ी रहोगी? इससे तो बीमार पड़ जाओगी।
0: मैं भी ऊब जाती हूँ, पर गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। आप लोग बताएं क्या करें। किरण दी का गाना सासू लड़ेगी तो पीसन बिठाए या पूरे दिन सुनते रहते हैं।
4: अरे सासू

0: जिमी, हम लोग गांव की गूंज की एक टीम है और हम ही लोग भागेंगे तो लोगों को कैसे समझा पाएंगे कि हम अपने गांव से कैसे जुड़ें।
1: गांव की गूंज की कोशिश है कि लोगों को गांव से जोड़ने की। शहर में टेम्परेचर कितना था? 47। और जब हम गांव पहुंचेंगे तब वहां पहुंच के देखेंगे कि गांव का टेम्परेचर कितना है।
2: गांव में पेड़, मिट्टी के घर, वैसे कई घर पक्के बन गए हैं, पर एक घर अभी भी है जो खपड़ैल का है। वहां पर देखना, तुम्हें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी।
0: ये तो हमें पता है, ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए और जब भी शरीर को ढकना चाहिए सूती कपड़े से ढकें तो लू नहीं लगती है। देखो सब में कितनी समझदार है हमारी जिमी, हम सब के लिए कॉटन के मोजे और लंबे वाले ग्लव्स भी लाई है।
1: सिर पर जो गमछा रखते हैं उसे गीला करके रखे, स्पेशली आदमी लोग गर्मियों में।
2: खूब सारा पानी पिए, छाछ, लस्सी, नींबू पानी, नारियल पानी और तरबूज खरबूज खूब खाएं। कच्चा प्याज लू से बचाता है, कहते हैं ऐसा।
0: देखो फ्लाई ओवर बन रहा है, इस कंस्ट्रक्शन के कारण ये एरिया कितना गर्म है। इस रास्ते में बहुत बड़े पेड़ थे, सब कट गए। फिर हम क्यों रोते रहते हैं कि गर्मी बढ़ रही है? हम लोग तो इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं।

0: इस बात पर हम सब जरूर ध्यान देंगे कि जितने पेड़ कट रहे हैं अब हम उससे दो गुना ज्यादा पेड़ लगाएंगे।
1: केवल नाम का वृक्षारोपण नहीं करेंगे फोटो खिंचवाने के लिए, बल्कि उसका तब तक ध्यान रखेंगे जब तक वह पेड़ बड़ा न हो जाए।
2: रायपुर आ गया, कितनी सुंदर बगिया है इनकी। ये तो सेब और पपीता है, यहाँ तो नहीं होता, फिर कैसे?
3: यह शिव कुमार मौर्य के पिताजी का शौक था, अलग अलग जगह के पेड़ सब्जी फल लाकर लगाते थे,
0: नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये किसान भी है और साइंटिस्ट भी है।
1: अरे अरे देखो, मनीराम को बेहोश हो गया, इसे हीट स्ट्रोक पड़ा है, इसको छाया में ले चलो।
2: पहले ठंडे पानी से पूरे शरीर को पोछो, कपड़े ढीले कर दो और तुम पंखा झलो, और कोई भाई जल्दी से एम्बुलेंस को फोन कर दो।
3: ठीक है, अब उसके घर वाले कहते हैं दारू बहुत पीता है, जो लोग दारू बहुत पीते हैं उनको हार्ट स्ट्रोक बहुत पड़ता है। किरण दी जरा समझा दो इसे प्लीज।

0: चलो चलो तुम लोगों को कुछ दिखाते हैं। देखो गौरैया कितने समय बाद दिख रही है।
1: इन लोगों ने छोटे छोटे घोंसले टांगे हैं, जिसमें ये गौरैया घर बनाती है। पीने के पानी के कितने सारे मिट्टी के बर्तन हैं।
2: हम लोग प्लास्टिक के परिंडे टांगते हैं, ये नहीं सोचते कि पानी कितना गर्म हो जाता होगा, और इतनी गर्मी में इतना गर्म पानी चिड़िया कैसे पिएगी।
3: धन्य है आप लोग और आपकी अच्छी सोच।
0: मनीराम की वाइफ मायके जा रही है, किरण दीदी आप ही समझाइए तभी ये मानेगी। अरे यही तो इन पक्षियों की देखभाल करती है।
2: अरे फिर ये सब तो गर्मी में मर जाएंगी।
3: अभी देखना किरण दीदी का लोकगीत सुनकर सब झगड़े खत्म हो जाएंगे।

0: चलो इनका झगड़ा तो खत्म हुआ, चलो पीपल की छाया में बैठते हैं और बेला लस्सी लेकर आई है उसे पीते हैं।
1: देखो देखो जिमी, यहाँ उतनी गर्मी नहीं लग रही है ना, और हवाएं भी गर्म नहीं है। शहरों में तो तेजी से पेड़ कट रहे हैं, गाड़ी बढ़ रही है और एक घर में कई एसी हो गए हैं।
2: कहीं फोर लेन सड़क तो कहीं अपार्टमेंट्स, बड़े बड़े मॉल, फ्लाईओवर। हम लोग खुश होते हैं देखकर कि हमारा शहर कितना मॉडर्न हो गया है।
3: हाँ सही कह रही हो, गर्मी बढ़ाने का कारण हम मनुष्य ही तो हैं।
0: पानी की परेशानी इतनी बढ़ती जा रही है, ये लोग बता रहे थे कि अब 100 फीट से नीचे पानी मिलता है।
1: गांव में तो शुद्ध पानी बहुत मुश्किल से मिल रहा है, जानवर बहुत परेशान होते हैं।
3: जितना पानी पीना हो उतना ही गिलास में लो, वेस्ट न करें, पानी दूषित न करें। घर पर जानवर और पक्षियों के लिए पानी के डिब्बे रखें, और हम सबको मिलकर यह जरूर करना चाहिए।
4: जल जीवन मिशन को मिलकर सफल करें।

0: लटका हुआ है। क्या हुआ?
1: मेरा मोबाइल खराब हो गया है और ऐसा लग रहा है कि दुनिया ही रुक गई है।
2: किरण दीदी, हो जाए वही वाला गाना, मेरा मोबाइल बिगड़ गयो।

0: श्वेता, तुम तो जानती हो मोबाइल से कितने हेल्थ इश्यूज होते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए मोबाइल खराब हो गया तो इतना दुखी मत हो।
1: सब जानती हूँ, पर फिर भी मोबाइल की इतनी आदत पड़ गई है कि बता नहीं सकते।
2: चलो चलकर मेडिकल प्लांट की बागवानी देखो, मन बदल जाएगा।
3: ये देखो एलोवेरा, तुलसी, अश्वगंधा, लेमन ग्रास, काली हल्दी और ये देखो ये रहा नीम।
0: यहाँ गांव में अगर किसी को दर्द हो रहा है तो उसका भी इलाज है। शुगर है तो उसके लिए कौन सी पत्ती खानी चाहिए उसको भी बताया जाता है। हर मर्ज का इलाज है, और जानवरों को कुछ हो जाता है उसकी तो अलग ही बात है।
1: लेडीज के चेहरे पर देखो कितना ग्लो है, ये ताजी सब्जियां, ताजे फल और ताजी हवाओं का असर है।
3: थैंक्स सभी को जबरदस्ती चिलचिलाती धूप में लाने के लिए और इतना सुखद अनुभव कराने के लिए। अब थैंक्स बोल दिया है तो एक गाना तो बनता है।
2: बिल्कुल जिम्मी,

0: बादल छाने लगे हैं, लगता है बरसात होगी। रायपुर में मौर्य जी के परिवार से बहुत कुछ सीखने को मिला।
1: पर्यावरण की रक्षा करेंगे, खूब पेड़ लगाएंगे और उनकी सेवा करेंगे,
2: पानी बचाएंगे और प्लास्टिक के प्रयोग की जगह पर मिट्टी के बर्तन और कांच के स्टील के बर्तन का यूज करेंगे।
3: देखना फिर हमारे आंगन में गौरैया आएगी, पेड़ पर तोता और कोयल बोलेंगे, कव्वों की काय काय सुनाई देगी।
0: किरण दी, सब लोग गौरी के घर पर खपरेल के घर के बरामदे में ढोलक के साथ इंतजार कर रहे हैं।
1: देखो कितने सुंदर प्लास्टिक के पन्नी से हाथ के पंखे बनाए हैं।
3: मालती, हमारी तरह से ढोलक बजाना। कजरी भाभी और काकी, आपको नाचना भी पड़ेगा।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

हाँ जी दोस्तों भाई, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी का मजा भी ले रहे होंगे। भाई जिंदगी का मजा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जिंदगी है जो हम समझ रहे हैं ना कि भैया ये जो बस चल रहा है, कट रहा है, लेकिन ये चलना कटना कुछ नहीं, ये सब जिंदगी जा रही है। इसीलिए जिंदगी के हर पल को ऐसे जियो जैसे कि ये आखिरी ही चल रहा हो। अब भाई यही समझ के जिएंगे तभी तो हम जी ही पाएंगे, नहीं तो आगे की सोचेंगे तब तो भैया फ्यूचर के बारे में तो सभी डरे हुए हैं, आप भी डरे, हम भी डरे हैं, आने वाले सभी जनरेशन डरने ही वाले हैं। तो अभी को यानी प्रेजेंट को जरूर इंजॉय करें, और इंजॉयमेंट करने के लिए ही हम आते हैं, यानी कि आपका 12 बज जाता है और ज्ञानश्री लाइव आता है, जिसमें हम लेकर आते हैं बहुत ही प्यारी सी प्लेलिस्ट, साथ ही साथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी बेहद जरूरी है। जी हाँ, आज जैसा कि थर्सडे है, आप सभी जानते हैं कि थर्सडे को हम बात करते हैं बॉलीवुड की कुछ चटपटी खबरों की तरफ, और आज जो सबसे पहली खबर है वो तो हमारे भाईजान की तरफ से, यानी कि हमारे सल्लू भाई की तरफ से। अब आप जान गए होंगे कि कुछ लोग जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उन्हें तो पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अगर नहीं पता है तो चलो मैं बता ही देती हूँ। भैया हमारे सलमान खान, जो कि हमारे सलमान खान भाई जान है, उनके लिए उनके तरफ से दो बहुत बड़ी खबरें आई हैं। जी हाँ, देखिए सलमान खान इस हफ्ते दो बार न्यूज़ में आए। पहली बार स्टूडेंट पेपर लीक वाली प्रोटेस्ट, अरे वही भाई जो दिल्ली और देश में कई कोनों में जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, लेकिन आज हम बात प्रोटेस्ट पे नहीं करने वाले, आज हम बात करेंगे सलमान खान की। इन्होंने इस पेपर लीक वाले प्रोटेस्ट पे बहुत बड़ी बयान दिया है। जी हाँ, सलमान खान ने कहा कि स्टूडेंट का गुस्सा सही है, उनका सपोर्ट भी हमें करना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी बताया कि जो प्रोटेस्ट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, वो बिल्कुल ना करें। प्रोटेस्ट को एक पीसफुल तरीके से भी किया जा सकता है, गलत फायदा बिल्कुल ना उठाएं। एक प्रोटेस्ट जो कि बच्चों के लिए है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, उसको एक पॉलिटिकल एंगल ना दिया जाए। लोग सरप्राइज हुए क्योंकि सलमान खान हमारे भाईजान ना कुछ इन सभी चीज़ों में बहुत जल्दी कुछ बोलते नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने बोला क्योंकि उन्हें स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा फिक्र है। दूसरी बात, उनकी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हेल्थ से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारे सलमान खान है तो इंसान ही, उनकी हेल्थ थोड़ी सी ढीली लग रही है लोगों को। भैया देखिए, कुछ लोग उनकी हेल्थ के बारे में गलत बातें बना रहे हैं। सलमान खान ने सीरियस होने की जगह एक मजाक क्या जवाब दे दिया, क्योंकि कई लोग सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं, उनके कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा बीमार दिख रहे हैं, लेकिन सलमान खान ने उसका भी एक बहुत बड़ा जवाब दिया। और बात वहीं ख़त्म नहीं होती है, लोगों ने उनके स्टाइल को भी पसंद किया कि भैया इतना अगर ये बीमार हैं फिर भी कितने अच्छे लुक्स दे रहे हैं। यानी कि सलमान खान ने अपनी बातों को तो जो उनको लोग कह रहे हैं उनकी हेल्थ को लेकर के, उसको तो उसका तो मजाक बनाया ही और बहुत अच्छा जवाब भी दिया, लेकिन साथ ही साथ लोगों ने भाईजान की हेल्थ पे तो कंसर्न दिखाया लेकिन उस हेल्थ इश्यूज में, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि भैया वो तो बहुत ज़्यादा बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले, लेकिन उसमें भी सभी लेना जानते हैं, क्योंकि आज तक लोग यही जो भी सलमान खान को जानते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, वो ये जानते हैं कि ये पॉलिटिकल खबरों में बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तब वो बहुत ही सही चीज़ बोलते हैं। और कहीं ना कहीं इनसे हमें सीखना भी चाहिए कि फालतू की अफवाहें, चाहे वो प्रोटेस्ट के लिए हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए हो, फालतू की अफवाहें जो गलत होती हैं वो हमें नहीं फैलाना चाहिए। भैया देखिए, खबर तो आज बहुत सारी है, बहुत भयंकर भयंकर खबर है, सब पे हम जाएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको हमारे साथ बने रहना है पूरा एक घंटा, क्योंकि भैया प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है, आप इन्जॉय भी करने वाले हैं, साथ ही साथ चटपटी खबरों का आनंद लेंगे। तो भैया अपना रेडियो उठाइए, अरे फ़ोन में सुनने तो फ़ोन उठाइए और जाइए किचन में, किचन में एक कप चाय बनाइए। जी हाँ, चाय से जब हम चाय लेके बात करते हैं, और इंडिया में देखिए चाय पीना, जब हम कहते हैं ना कि चलो चाय पीते हैं, तो चाय पीना सिर्फ चाय पीना ही नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही बड़ी खबर, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन का क्या जो होता है, उसमें चाय का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे, उसको तो करेंगे लेकिन चाय की प्याली के साथ। आप भी चाय बनाइए, हम भी चाय बनाते हैं, और चाय पीते पीते आज की खबरों का आनंद उठाते हैं। स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानस्थी लाइव, जिसमें हम आज एंजॉय कर रहे हैं बहुत ही प्यारी सी प्लेलिस्ट, साथ ही साथ सुन रहे हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर। भैया खबर तो आज बहुत ही बड़ी बड़ी, आप सभी के मिसकंसेप्शंस को हम दूर करने वाले हैं। यानी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपने बहुत ज़्यादा फैला दी थी आपने, यानी कि भारत की जनता ने, लेकिन हमारे जो बॉलीवुड स्टार्स हैं ना, वो भैया इतने भी गलत नहीं है जितना आप उन्हें समझ रहे हैं। मैं बताती हूँ क्या होता है, लेकिन सबसे पहले चलते हैं चैट बॉक्स में। भाई हमारे कमल नयन जी आ चुके हैं, जिन्होंने मैसेज किया है हमें गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून कमल नयन जी, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होंगे आज के शो को। भाई आपका फीडबैक हमें ज़रूर चाहिए होता है, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ कि आपकी आरजी हूँ इसीलिए मैं मांग रही हूँ, मैं आपसे ये हक से मांग रही हूँ, क्योंकि आपका हमारा बहुत ही प्यारा दोस्ती का रिश्ता है और इस दोस्ती को फीडबैक ज़रूर चाहिए। भैया हमें तो चाहिए, मुझे चाहिए आपसे फीडबैक, और मैं आपसे ओपनली ये डिमांड कर रही हूँ। चलते हैं न्यूज़ की तरफ। भैया न्यूज़ जो अगली है वो मैं आपको बता दूँ कि भैया ये जो न्यूज़ है इसने हमें ये बताया है कि जो बॉलीवुड स्टार्स होते हैं वो भी एक नॉर्मल इंसान होते हैं। जी हाँ, क्या आपको पता है कि जब आप थक जाते हैं दुनिया से बहुत ज़्यादा अपने काम का प्रेशर लेकर के, जब आप सोचते हैं कि बस कहीं बाहर निकल जाएं घर से और एक लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं, पता नहीं है कहाँ जाना है पर जाने का मन करता है, लेकिन ये जो स्टार्स हैं जो हमारे बॉलीवुड के, उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। भैया जब वो थक जाते हैं तो वो ऐसे ही कहीं सड़कों पर नहीं निकल सकते, क्योंकि वो जहाँ निकलेंगे वहाँ कोई ना कोई कैमरा लेके आ जाएगा, कोई ना कोई ऑटोग्राफ लेने आ जाएगा, कोई पिक्चर लेने आ जाएगा, इसीलिए उन्हें सुकून इंडिया में तो नहीं ही मिलता है, इसीलिए वो बाहर देश में जाते हैं जहाँ पर वो फ्री घूम सके, जहाँ उन्हें कोई तंग ना करे। लेकिन हमारे इंडिया में भी अगर वो सिर्फ पर्सनल काम कर रहे हैं, खुद के ही काम में बिजी हैं, उस पर भी जो है लोग उन्हें नहीं छोड़ते, उन्हें फ्री कभी छोड़ते ही नहीं है। मैं बताती हूँ आपको ये हुआ क्या। देखिए भैया, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वो भी एक नॉर्मल इंसान होते हैं। भाई हमारे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को आई इन्फेक्शन हो गया है, जिसमें उनको डॉक्टर ने सख्त मना किया है कि आप किसी हैवी लाइट को नहीं फेस कर सकते। लेकिन जब ये दोनों जा रहे थे हॉस्पिटल से अपने घर की तरफ, वहीं पे मीडिया ने उनकी तरफ बहुत तेज़ लाइट मारी, क्योंकि उनका तो ये इंटेंशन था कि वो जो वीडियो बना रहे हैं वो क्लियर आ सके, अच्छी लाइटिंग हो, लेकिन उस लाइट की वजह से रणबीर कपूर को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। लेकिन उन्होंने बहुत ही पोलाइटली मीडिया से कहा कि आप ये लाइट हटा लीजिए, हमें कोई वीडियो नहीं बनाना है। लेकिन सबने बहुत बुरी खबर फैलाई कि रणबीर कपूर जो है वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं और वो मीडिया को अब मौनी रॉय की तरह मना कर रहे हैं अपनी वीडियो लेने के लिए। लेकिन बाद में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने खुद ही ये चीज़ क्लियर की कि उनको आई इन्फेक्शन हो गया है, जिससे रिकवर होने में उन्हें कुछ टाइम लगेगा, लेकिन उसकी रिकवरी का जो प्रोसेस है उसमें उन्हें हैवी लाइट नहीं फेस करनी है। इसीलिए उन्होंने मीडिया से रिक्वेस्ट की कि आपको हम जहां कहीं भी देखें या कभी आप हमको हमारे पीछे पीछे आ भी जाते हैं तो प्लीज़ लाइट ना मारें। और दूसरा जो किस्सा है मैं वो आपको बताती हूँ, वो है भैया हमारे आर्यन खान की तरफ से। आर्यन खान यानी कि हमारे किंग खान के बेटे, यानी कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, जिनके लुक्स पे पूरे इंडिया की लड़कियाँ और इंडिया के बाहर भी पूरी पागल हो रखी है। अब भैया आर्यन खान की तरफ से भी बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। देखिए राघव जुआल ने बताया है कि आर्यन खान को जब भी आपने देखा होगा तो वो हमेशा, जब भी उनकी कोई फोटो लेंगे, जब भी आप कोई मीडिया उनके पीछे पीछे जाएगी, वो कैमरे के सामने भी आएंगे तो वो कभी स्माइल नहीं करते। आपने भी ये नोटिस किया होगा कि ये भाई सलमान, वो शाहरुख खान जो हैं वो तो हमेशा कैमरा देख के स्माइल कर देते, लेकिन आर्यन खान क्यों नहीं स्माइल करते? ऐसा क्या उनके अंदर गुस्सा भरा है, क्या चीज़ है? आपके भी दिमाग में ज़रूर आया होगा ना, मेरे भी दिमाग में आया था, लेकिन इसके पीछे मैंने इतनी रिसर्च नहीं की। लेकिन देखिए मेरे दिमाग में आया, और कुछ ही टाइम बाद राघव जुआल, जो कि आर्यन खान के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उनके साथ काम भी करते हैं, उन्होंने बताया कि आर्यन खान कैमरे के सामने इसीलिए नहीं हंसते क्योंकि उन्हें ये फेक स्माइल दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट होता है जो होता है रेस्टिंग फेस का। अब आप सोच रहे होंगे ये रेस्टिंग फेस क्या होता है, मैं बताती हूँ कि आखिर भाई ये होता क्या है। देखिए हम सभी का एक ऐसी स्थिति आती है जब हम ना तो बहुत ज़्यादा खुश हैं ना बहुत ज़्यादा दुखी, हम जस्ट नॉर्मल हैं, उसी में जो हमारा फेस होता है वो रेस्ट करता है, क्योंकि हमारे फेशियल मसल्स को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। किसी किसी का हंसमुख चेहरा होता है कि उनका जो फेस जब रेस्ट करता है तो भी उन्हें ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल है, लेकिन किसी का रेस्टिंग फेस जो होता है वो ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि वो इंसान बहुत दुखी है या गुस्से में है, लेकिन वो गुस्से में और दुखी नहीं होता, वो एक्चुअली उनका नॉर्मल फेस होता है, वो बस उनका फेस रेस्ट कर रहा होता है और आप समझ लेते हैं कि वो गुस्से में है। सेम यही चीज़ आर्यन खान के साथ भी हुई, लेकिन उनके दोस्त ने, राघव ने ये चीज़ मीडिया के सामने बताई कि आर्यन बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है, वो हम सभी की तरह बहुत चुलबुले हैं और फन लविंग इंसान है। तो मुझे लग रहा है कि आगे से जब आप आर्यन खान की तस्वीर देखेंगे जहाँ पे वो गुस्से वाले लग रहे हैं, लेकिन गुस्से वाले नहीं लग रहे हैं, आर्यन खान भी बहुत अच्छे इंसान है। ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए, जाननी चाहिए, बहुत सारी कन्फ्यूजन है जो हम दूर करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं
आपको बने रहना हमारे साथ अपने ज्ञानस्त्री लाइव में और एंजॉय करना है आज का ये बहुत ही प्यारा सा शो। स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी दोस्तों, इस बहुत ही प्यारे से गाने के बीच में आ चुकी हूँ मैं, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आयुषी, लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानस्ट्री लाइव, जिसमें हम आज एंजॉय कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन प्लेलिस्ट, साथ ही साथ हमारे सेलेब्स की तरफ से कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी न्यूज। अभी आप सुन रहे हैं अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी का एक बहुत ही फेमस सॉन्ग मेरी मखना, जो कि मूवी से है बागबान। जी हाँ, वही बागबान मूवी जिसके चक्कर में माँ बाप ने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ताना भी दिया है, अरे देखो बच्चे ऐसे होते हैं। और वहीं अगर आप बात करेंगे मूवी तारे जमी की, तो वहाँ बच्चों ने माँ बाप को ताना दिया है कि देखो माँ बाप ऐसे भी होते हैं। तो भैया हमारे इंडिया में ना ये छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ हैं ना माँ बाप और बच्चों के बीच में, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ होती है ना, इसको बड़ी नहीं होने देना चाहिए, लेकिन इसको छोटे मोटे भी लड़ाइयाँ होनी चाहिए, क्योंकि इससे ना प्यार बढ़ता है। चलिए ये ज्ञान तो हम बाद में लेंगे, लेकिन हम बात करेंगे सबसे पहले खबर की तरफ। जी हाँ, OTT और अमिताभ जी की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर है। हाँ देखिए, आजकल ना आपने वो तो सुना होगा ना, जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, कोई पेपर देते हैं, और वो कहीं MCQ आ जाए, यानी कि ऑप्शन वाले पेपर आ जाए, तो हमारा लगता है कि वाह भाई, एक दिल को सुकून आ जाता है। जो आलसी बच्चे होते हैं ना, उनको लिखना नहीं पड़ता। और पर्सनली मुझे MCQs वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पसंद है। उसी तरीके से हमारे जो स्टार्स हैं, हमारे जो डायरेक्टर हैं, बॉलीवुड से रिलेटेड जो लोग हैं, उनके लिए अब ऑप्शंस आ चुके हैं। जी हाँ, देखिए दो इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं। पहली, जैसे आदिल हुसैन ने बताया कि OTT जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ उनको बहुत अच्छा पैसा मिलता है मूवी को

है जो वायरल हुई बाद में, लेकिन लोगों को लगा इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, लेकिन अमिताभ बच्चन जी ने खुद ही क्लियर कर दिया कि भैया ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी भी हट्टा कट्टा जवान हूँ। और ये लाइन हमारे अमिताभ बच्चन जी की है। आप सोचिए भाई, हमारे अमिताभ बच्चन जी जो कि बॉलीवुड पर एक तरीके से राज किए हैं, आज भी जब वो किसी स्क्रीन में आते, किसी वीडियो में आते, तो वो वीडियो वायरल होनी ही होनी है। उनके उनको लेकर के लोगों ने ऐसी खबरें फैलाई हैं। भैया देखिए, आजकल पता नहीं क्या हो गया इंडिया के लोगों को, सबको ही बीमार कर रहे हैं। कभी सलमान खान को बीमार कर रहे हैं, कभी अमिताभ बच्चन को बीमार कर रहे हैं, कभी आर्यन खान को बीमार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं भैया, हमारे अमिताभ बच्चन जी बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाइन है। अभी भी अमिताभ बच्चन चाहे कितने ही बड़े हो गए, लेकिन उनकी जो एनर्जी है ना, वो बिल्कुल किसी यंग इंसान की तरह ही है। अब आपको लेके चलेंगे हम दूसरी बहुत ही बड़ी खबर की तरफ, जो कि एक नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी है। अब आप सोचेंगे कि टेक्नोलॉजी से, और मैं आपको बताऊंगी एक और खबर है मेरे पास जो कि गाने की लड़ाई है। अब आपका दिमाग थोड़ा सा घूम गया होगा, लेकिन इस दिमाग को घूमने दीजिए थोड़ी देर, थोड़ा सा दिमाग घूमे भाई, हम नहीं घूम पा रहे इस बारिश के मौसम में, दिमाग ही घूम जाए। इस दिमाग को थोड़ी देर घुमाइए और इन्जॉय करिए बहुत ही प्यारा सा गाना। उसके बाद हम आते हैं, हम आपसे बात करते हैं नई टेक्नोलॉजी और गाने की लड़ाई के बारे में। स्टे ट्यून्ड।

0: चुप बैठे अब।
1: हाँ जी दोस्तों, ज्यादा देर तक तो मैं भी चुप नहीं बैठ सकती। मैं भी बस सोच रही थी ये गाना थोड़ा सा स्लो डाउन हो, तो मैं भी आऊँ और अपनी बातों को रखना शुरू कर दूँ। जी हाँ, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको बताया कि गाने से जुड़ी हुई लड़ाइयाँ भी चल रही हैं, लेकिन गाने से जुड़ी हुई एक नई टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। नहीं पता, मैं बताती हूँ भाई, आपको अपडेट रखना मेरी जिम्मेदारी बन चुकी है। आजकल हर हफ्ते मैं आपको अपडेट करती हूँ बॉलीवुड से लेकर के। सबसे पहले म्यूज़िक से जुड़ी दो खबरें आई हैं, मैं आपको बताती हूँ क्या। देखिए, पहली अमाल मलिक ने बोला। अमाल मलिक एक बहुत ही प्यारे से सिंगर हैं, जिन्होंने आपको याद होगा एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, पुराने वाला नहीं नए वाला जो था, उसमें जो एक्टर है साथ ही साथ जो सिंगर है अमाल मलिक, आपको अब चेहरा उनका याद आ गया होगा। उन्होंने बोला है कि उनके जो एक बहुत नया गाना रिलीज़ हुआ है जिसका नाम है आवारापन, उसके अगेंस्ट कुछ लोगों ने पैसा देकर गलत प्रचार किया है, जिसकी वजह से उनका गाना कम सुन रहे हैं लोग। अब ऐसी ये सीधा स्टेटमेंट अमाल मलिक ने मीडिया को दिया है, इससे साफ जाहिर ये होता है कि भैया म्यूज़िक की दुनिया में भी ना कॉम्पिटिशन बहुत है। आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ आपकी जॉब में ही कॉम्पिटिशन है, कि आपका जो साथ में काम करने वाला है, जो आपका वो कलीग है, वो आपसे कंपटीशन करता रहता है? भैया ऐसे बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े सिंगर हैं ना, उनके पीछे भी बहुत सारे कंपटीटर पड़े हुए हैं। इसीलिए आप समझिए कि भैया जैसे आप ज़िंदगी जी रहे हैं ना, वैसे ही वो भी जीते हैं। उसके बाद दूसरी खबर, लेकिन ये कुछ कॉन्ट्रोवर्सी वाली नहीं है, कुछ बेकार खबर नहीं है, ये खबर थोड़ी अच्छी वाली है। देखिए, मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर AR रहमान ने एप्पल विजन प्रो, एक नया डिवाइस है जिसको अपना म्यूज़िक जिसके लिए बनाया है और उसे लॉन्च भी करवाया है, जिससे लोग गानों को नए तरीके से सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी भी बढ़ गई है। रहमान हमेशा कुछ ना कुछ जो है नया ट्राई करते रहते हैं, ऐसा तो आपको सबको पता है। कभी इनके गाने बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा पार्टी म्यूज़िक, कभी सोलफुल सॉन्ग, कभी भक्ति सॉन्ग, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसीलिए फैंस को एक और नया रूप मिला AR रहमान का, जिसकी वजह से फैंस का जो प्यार था ना AR रहमान की तरफ, वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। पर्सनली मुझे यार AR रहमान बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया ये इंसान नहीं है, ये कोई टैलेंट की पुड़िया है जो कि हर साल, या फिर मैं कहूँ कि हमेशा कोई ना कोई नया वर्जन अपना लॉन्च करते ही रहते हैं। और साथ ही साथ अपना वर्जन तो लॉन्च किया ही किया, साथ ही साथ एप्पल विजन प्रो जो कि एक बहुत नया डिवाइस है उसको भी लॉन्च किया। अगर आप इसे लेते हैं, इसको एंजॉय करते हैं, तो ज़रूर से इसका फीडबैक हमें ज़रूर दें, क्योंकि भैया सुनने में तो आया है कि बहुत ही बढ़िया है, और जो म्यूज़िक लवर हैं उनके लिए तो ये और भी बढ़िया डिवाइस है। उसके बाद चलते हैं हम एक इमोशनल पल की तरफ, एक इमोशनल पल, एक मजाकिया बात और एक शार्प कॉमेंट। अब ये लग रहा है ना कि बहुत तड़के वाला चीज़ है, हाँ भाई बहुत तड़के वाला चीज़ है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन चलते हैं चैट बॉक्स की तरफ। भाई अभी तक हमने बात की कमल नयन जी की, साथ ही साथ अब सोनिया तिवारी, अनोखी शर्मा, कमल नयन जी फिर से और ये सारे लोग आ चुके हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून, आप सभी ने मेरे को विश किया, आप सभी को भी शुभ दोपहरिया। चलेंगे हम नेक्स्ट बात यानी नेक्स्ट खबर की तरफ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना, आपको बने रहना हमारे साथ और इन्जॉय करना है ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग।

हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आ चुकी हूँ मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानश्री लाइव, जिसमें हम आज इंजॉय कर रहे हैं बॉलीवुड की न्यूज, क्योंकि आज दिन है थर्सडे और आप सभी जानते हैं कि थर्सडे को हम आते हैं और बात करते हैं कुछ बॉलीवुड से जुड़ी खबरों की। जी हाँ, अभी फिलहाल मेरे पास तीन खबरें और भी हैं जो बहुत ही बड़ी बड़ी, एक इमोशनल, एक थोड़ी मजाकिया और एक कॉमेंट के ऊपर। अब आप जानते ही हैं कि अगर हम सोशल मीडिया से जुड़े हैं आज के इस नए ज़माने में, नए दौर में अपडेट हैं, तो हम कमेंट्स ना करें, लाइक ना करें या फिर हम सोशल मीडिया ना यूज़ करें, ऐसा हो नहीं सकता। आजकल तो बच्चे से लेकर के बुज़ुर्ग सब के सोशल मीडिया अकाउंट है और सब एकदम धड़ल्ले से यूज़ करते हैं। उसी तरह से हमारे जो सुपरस्टार्स हैं वो भी यूज़ करते हैं। हालांकि कमेंट पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं इमोशनल वाली न्यूज़ की तरफ। देखिए भैया, सबसे पहली खबर ही हमारी यही है कि जो डायरेक्टर इम्तियाज़ अली है ना, अरे इम्तियाज़ अली वही जादूगर जो अपनी मूवी से आप सभी का दिल जीत लेते हैं, उन्होंने वो अपने पुराने घर जमशेदपुर गए और वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए कि वो इतने बड़े होकर के, इतने बड़े डायरेक्टर होकर के अपने जो रूट्स है, जो अपने घर है, उसको वो अभी तक नहीं भूले। और हर इंसान को ऐसा होता है भाई, जब हम अपने रूट्स की तरफ जाते हैं, अपने कह सकते हैं सही ट्रू सेल्फ होती है जब उसकी तरफ जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारी आंखें भर आती हैं। सेम यही डायरेक्टर इम्तियाज़ अली के साथ भी हुआ, जिसे देख के लोग खुश भी हुए और साथ ही साथ इमोशनल भी हुए, क्योंकि जैसे उन्होंने पोस्ट डाली अपने जमशेदपुर वाले घर की, उनकी आंखों में आंसू थे, लोगों को अपने अपने दौर, अपने अपने घर, अपने अपने होम टाउन याद आने लग गए। तो ये पल बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहा जो बॉलीवुड लवर्स थे उनको मैं बता दूँ। और साथ ही साथ जो हमारी दूसरी खबर है वो है राघव जुयाल की तरफ से। राघव ने यूट्यूब के बारे में एक छोटा सा लेकिन एक मजाकिया कॉमेंट कर दिया, फिर तुरंत अपनी बात सुधार भी ली। लोगों ने इसे पढ़कर हंसा भी, क्योंकि राघव का जो स्टाइल है वो हमेशा सिंपल सीधा रहा। अब आप राघव को तो जानते ही हैं, जी हाँ वही डांसर वाले। हाँ, उन्होंने कहा कि भैया यूट्यूब के लिए उन्होंने एक कॉमेंट किया था, वो कॉमेंट क्या था वो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन उनका ये जो कॉमेंट है वो बहुत ज़्यादा वायरल गया था। लेकिन उन्होंने इन चीज़ को तुरंत ठीक भी किया, अपनी बातों को सुधार भी ली और ये भी बोला कि इट वॉज जस्ट अ जोक, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी है ऐसी ही कि मैं मजाक करता हूँ और ये एक मजाक ही था। लोग इसे पढ़कर पहले तो सीरियस हुए, लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि ये मजाक है, लोग हंस भी पड़े। साथ ही साथ जो तीसरी खबर है वो थोड़ी सी सीरियस थी, मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। देखिए भाई, वीरदास, इनको तो हम सभी जानते हैं। वीरदास ने कहा कि आर्टिस्ट यानी जो कलाकार लोग हैं वो चुप ही रहते हैं, और स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस पर अपनी राय भी दी। अब इन्होंने कहा कि जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, जो कलाकार होते हैं, वो हमेशा शांत आपको मिलेंगे, दिल से बिल्कुल शांत है, वो कभी भी इतने ज़्यादा लाउड होते नहीं अगर उनके पास रियल टैलेंट है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे भारत में, और फिलहाल भारत देश में 10 जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, उन्होंने लेकिन स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं दिल्ली में, उसके लिए अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने अपनी जो चुप रहने की कला होती है आर्टिस्ट की, उसको तोड़ा और उन्होंने सपोर्ट में बोला स्टूडेंट्स के कि भैया जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जो उनकी मांग है वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इसे कोई भी अगर एक हिंसा इसमें फैलाता है, मारपीट करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। आप स्टूडेंट्स की राय माने, उनकी से बातचीत करें, इस सारे मसले का हल निकालें, लेकिन मारपीट कभी भी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होती। ऑफ कोर्स कहेंगे, क्योंकि भैया आर्टिस्ट है, शांति प्रिय इंसान है और चुप लोग ये लोग रहते हैं। तो इनका ये जो बयान है, ये लोगों को एक तरीके से समझाया भी और ये भी बताया कि भैया अहिंसा, हमेशा हमें अहिंसा के ही रास्ते पे चलना चाहिए। फिलहाल ये थी आज की न्यूज़। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, इन्जॉय किया होगा, आज की प्लेलिस्ट को भी इन्जॉय किया होगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि इन सभी चीज़ों को समझा होगा, क्योंकि सिर्फ हम खबर सुन तो लेते हैं, लेकिन उसके पीछे, एक खबर के पीछे काफ़ी सारी मोटिवेशनल चीज़ें भी होती हैं, मोरल्स भी होते हैं जो हमें सीखना चाहिए। जी हाँ, जैसे कि अभी मैंने बताया कि इम्तियाज़ अली से आपको अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए, सही चीज़ पर आवाज़ उठानी चाहिए, गलत खबर नहीं पहुँचानी चाहिए, और किसी भी चीज़ की अगर आपको थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन है तो उसको लेके बिल्कुल भी उड़ना नहीं चाहिए। यही थी भाई हमारी आज की सीख। आशा करती हूँ कि आप समझे भी होंगे और अपनी ज़िंदगी में अपनाए भी होंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है हमारे जाने का, लेती हूँ आपसे विदा और छोड़ जाती हूँ आपको इस बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। 89.6 FM।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही और लाभ कई, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो हमारे आसपास बहुत आम है, लेकिन कई बार समय रहते पहचान में नहीं आ पाती है। गर्भावस्था के दौरान खून की कमी यानी एनीमिया। कई बार लोग सोचते हैं कि गर्भावस्था महिलाओं को कमजोरी, थकान या चक्कर आना, इन सभी लक्षणों के साथ तो ये सामान्य बात है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या इसके पीछे खून की कमी भी हो सकती है? और अगर हाँ, तो इसे कैसे पहचाना जाए, कब जांच करानी चाहिए, और माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने सेहतिया सिंह जी और हमारी टीकन भाभी। आप दोनों का स्वागत है। सेहतिया सिंह जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिर ये एनीमिया है क्या?
1: देखिए आरजे जी, सरल भाषा में कहें तो जब शरीर में खून की कमी हो जाती है या खून में ही हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तब उसे एनीमिया कहा जाता है।
0: और गर्भवती महिलाओं में ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
1: क्योंकि गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर को अपने साथ साथ बच्चे की ज़रूरत भी पूरी करनी होती है। ऐसे समय में आयरन और फोलिक एसिड की ज़रूरत काफ़ी बढ़ जाती है। अगर ये ज़रूरत पूरी ना हो तो खून की कमी हो सकती है।
0: तो क्या खून की कमी का असर केवल गर्भवती महिला पर पड़ता है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर गर्भवती महिला और बच्चे दोनों पर पड़ सकता है। अगर समय पर पहचान और इलाज ना हो तो समय से पहले प्रसव का, कम वजन का बच्चा और मां के स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए जितनी जल्दी पहचान होगी उतना बेहतर परिणाम माँ और बच्चे दोनों के लिए होगा।
0: यानी गर्भवती महिला का स्वास्थ्य सीधे बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है।
1: और इसी वजह से विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि हमें केवल बीमारियों का इलाज नहीं करना है, बल्कि कुपोषण और एनीमिया के दुष्चक्र को भी तोड़ना है।
0: दुष्चक्र, वो कैसे?
1: अगर कोई गर्भवती महिला खुद को कुपोषित और उसे खून की कमी है तो उसका असर गर्भावस्था और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। बाद में यदि बच्चे भी पर्याप्त पोषण ना मिले तो वो भी कुपोषण और खून की कमी की समस्या से प्रभावित हो सकता है। इस तरह कुपोषण और एनीमिया का एक दुष्चक्र पीढ़ी पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। इसलिए गर्भवती महिला का पोषण, जांच और समय पर इलाज बहुत महत्वपूर्ण है।
0: दोस्तों, ये बात सचमुच सोचने वाली है। यानी आज माँ के स्वास्थ्य में किया गया निवेश आने वाले बच्चे के भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। सेहतिया सिंह जी, कई श्रोता सोच रहे होंगे कि खून की कमी के लक्षण क्या होते हैं।
1: अगर आयरन की कमी है, अगर गर्भवती महिला बहुत कमजोर महसूस करती है, अगर उसे चक्कर आ जाते हैं, सांस फूलती है, दिल की धड़कन तेज लगती है, या रोजमर्रा का काम भी भारी लगने लगा तो ये केवल थकान नहीं हो सकती है, या आयरन की कमी के लक्षण हो सकते हैं।
0: लेकिन कई बार तो लोग इन बातों को गर्भावस्था का सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं,
2: और यही सबसे बड़ी गलती है। हमारे गांव की रीना की कहानी सुनिए। दूसरी बार वो गर्भवती थी, उसे लगातार कमजोरी रहती थी। घर वाले कहते थे गर्भ में बच्चा है, थोड़ा बहुत तो होगा ही। लेकिन एक दिन आशा बहन उसे स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाती है। वहाँ खून की जाँच होती है, पता चलता है कि उसे एनीमिया है। अगर जांच नहीं होती तो शायद ये बात पता ही नहीं चलती।
0: फिर क्या रीना ने इलाज शुरू कराया?
2: हाँ, उसने स्वास्थ्य कर्मी की सलाह मानी, नियमित जांच कराई और अपने खान पान पर भी ध्यान दिया। कुछ उस समय बाद उसकी स्थिति में सुधार आने लगा और यही वजह है कि समय पर पहचान बहुत जरूरी है।
0: यानी केवल लक्षण देखकर अनुमान लगाने के बजाय जांच कराना जरूरी है।
2: बिल्कुल, और इलाज तब संभव होगा जब पूरा परिवार गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा।
0: तो अब सबसे जरूरी सवाल, गर्भवती महिला को जांच कब करानी चाहिए?
1: गर्भ ठहरते ही स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराना चाहिए, उसके बाद हर ANC संपर्क पर जांच करवाना चाहिए।
0: ANC यानी गर्भावस्था के दौरान होने वाली नियमित जांच क्या है?
1: और पूरी तरह गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC जांच करानी चाहिए।
0: और इन जांचों में क्या क्या देखा जाता है?
1: कई बातें देखी जाती है, लेकिन खून की जांच बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि गर्भवती महिला में खून की कमी है या नहीं।
0: अगर जांच में खून की कमी मिलती है तो क्या हर स्थिति एक जैसी होती है?
1: नहीं, खून की कमी अलग अलग स्तर की हो सकती है। अगर हीमोग्लोबिन 10 से या 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का एनीमिया कहा जाता है। 7 से 9.0 ग्राम के बीच हो तो मध्यम एनीमिया, और 7 ग्राम से कम हो तो गंभीर एनीमिया कहा जाता है।
0: यानी हर स्थिति में एक जैसा इलाज नहीं होता।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अब बात करते हैं इलाज और बचाव की। अक्सर IFA और MMS का नाम सुनने को मिलता है, आखिर ये है क्या?
1: अगला, IFA यानी आयरन और फोलिक एसिड की गोली, और MMS ऐसी पूरक गोलियां हैं जिनमें आयरन के साथ कई जरूरत विटामिन और खनिज भी होते हैं, जो गर्भवती महिला और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।
0: यानी MMS सिर्फ आयरन नहीं बल्कि कई जरूरी पोषक तत्वों का समूह है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन क्या केवल गोलियां ही पर्याप्त हैं?
1: नहीं, पूरक गोलियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके साथ संतुलित और पौष्टिक भोजन भी उतना ही जरूरी है।
2: बिल्कुल सही, केवल गोली खाने से ही बात पूरी नहीं होती, घर का भोजन और पूरक आहार दोनों महत्वपूर्ण है।
0: किस तरह का भोजन?
2: घर में जो उपलब्ध हो उसमें पौष्टिकता का ध्यान दे। खासकर प्रोटीन युक्त भोजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दालें, चना, राजमा, दूध, दही, अंडा या स्थानीय रूप से उपलब्ध अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शरीर को ताकत देने में मदद करते हैं।
0: यानी भोजन में केवल मात्रा नहीं गुणवत्ता भी बेहद जरूरी है।
2: बिल्कुल, गर्भवती महिला को पर्याप्त भोजन, पूरक आहार और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ मिलने चाहिए। परिवार को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे सबसे आखिर में नहीं बल्कि प्राथमिकता के साथ भोजन मिलना चाहिए।
0: ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। सेहतिया सिंह जी, अब एक ऐसा शब्द जिसका नाम लोग आजकल ज्यादा सुन रहे हैं, IVFCM, आखिर ये है क्या चीज?
1: सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि IVFCM हर गर्भवती महिला के लिए नहीं होता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, इसका उपयोग उन गर्भवती महिलाओं में किया जा सकता है जिनमें जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन की कमी होने वाला एनीमिया पाया गया है और डॉक्टर को लगे कि तेजी से सुधार की जरूरत है।
0: यानी पहले जांच फिर डॉक्टर की सलाह।
1: बिल्कुल, और भी सरल भाषा में कहें तो या आयरन शरीर में चढ़ाया जाता है नस के रास्ते ड्रिप लगाकर। इसका इस्तेमाल उन स्थितियों में किया जा सकता है जहां जांच में आयरन की कमी से होने वाला मध्यम या गंभीर एनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर तेज तथा निगरानी में इलाज को जरूरी समझें।
0: तो लोग अपने मन से इसकी मांग नहीं कर सकते?
1: नहीं, कौन सा इलाज उचित है इसका निर्णय स्वास्थ्य केंद्र की सलाह और डॉक्टर की जांच के आधार पर होता है।
2: और एक बात याद रखिए, इलाज का सही रास्ता है जांच, डॉक्टर की सलाह, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और जरूरत होने पर आगे की निगरानी।
0: दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात साफ हो गई है, की कमजोरी को सामान्य मानकर टालना बिल्कुल सही नहीं है।
2: बिल्कुल, अगर घर में गर्भवती महिला है तो उसकी जांच समय पर कराइए, उसे पौष्टिक भोजन दीजिए, पूरक आहार और IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां नियमित लेने में मदद कीजिए और स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए।
1: और याद रखिए, जो गर्भवती महिलाएं गर्भ ठहरते ही पंजीकरण करवाती हैं, समय समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाती हैं और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANSC जांच कराती हैं, उनके स्वस्थ रहने और बच्चे के स्वस्थ पैदा होने की संभावना बढ़ती है।
0: बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आज का पहला कदम क्या हो? अगर घर में गर्भवती महिला है तो उससे पूछिए, क्या उसका पंजीकरण हुआ है, क्या उसकी खून की जांच हुई है, क्या वो नियमित ANC की जांच करवा रही है, क्या वो IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां ले रही है, क्या उसे पर्याप्त पौष्टिक भोजन और प्रोटीन युक्त आहार मिल रहा है। याद रखिए, समय पर पहचान, अच्छा पोषण, पूरक आहार और सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है। इसी संदेश के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले अंक में, जहां हम बात करेंगे मध्यम और गंभीर एनीमिया तथा IVFCM की भूमिका पर। तब तक के लिए नमस्कार।
3: भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं, अच्छी खबर कब आएगी? लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपतियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश
1: जीतेगा। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाए। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
2: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए।
2: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
1: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।
3: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइन्स गोंडा।
1: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में? क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी?
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
8: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
10: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9850-944-999।
11: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: और मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
0: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
0: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
0: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: आरजे अंशिका।

एक है आरजे अंशिका। सुन सहेली,

शुभ दोपहरिया, शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और मौसम है बहुत ही प्यारा, और इस प्यारे से मौसम में आगे वाह बहुत अच्छा बिल्कुल नहीं, अभी आपने गाया बहुत ही सुर में था। यस, आप बेसुरी होती नहीं है मैम, सेकंड पॉइंट वाला फिर हो जाता है यार, जो सुनता बेसुरी है नहीं, लेकिन ना जो सुर में नहीं होते उन्हें सुर में ले आती हैं। ये इसीलिए मैंने कहा था कि आपके लिए सेकंड वाला पॉइंट है, लेकिन आप भाई सुर में आते हैं और सुर में लेकर चलते हैं, क्योंकि अभी देखिए आपने बहुत ही प्यारी सी लाइन सुनी मैम की मुख से, तो अब हम आपको लेकर चलेंगे पहले वाले सेगमेंट की तरफ। लेकिन उससे पहले आज का दिन है, आज का दिन है थर्सडे, और थर्सडे को हम बात करते हैं हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर। तो आज भी कुछ उनकी हेल्थ पे बात होगी, कुछ उनकी एक कहते हैं ना कि सेल्फ मोटिवेशन सभी को चाहिए, तो आज हम कुछ बातें उनकी सेल्फ मोटिवेशन को लेकर भी करेंगे, और साथ ही साथ में और भी कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सब अगर अभी बता देंगे तो मज़ा कैसे आएगा, क्योंकि जब हम कोई शो देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो हमें हमेशा ये इंतज़ार होता है कि क्लाइमैक्स में क्या होगा। तो ओपनिंग हमने आपको बता दी जितनी हम बता सकते थे, अब क्लाइमैक्स तो नहीं बताएंगे, क्योंकि क्लाइमैक्स तो

क्या होने वाला है। बता दूं? चलिए बता दूं। तो भाई आज हम बात करते हैं कुछ प्लांट्स को लेकर के भी। तो आज हमारे पास प्लांट्स को लेकर के कुछ मैजिक है, लेकिन वो मैजिक क्या है ये अभी नहीं बताएंगे। वो मैजिक जानने के लिए आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा हमारे साथ।

जी जी बिल्कुल मैम बिल्कुल। तो मैम तो वही सुनाएंगी कि कौन सा सॉन्ग है जिसके बोल उन्हें फिलहाल नहीं मिल रहे हैं और अभी वो ढूंढ रही हैं, सोच रही हैं। तो उन्हें सोचने देते हैं और हम अभी बात करते हैं आपसे कि आपके लिए बहुत कुछ है और वो सॉन्ग भी है, लेकिन लेकिन लेकिन आप सभी कर रहे होंगे इंतज़ार कि भाई आज इतनी सारी बातें तो हैं, लेकिन इन बातों के साथ साथ में हमारे पास और भी कुछ है। और वो ये है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि स्टार्ट जब हम करते हैं तो हमारे पास हमेशा कुछ क्या मैम। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, अरे ओके जी। चलिए लिसनर्स,

0: वाह, बहुत अच्छा था ये तो। मतलब जाने किस मोड़ पे बन जाएगा अफसाना, तो मेरे तो मन में आ रहा था कि अफसाना बन ही गया बिल्कुल। बहुत बहुत बहुत अच्छा गाया आपने मैम, बहुत अच्छा। अब दो लाइन्स और हो जाती तो और भी अच्छा।
1: और तो मुझे पूरा प्रॉपर याद नहीं आ रहा
0: है। ओके ओके,
1: पर कोई बात नहीं, चलो हम फिर से याद करेंगे और कल और
0: कल बिल्कुल बिल्कुल मैम पूरा एक सॉन्ग सुनाएंगी। इस सैटरडे को पूरा एक सॉन्ग सुनाएंगे।
1: हाँ, सैटरडे रखते हैं।
0: ये अच्छा है, हर सैटरडे मैम एक सॉन्ग पूरा सुनाएंगी। अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छा है, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड।
1: तो चले हम शुरू करते हैं
0: अब जी
1: आज के पहला सेगमेंट, जो कि हमारा होता है आप सभी को
0: क्या
1: क्या होता है बताओ,
0: क्या होता है?
1: होता ये है कि हम पोयम लेकर के आते हैं और कविता जो कि हम आपको सुनाते हैं। और उस कविता के आज बहुत ही प्यारा सा बोल है जो कि मैं आपको बताऊं स्टार्टिंग में, लेकिन मुझे रास्ता मिलने दीजिए।
0: हाँ, मैं यही सोच रही थी कि अभी मैम कहेंगी तो भाई अब चलिए, अभी सुर में बात हो रही थी तो कुछ सुर से ही ले लेते हैं। सुर उनके लाजवाब लगते हैं, सुर उनके लाजवाब लगते हैं, और बातें तो वो ऐसी करती हैं कि क्या ही कहना, बातें तो वो ऐसी करती हैं कि क्या ही कहना, और मुस्कुराहट उफ मुस्कुराहट तो ऐसी है कि रहा ना जाए, मुस्कुराहट तो ऐसी है कि रहा ना जाए। हम भी करते हैं उनकी मुस्कुराहट पे, हाय कितनी सुंदर लगती हैं, कुछ ऐसा ही करते हैं, कुछ ऐसा ही। तो चलिए रुख उन्हीं का करते हैं, तो चलिए रुख उन्हीं का करते हैं जिनकी आंखों में है माँ जैसी ममता, और आपको पोएम सुनाएंगी आपकी अपनी आरजे समता। ये हंसी क्यों थी, अच्छी नहीं लगी आपको?
1: बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत ही बढ़िया।
0: आपने हंसा तो मुझे लगा आपको अच्छी नहीं लगी।
1: नहीं, माँ की ममता आ गया ना, तो मैं समझ गई थी आखिरी में समता आएगा।
0: बिल्कुल, मतलब ऐसा मुझे ऐसी फील हुई, मतलब मेरे मन में जो था।
1: हाँ, नहीं, नहीं, अच्छा था।
0: चलिए
1: आगे
0: जी।
1: घर का आंगन का वो घना और ठंडा, घर के आंगन की वो घनी और ठंडी छांव है, जिनके दम से रोशन हमारे सारे शहर और गांव है।
0: वाह,
1: चेहरे की झुर्रियों में छुपा तजुर्बों का वो अनमोल खजाना, सिखाता है हमें हर मुश्किल से मुस्कुरा कर जीत जाना। वो कांपते हुए हाथ जब दुआ में उठ जाते हैं, वो कांपते हुए हाथ जब दुआ में उठ जाते हैं, तो जिंदगी के बंद रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। बचपन की वो लोरियां वो कागज की नाव की कहानी, बचपन की वो लोरियां वो कागज की नाव की कहानी, आज भी याद दिलाती है उनके सपनों उनके अपनों के प्रति वो दीवानी। उम्र की दहलीज पर भले कदम थोड़े धीमे हो जाएं, उम्र की दहलीज पर भले कदम थोड़े धीमे हो जाएं, पर उनके सिखाए संस्कार आज उनकी ताकत बन जाए। बस थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा मान, यही तो मांगती है उनकी बूढ़ी आंखें और थका हुआ जहां। चलो थाम ले उनका हाथ, उन्हें कभी अकेला ना होने दे, चलो थाम ले उनका हाथ, उन्हें कभी अकेला ना होने दे। उनकी जिंदगी में हर हसीन सफर में खुशियों के बीज बोने दे। वो घर की नींव है हमारे आज और कल का सम्मान है, वो घर की नींव है हमारे आज और कल का सम्मान है। सच कहें तो बुजुर्ग ही हमारे घर की सबसे बड़ी जान है।
0: वाह, बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त मैम, बहुत ही प्यारी थी ये पोयम। और मैं ये सोचती हूँ कभी कभी कि मैम इतनी अच्छी अच्छी लाइंस और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सोचती कैसे हैं।
1: उसको सोचने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है कुछ।
0: कैसे?
1: रात भर जाग
0: कर। ओके,
1: दो बजे तक जाग करके पहले कंटेंट सोचती
0: हूँ
1: क्या करना है। और यही सेम चीज आजकल हमारे आरके नहीं है, आरके जी नहीं दिख रहे हैं काफी टाइम से ना।
0: जी मैम,
1: लिसनर्स अगर आपको पता है कि हमारे आरके जी कहाँ हैं तो प्लीज उन तक मेरा मैसेज पहुंचा दीजिएगा कि ये जो लाइन मैं अब बताने जा रही हूँ ना, कि उन्होंने ही मुझे जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना स्टूडियो में, तो उन्होंने ही मुझे कही थी कि आरजे समता मुझे लग रहा है कि जब आप मॉर्निंग शो करती हैं तो आप रात भर सोचती हैं तभी इतने प्यारे प्यारे कंटेंट आप लेकर के आती हैं। तो आज उनकी याद आ गई, पता नहीं क्यों हमको आरजे सॉरी आरके जी की। तो आरके जी आप कहाँ हैं, अगर आप सुन रहे हैं हमारी इस बात को तो जरूर से आंसर दीजिएगा, और अगर उनका कोई वेलविशर सुन रहा है तो उन तक मेरे इस मैसेज को जरूर पहुंचाइएगा।
0: बिल्कुल। तो चलिए लिसनर्स, अब हम चलते हैं और आपको बताते हैं और नेक्स्ट वाला जो कि हमारा है इस प्यारी सी, बहुत ही प्यारी सी पोएम के बाद में रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ।
1: हाँ जी, तो हम दोनों बिल्कुल नहीं करते हैं कभी फाइट, तो आइए सुनते हैं आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ।
0: वाह, तो भाई शुरुआत अगर इतनी अच्छी मिली है तो फिर रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ तो अच्छा होना ही होना है। तो आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ कहता है, सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता, अगर ताकत के साथ अनुभव ही मिला हो तभी आप जिंदगी की किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं। जैसा कि आज हमारा सीनियर सिटीजन्स का दिन है, तो आज हम यही कहना चाहेंगे कि यूथ्स जो होते हैं उनको हमेशा ये लगता है कि अगर हमारे पास हमारी सोच है, हमारी ताकत है, पोटेंशियल है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इस ताकत के साथ थोड़ा सा अनुभव भी मिल जाए तो वो, मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं ना, 1 और 1 11, वही वाली ताकत होती है। क्योंकि मैं मानती हूँ कि यूथ्स हैं तो उनके पास बहुत सारे न्यू आइडियाज़ हैं, बहुत बहुत कुछ है, लेकिन वो अनुभव तो उनके पास कहीं ना कहीं कम होता है। और कहते हैं कि ज़िंदगी जो सिखाती है, आपके अनुभव जो सिखाते हैं, आप उसे कभी भूलते नहीं हैं। इसलिए अपने घर के बड़ों को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व करें, थोड़ा उनकी सलाह लें, उनके अनुभव से सीखने की और समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो हमेशा आपको सही दिशा में ही लेकर जाएगा।
1: हाँ जी, ये तो फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। और हमारे आज जैसा कि हमारा जो आज के प्रोग्राम का मेन टॉपिक सीनियर सिटीजन है ना,
0: जी मैम,
1: हमारे चैट बॉक्स में एक हमारे सीनियर आ गए हैं, मैं उनको सिटीजन नहीं बोलूंगी, नहीं सिटीजन बोल सकती हूँ, सीनियर सिटीजन नहीं बोल सकती।
0: ओके,
1: सबके बहुत ही फेवरेट आरजे मनु। तो आरजे मनु की कविताओं का तो क्या ही कहना, उनकी शेरो शायरी का तो आप सभी लोग आप दीवाने हैं, मुझे पता है, क्योंकि बहारे गजल आई थिंक वो कभी कभी कर लेते हैं। और आप सभी को पसंद है उनकी बताई हुई कहानी, उनकी पोयम, उनकी आवाज, उनके गाने। आरजे मनु ज्यादा तो नहीं हो रहे, वो मेरे से मिले हैं और बहुत ज्यादा मेरी तारीफ कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि 2-4 लाइन उनके।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो आरजे मनु अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में आए और अपना मुझे आंसर दे कि मैंने आपके लिए सही बोला ना। एंड वेरी नाइस पर्सन, मतलब मैं कितना भी बोल दूं आरजे मनु के लिए, बहुत ही अच्छे इंसान है, बाय नेचर बाय दिल, वाकई में बहुत ही अच्छे इंसान है। तो आरजे मनु अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज एक कमेंट में कुछ लिख दीजिए, हाँ मैं आपकी बात सुन रहा हूँ और मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ, मैं इतना अच्छा इंसान भी नहीं हूँ। अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज ऐसा मेरा कमेंट, मैं चाहती हूँ मेरे दिल से कि आप कमेंट करें कि अरे आरजे संता आप तो बेवजह ही तारीफ कर रहे हैं, मैं ऐसा थोड़ी हूँ, फिर मैं आपकी बात को अग्री कर लूंगी, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, मजाक से परे हटके। तो चलिए हमें यहाँ लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, क्योंकि अभी तक कोई गाना नहीं हुआ है और हमें अभी अगर आपको खाना है खाना तो सबसे पहले सुनना पड़ेगा एक बेहतरीन।
0: वाह, बहुत ही अच्छा था मैम। तो चलिए लिसनर्स, इसी प्यारी सी लाइन के साथ चलते हैं और ये प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, बस यू गए यू आए। स्टे ट्यून्ड।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 88400918123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी RJ समता और साथ में है। हाँ जी, और फटाफट शुरू करते हैं आज के नेक्स्ट सेगमेंट को, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है ना, हम लोगों ने कुछ ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि आज के प्रोग्राम में हम केवल और केवल बड़े बुजुर्गों के बारे में एंड उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो कि हम हमेशा से इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये कह देते हैं कि अरे यार ठीक है ना, अब एज है तो ऐसा होगा ही, ऐसा कुछ हम लोगों को लग जाता है ना। और ये क्यों लगता है, कैसे लगता है मुझे नहीं पता, बट होना चाहिए ऐसा
6: जी। हमेशा उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम ध्यान देते हैं तो चीजें ज्यादा बिगड़ती नहीं है। कई बार हम कहते हैं ना कि चीजें बिगड़ रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके इग्नोर करने की वजह से ही ज्यादा बिगड़ती है।
5: बिल्कुल। और साथ ही में जब एक छोटी सी मुझे चीज याद आ गई है, और वो ये चीज याद आ गई कि हम लोगों ने बागबान मूवी देखी थी, उस वो तो बहुत ज्यादा इमोशनल मूवी है, एक्चुअली इमोशनल मूवी है वो, तो उसमें एक चीज एक सीन था, हालांकि वो तो मूवी थी, बट ऐसा कई बार हम लोगों ने काफी घरों में देखा है कि एक उनके पिता हैं और उनके घर के बड़े हैं और काफ़ी एज के हैं, और उन्होंने अपने बेटे को बोला कि यार बेटा मेरा चश्मा जो है वो टूट गया है, उसको बनवा देना, उसकी फ्रेमिंग करा देना, उसका हो सकता है कि हमारा आईसाइट ज़्यादा वीक हो गया और हमको शीशे उसके चेंज कराने हैं। तो क्या होता है कि वो उसको ये कह देता है कि हाँ ठीक है, आज करा दूंगा, कल करा दूंगा, शाम को करा दूंगा, सुबह करा दूंगा, और ऐसे वो भूल जाते हैं और उसका जो चश्मा होता है वो टूट जाता है। अमिताभ जी थे, उनका चश्मा टूट जाता है और फिर वो किसी भी तरीके से अपना काम नहीं कर पाते हैं, पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, वो उसमें शायरियाँ लिखते थे वो नहीं कर पाते हैं। तो ये तो एक मूवी की बात हो गई। अब हम आते हैं अपनी असल ज़िंदगी में। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पेरेंट्स को, हम अपने घर के बड़ों का ध्यान तो रखते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान हम नहीं रख पाते हैं। लाइक उन्हें क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ उनके लिए फ़ायदेमंद है, क्या फ़ायदेमंद नहीं है। बहुत सारे घर के बड़े क्या करते हैं, ज़िद करने लगते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ज़िद करने लगते हैं कि मुझे मैंगो खाना है, मुझे आम खाना है। आपके सामने तो आप नहीं दोगे, लेकिन आप देखोगे कि रात में जब सब सो जाएंगे तो चुपके से फिर से निकाला, उसको धुला और खा लिया। ये दो दिन पहले मेरे घर में इंसिडेंट हुआ है और मैंने बहुत गुस्सा किया, मेरे भाइयों ने भी गुस्सा किया, और ये जो शुभ कार्य है ये मेरी मदर ने किया है, तो बहुत ही गुस्सा हुए हम लोग कि मतलब। और उसके बाद से कल और परसों वो बहुत ज्यादा मतलब उनके पेन रहा हाथों में, पैरों में। तो कहने का सेंस केवल ये है कि हम उनकी अच्छी आदतों को भी इग्नोर कर देते हैं और बुरी आदतों को तो हम इग्नोर करते ही करते हैं।
6: बिल्कुल।
5: तो ये अच्छी आदत थी उनकी, हमें इग्नोर किया, कि अगर उन्हें मैंगो पसंद है तो हमें उन्हें प्यार से समझाना है कि आप देखो आप डायबिटिक पेशेंट हो, आपको पूरा आम नहीं खाना है, क्योंकि इतने ज्यादा इस समय जो आमों की मिठास आ रही है ना, वो नेचुरल से भी मतलब हाई वो आ रही है, इतने मीठे ज्यादा आ रहे हैं। तो कहा जाता है कि जो फ्रूट्स की जो मिठास होती है, हालांकि वो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालती है डायबिटिक पेशेंट को, लेकिन आम जैसा उसमें तो लग रहा है कि जैसे चीनी 4 चम्मच की जगह 8 चम्मच भरी हुई है। तो ये सीधे आपकी शुगर लेवल को हाई कर देता है। तो हमें उन्हें प्यार से समझाना है, देखो ऐसा है रात में हम लोग सो जाएंगे, आपको खाना है आप 4 आम खा लेना, लेकिन अगर आपको कल सुबह कुछ होता है या फिर आपकी जो बीपी या फिर आपके शुगर लेवल हाई हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम सबसे ज्यादा किसको होगी? आपको खुद होगी, खुद को होगी, क्योंकि ये सफर आप खुद करेंगे एंड देन आपका फैमिली करता है, आपको भी तो झेलना पड़ेगा,
6: आपकी बॉडी पे ही तो आखिर अगर पेन होगा या जो भी होगा आपकी बॉडी पे ही तो होगा।
5: सीधी सी बात है कि आपकी बॉडी पे ही तो पेन होगा, आपकी बॉडी ही सफर करेगी और उसके बाद फैमिली सफर करेगी कि उनको दौड़ना है, डॉक्टर के पास लेके जाना है, तमाम चीजें होती हैं। फिर तो प्यार से समझाना है कि हाँ ठीक है मम्मी, ठीक है पापा, आपका चश्मा टूट गया है तो मैं शाम को बनवा दूंगा। अगर बाई मिस्टेक हम भूल जाते हैं तो फिर उन्हें प्यार से समझाना है कि आज ऑफिस में काम बहुत था, आज हम मार्केट ही नहीं निकल पाए, मैं कल आपका ये काम जरूर से कर दूंगा। अब आती है उनकी फिजिकल बॉडी की बात। तो कई बार आपने देखा होगा, आज हम एक ऐसी डिजीज के बारे में बात करने जा रहे हैं कि हमेशा से होता है कि मतलब अब तो अंशिका बड़े बुजुर्ग क्या, मुझे तो लगता है कि ऐसी ये जो आम जो प्रॉब्लम है ये हर किसी की आंखों में होती है।
6: जी मैम बिल्कुल,
5: कि आंखों का पानी सूख जाना और इचिंग होना, और जैसे आपको लगेगा कि मेरी आंखें बिल्कुल सूखी सूखी हैं, ड्राई, बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं, एंड उसके बाद में जब आप सो के उठते हो तो आंखों के आसपास एक सफेद सी परत बन जाना।
6: जी मैम,
5: ये हमेशा से ऐसा नहीं है कि बड़े जो 60 प्लस हैं 70 प्लस हैं उन्हीं की आंखों के साथ होता है, ये आम चीज है, ये सभी के साथ हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो आज की जो मेन हम लोग डिजीज लेकर के आए हैं वो आज की है, आइए जानते हैं कि ये क्यों होता है एंड उपचार एंड निवारण मैं आपको बताऊंगी।
6: बिल्कुल, तो सबसे पहले बताते हैं कि ये क्यों होता है, और जैसे कि अभी मैम ने कहा कि जरूरी नहीं है कि ये सीनियर सिटीजन्स में हो, आजकल ये छोटे बच्चों में भी होता है। छोटे बच्चों का मतलब है कि जैसे 14 साल की एज से जो ऊपर जा रहे हैं 19, 20, 25, उनमें ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है। और कहीं ना कहीं सबसे मेन कारण होता है ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोन का यूज़ करना, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि फ़ोन से जो रेडियंस निकलते हैं वो हमारी आंखों को कई तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, और उनमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि ड्राई आइज़ का हो जाना। लेकिन अगर बात करें कि सीनियर सिटीजन्स में ये क्यों होता है, तो सीनियर सिटीजन्स में एक जो नेचुरल कारण होता है वो ये होता है उनकी बढ़ती उम्र। उनकी बढ़ती उम्र की वजह से आंसू हमारी आंखों में जो बनते हैं वो एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हमारी आंखों में आंसू बनते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र की वजह से उनका ये केमिकल प्रोसेस जो होता है ये बहुत धीमा हो जाता है,
5: उसका प्रोसेस बनने का धीरे धीरे हो जाता है, और जिसके कारण से मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है।
6: जी मैम, लेकिन उसके अलावा कुछ और कारण भी होते हैं, जैसे कि आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं, मान लीजिए बीपी पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, या कोई भी आपको ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको डेली रूटीन में दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो पावर है, जो डोज है वो ज़्यादा हो जाना, या आपका ज़्यादा पावर की दवा लेना भी ड्राई आइज को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है।
5: पर अगर मैंने तो मूवीज में ये सुना था कि नहीं, मतलब एक फनी ये बात है, मतलब फनी अगर वे में हम लोग इसको लेना चाहें, तो मैंने कई मूवीज में सुना है कि उसके तो आंसू ही सूख गए, वो इतने सदमे में आ गई थी।
6: अब
5: ऐसा भी है,
6: ऐसा भी होता है,
5: सदमे में आ जाने के बाद में आंसू,
6: सदमे में इंसान आता है तो आंसू सूख जाते हैं,
5: है ना।
6: हाँ, लेकिन अगर इसका उल्टा करें हम
5: तो क्या,
6: सदमे में आएंगे नहीं, सदमे में ले आएंगे,
5: ले आएंगे ना, हमारे जैसे अंशिका और समता जैसे
6: लोगों तो ये उल्टा हो जाएगा,
5: तो सदमे में लोगों को हम लोग ला के और उनके आंसू नहीं
6: सुखा देंगे,
5: उनको खुद ही सुखा देंगे पूरा।
6: बिल्कुल, आप आंसू क्यों सुखाना, अगर इंसान को सुखाना है तो उसको प्रॉपर सुखाइए, आंसू क्यों सुखाने हैं।
5: वैसे ही आजकल बारिश बहुत हो रही है,
6: बारिश बहुत हो रही है, मतलब इंद्र भगवान इतने जो है जल बरसा रहे हैं, उसमें आंसू बरसाने की कोई आवश्यकता,
5: कोई आवश्यकता नहीं।
6: मेरे जैसे होगा तो फिर वो फिर आंसू नहीं सूखेंगे, फिर
5: इंसान सूख जाएगा।
6: बिल्कुल बिल्कुल, 100 में 200%।
5: चलिए, तो अभी हम लोग को किसी को नहीं सुखाना है, फिलहाल हमें अपने सीनियर सिटीजन के आंसुओं और उनकी आंखों की देख भाल के लिए बात करनी है।
6: यस, तो एक कारण मैंने आपको बता दिया कि बहुत हाई एमजी की दवा अगर वो लेते हैं तो इससे भी असर होता है, इसलिए बहुत हाई पावर की दवा उन्हें ना दें। एक प्रॉब्लम और है, लापरवाही नहीं कहेंगे इसे, लेकिन कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं कि जो बहुत हाई पावर की दवा होती है, डॉक्टर क्या कहते हैं, जब भी आपको कोई कैप्सूल दी होगी या ज्यादा पावर की दवा दी होगी तो डॉक्टर कहते हैं इसे गुनगुने दूध के साथ लीजिएगा
5: या गुनगुने पानी के साथ,
6: लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि हम वैसे सादे ठंडे पानी से अरे खा लो कुछ नहीं होता
5: अरे
6: है।
5: हमारे यहाँ तो जो अगर कभी कोई बीमार होता है ना बस फ्रिज से पानी निकाला बॉटल हाँ। और मतलब गड़गड़ गड़गड़ उससे हाँ। ये बहुत ज्यादा मतलब हार्म होता है बॉडी
6: बिल्कुल सबसे और दूसरी बात ये कि जो जैसे जिस वे में कहा जाए उसे वैसे उसी वे में लेना चाहिए।
5: अच्छा तुमसे एक क्वेश्चन
6: पूछिए।
5: देखो अगर किसी को हाफ डोज खानी हो मतलब अगर मतलब मेरा तो मानना ये होता है कि अगर आप कोई भी नई दवा शुरू कर रहे हैं तो टैबलेट्स को आधा करके खाओ हाँ। आधी करके आपको उस वो लेना चाहिए ठीक है
6: जी।
5: लेकिन अगर कैप्सूल को आधा करना हो तो कैसे खाएंगे हम कैप्सूल को आधा करना हो तो कैसे करेंगे
6: कैप्सूल को आधे कैसे करेंगे मैम उसके अंदर तो वो फिल होती है ना
5: तो बताओ ना कैसे करेंगे हम तुम मैं आपसे पूछ रही हूँ तो आप मुझे बताओ अपना दिमाग लगा के कि कैप्सूल को आधा कैसे करेंगे
6: मुझे नहीं पता।
5: लिसनर्स आपको पता है कि कैप्सूल को आधा कैसे करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी जो ये कलाकारी है ना वो आज समता ने की है। हाँ जी बताऊं कैसे
6: बताइए।
5: बहुत साल पहले जब मैं कैप्सूल नहीं खा पाती थी छोटी थी मैं कैप्सूल नहीं खा पाती थी और गोलियों को तो आधा आधा करके चलो ठीक हाँ। है ठीक है अब मम्मी ने कहा कि ये भी खाना है भाई कैप्सूल भी खाना है तो अब कैप्सूल को मम्मी दे के तो गई मुझे अब मुझे दिमाग में ये था कि अगर मैं कैप्सूल खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी क्योंकि इसमें हाई डोज होता है वो एक फीड था दिमाग में क्योंकि टैबलेट्स तो आधी आधी करके खा लो चलो ठीक है एक माइंडली वो हो जाता है पर कैप्सूल कैसे आधा करो तो मैंने एक उसमें टेक्निक एक अपनी एक युक्ति लड़ाई मैंने कैप्सूल को खोला ठीक है ऐसे खोला कि पूरा एक अंदर वाला पूरा मसाला पहले एक कैप में पूरा भर लिया कैप्सूल को धीरे धीरे खोला और जो उसके अंदर मटेरियल था ना उसको मैंने हाफ कर दिया एंड फिर से उसको कैप्सूल को पैक कर दिया पूरा उसको कैप्सूल के हिसाब से फिर से मैंने उसको पैक करके फिर खाया अब उसका फायदा क्या हुआ कि उसका मटेरियल अंदर से कम हो गया तो दिमाग में ये आ गया कि कैप्सूल भी आधा हो गया ठीक है तो जो इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करने में अगर कोई कर सकता है तो वो है आरजे समता एंड आरजे अंशिका
6: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल तो ये तो फिर बहुत ही अच्छी वाली मैम ने अभी भी युक्ति बताई तो आप सब भी यूज कर सकते हैं
5: नहीं मतलब क्या आप सब भी यूज नहीं कर सकते हैं वो तो मैंने मजाक में मतलब फन में किया था और कुछ कैप्सूल्स ऐसे आते हैं कि उसमें लिक्विड होता है
6: हाँ।
5: तो अगर आप उसको आधा करेंगे ना तो वो नुकसान हो जाएगा ये जानिए
6: हम मस्ती कर रहे थे आप इसको वो कहते हैं ना जब कोई स्टंट दिखाया जाता है कभी तो बाद में होता है ना कि कृपया आप इसे दोहराने की कोशिश ना करें तो वैसा कुछ हम भी कहने वाले हैं कि हमने मस्ती की है तो कृपया आप उसे दोहराने की कोशिश ना करें।
5: तबिश कह रहे हैं कि मी टू फेक देता था मतलब मैं तो फेक देता था मतलब हाँ। उनके कहने का मतलब ये था कि मैं तो फेक देता था हाँ जी तबिश लेकिन खाना पड़ा था तो फिर मैंने तो भाई ये टेक्निक करी थी कि मैंने उसको आधा किया और खाया एंड महेंद्र जी कह रहे हैं कि हर कैप्सूल को आधा करके नहीं खाया जा सकता क्योंकि इसके दवा का असर खत्म हो सकता है या सेहत को नुकसान डेफिनेटली यस महेंद्र जी तो वो तो मैं छोटी थी बचपन में और कहते हैं ना कि बचपनों में हर एक एक्सपेरिमेंट करने का मन करता है
6: बहुत मजा आता है
5: हाँ और जिस चीज के लिए मना कर दो ना तो उसमें तो और घुसने का मन करता है कि नहीं मम्मी ने बोला कैप्सूल नहीं खोलना है पूरा खाना है तो कैप्सूल को मैं खोलूंगी देखूंगी इसमें कौन से जादू अंदर क्या भरा पड़ा
6: बिल्कुल बिल्कुल
5: है ना तो वो बचपन की बात ही एंड बिल्कुल राइट आपके हिसाब से मैं आपसे सहमत हूँ कि कुछ कैप्सूल्स क्या मतलब सारे कैप्सूल्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें कभी भी खोल के नहीं खाना चाहिए क्योंकि दवा का असर जो होता है वो हो जाता है
6: लेकिन वो एक क्यूरियोसिटी होती है ना तो कभी कभी अपनी क्यूरियोसिटी जो है वो हमें
5: बचपन तक सीमित रहती है अभी कोई मुझे बोले कि कैप्सूल खोलो और फिर खाओ तो मैं क्या खाऊंगी
6: नहीं
5: खाऊंगी ना फिर तो ये तो वो वाली
6: मैं वही कह रही थी हाँ। बचपन वाली क्यूरियोसिटी
5: बचपन वाली एंड आशु जी हाँ मैंने इसको डांट दिया आशु जी गुड आफ्टरनून कैसी हैं आप
6: चलिए आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास क्या है वो बताते हैं आपको अभी तक हमने बताया क्यों होता है
5: हाँ।
6: अब बताते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं आप कैसे पहचान सकते हैं कि आप ड्राई आईज के शिकार हैं आपकी आंखों में भी ये प्रॉब्लम हो रही
5: हाँ जल्दी बताओ हम कंपैरिजन करेंगे पहले अपनी आंखों से
6: जी तो मैम तो कंपैरिजन करेंगी लेकिन ऐसा
5: मैं ये जो भी बताती है ना तो मैं हाँ। सबसे पहले अपने पे कंपैरिजन जरूर कर लेती हूँ मैं तुरंत
6: तो चलिए बताते हैं देखते हैं क्या है तो सबसे पहले जो इसका एक लक्षण होता है वो ये होता है आंखों में चुभन महसूस होना
5: नहीं हो रही है
6: ना दूसरा होता है अगर आप टीवी देख रहे हैं या फोन चला रहे हैं, तो उस वक्त आपकी आंखों में आंखें जो हैं वो कुछ देर तक जब आपने देखा, जैसे 10 मिनट तक आपने देखा, और 10 मिनट के बाद आपको हल्का हल्का दर्द फील होना और आंखें लाल हो जाना, नहीं हो रहा है ना? गुड,
5: तो हम अभी सीनियर सिटीजंस की लाइन में नहीं है।
6: हाँ,
5: इट मींस तू दो तो पास कर लिए,
6: दो पास कर लिए। और तीसरा आता है कि कभी कभी आपको अचानक आपकी आंखों से पानी जैसा लेक लिक्विड बहने लगता है, अचानक से, मतलब आप आराम से बैठे हुए थे और कभी कभी आपको महसूस होता है।
5: नहीं, ये तब होता है जब हम जमाई लेते हैं, जब हम जमाई लेते हैं तब होता है, और या फिर नेचुरल तरीके से जब हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं तो आंख से आंसू नहीं पानी गिरते हैं।
6: जी मैम, ओके। तो लेकिन जो ड्राई आईज में होते हैं उनको कभी कभी ये होता है। और दूसरी चीज होती है कि जब आपने सोए और जब सुबह आप उठे तो आपकी आंखों में, जैसे मैम ने भी स्टार्टिंग में बताया था ना कि सफेद पपड़ी जैसी हो जाती है, वो सबसे बड़ा एक सिम्टम्स होते हैं कि आपकी आंखों में कहीं ना कहीं पानी की कमी हो रही है।
5: हाँ, सूख रहे हैं वहाँ के जो जो कहते हैं ना कि हर एक जगह पे नसें होती हैं बहुत ही बिल्कुल बाल के हिसाब से, तो वो नसें जो होती हैं ना वो सूखने लगती हैं, आँख की नसें होती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि पानी प्रॉपर तरीके से पीना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी के हर एक पार्ट, हर एक नस में पानी पहुंचता है।
6: बिल्कुल,
5: तो प्रॉपर पानी पहुंचना चाहिए। इसीलिए हम लोग हमेशा से, जब हम लोग अपने शो को ऑफ भी करते हैं तो भी हम लोग कहते हैं कि आप पानी ज़रूर भारी मात्रा में पानी पिया करिए, मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन आप खाना कम खाओ लेकिन पानी प्रॉपर मात्रा में पियो।
6: और एक लक्षण इसका ये भी होता है कि इसमें आपको सिर के पिछले हिस्से में दर्द बहुत ज्यादा होगा। अगर आपके सिर के पिछले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द होता है, जैसे कभी कभी वो 10 मिनट के लिए पेन होगा लेकिन आपको लगेगा कि एकदम जैसे खींच रहा है अंदर की तरफ, तो अगर ऐसा रेगुलर आपके साथ हो रहा है तो इट मीन्स कि आपको आंखों में ये ड्राई आईज की परेशानी है। और इसके लिए आपको कुछ चीज़ें जो है, हमेशा हम क्या करते हैं कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम ये सोचते हैं कि अरे नहीं ठीक हो जाएगी, अरे नहीं ठीक हो जाएगी, लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं करना है। इसमें आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और अपनी इन आंखों के प्रॉब्लम्स को सही करें, क्योंकि अगर ये बढ़ जाती हैं तो फिर ज़्यादा नुकसान हो सकता है।
5: बिल्कुल, तो अंशिका मुझे लग रहा है कि हमें इसका जो निवारण है बताना चाहिए, लेकिन एक ब्रेक के बाद बताना चाहिए।
6: बिल्कुल, ब्रेक के बाद बताते हैं। भाई देखिए, कारण क्या होता है और कैसे होता है, क्या लक्षण होते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन निवारण कौन बताएगा, ये तो आपको पता ही है।
5: हर प्रॉब्लम का निवारण
6: एक है हमारे पास, हर नहीं जैसे कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र एक होता है, वैसे हमारे पास भी ब्रह्मास्त्र है।
5: हर प्रॉब्लम का निवारण जो होता है ना, ये हमारे, मुझे तुरंत बॉल बॉल होता है ना, बॉल पास कर देती है कि चलो आज समता अब इनका निवारण बता।
6: ठीक, बहुत अच्छे से करती है मैम हमारी। हाँ, इसीलिए
5: शायद हो गया बटरिंग,
6: हो गया
5: अब चलें। वैसे भी बटर खत्म है हमारे घर। ठीक है, तो चले सुन लेते हैं इस प्यारे से गाने को, एंड इसकी जो कि अभी डिजीज बताई गई है आंखों को लेकर के, और उसका निवारण मैं आपको बताऊंगी। तो बस हम यूं गए यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
6: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है RJ
7: अंशिका।
6: तो चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं निवारण पे, क्योंकि अभी जब हम लोग ब्रेक में गए थे तो हम लोगों ने बताया था कि कुछ बड़े बुजुर्गों के आंखों से जो पानी बहता रहता है वो सूख जाता है अगर, या फिर क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण से ये होता है। तो आपने कारण तो सुन लिया, अब आइए बात करते हैं उसके निवारण की। तो गुनगुने पानी से सबसे पहला ऑप्शन है कि गुनगुने पानी से अपनी आंखों की सिकाई करनी चाहिए, या फिर आपके घर में अगर मतलब घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उनका वैसा ध्यान रख सकते हैं। एक साफ सूती कपड़े को गुनगुने पानी में भिगोकर निचोड़ लें, और मतलब बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, गुनगुना होना
7: हल्का।
6: हाँ, और उसे बंद आंखों पर 5 से 10 मिनट तक के लिए रख दें, मतलब सूती कपड़े को। ठीक है, तो ये आप रोजाना कर सकते हैं या फिर आप वीक में एक बार कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब इसका फायदा मैं आपको बता दूं कि पलकों में मौजूद जो तेल बनने वाली ग्रंथियां होती हैं वो अक्सर ब्लॉक हो जाती हैं। इसीलिए हल्की सिकाई से वह तेल पिघलकर बाहर आता है, जिससे आंसू जल्दी सूखते नहीं है। समझ में आया?
7: समझ में आया।
6: तो ऐसा करना है, ठीक। दूसरा पॉइंट है कि पलकों की अच्छी तरीके से सफाई करनी है। सेम प्रोसेस है कि गुनगुने पानी में थोड़ा सा बेबी शैम्पू, आप ध्यान से सुनिएगा, बेबी शैम्पू या माइल्ड शैम्पू, माइल्ड क्लीजर जो होता है, क्लीजर होता है, या तो आप सबसे अच्छा है कि बेबी शैम्पू लें। अच्छा, बेबी शैम्पू मैंने क्यों बोला बताओ?
7: क्यों मैम?
6: आपको, आप थोड़ा दिमाग लगाओ ना कि मैंने बेबी शैम्पू आंखों पर यूज करने के लिए क्यों बोला है।
7: क्योंकि उसमें केमिकल्स थोड़े कम होते हैं।
6: हाँ, और जब हम अपने बेबी को जब हम क्या कहते हैं नहलवाते हैं, और अगर शैम्पू आंख में भी चला जाता है तो वो उसकी आंखों में हार्म नहीं होता है। तो सेम ऐसे ही ये आपकी आंखों पे हार्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए माइल्ड शैम्पू या बेबी शैम्पू को या फिर क्लीजर मिलाकर उंगलियों की मदद से बंद आंखों की पलकों और आई लैशेस के पास हल्के हाथ से आप उसको मसाज कर सकते हैं, और फिर आप साफ पानी से धो सकते हैं। यानी अगर शैम्पू मतलब जो बेबी शैम्पू होता है वो अगर आंखों में चला भी गया तो कोई हार्म इससे नहीं होगा। ठीक है, और जिससे आपकी आंखों के पलकों के ऊपर जो ब्लॉक हो जाती हैं जो तेल के कारण से, वो ठीक हो सकती हैं।
7: ओके,
6: नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप अपने खान पान में ओमेगा 3 फैटी एसिड शामिल कर सकते हैं। जैसे बुजुर्गों के आहार में अखरोट, अलसी के बीज, चिया सीड शामिल करें, ताकि आपकी आंखों में जो भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो वो प्रॉब्लम ना हो।
7: ओके, यानी कि कहीं ना कहीं आपको अपनी डाइट को सुधारने की जरूरत है और उसमें ये सारी चीजें जिनमें ओमेगा 3 है वो ऐड करना है आपको।
6: हाँ, इन्हें
7: इन्हें लेना है
6: बिल्कुल। और नेक्स्ट और बढ़ते हैं अभी हम कि कमरे में आप क्या करना है कि ह्यूमिडिफायर क्या होता है कि आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर बुजुर्ग आपके ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां एसी या रूम हीटर चल रहा है, तो कमरे में एक ह्यूमिडिफायर हवा में नमी बढ़ाने वाली मशीन होती है जो आप लगा सकते हैं और आपके रूम में जो एक नमी है वो हमेशा से बरकरार रहे। इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि सूखी हवा आंखों की नमी तेजी से सूखती है, ठीक है, और ह्यूमिडिफायर में हवा में नमी बनाए रखना है और जिससे आंखों को राहत मिलती है। समझ में आया? अब लास्ट बट नॉट लीस्ट एक फायदा और है कि बार बार पलकें झपकना, ये एक एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। टीवी देखते समय या पढ़ते समय बुजुर्गों को याद दिलाएं कि वे अपनी पलकें बार बार झपकें। इसके लिए आपको 20-20 मतलब 20-20 टाइम का एक आप वो बना ले, जैसे एक शेड्यूल बना ले कि 20 बार आपको ये नियम करना ही करना है।
7: ओके, यानी पलकें 20 बार हमें झपकानी है।
6: हाँ, और हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूरी को देखें और उसके बाद अपनी पलकों को झपकाएं। पलकें झपकाने से आंखों के ऊपर आंसू की एक प्राकृतिक परत बनी रहती है।
7: ओके,
6: ये करना है, ठीक है। तो भाई लिसनर्स, मैंने आपको बताया और अगर आपको लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए तो आप बिल्कुल से हमारे बताए हुए चीजों को अपनाएं और ये जो हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं ना बड़े लोगों को, उससे आप खुद भी बचें और अपने घर के बड़ों को भी बचें।
7: बिल्कुल, हमारी बताई हुई चीजों को अपनाएं और आंखों को स्वस्थ बनाएं।
6: तो अब हम चलते हैं एक ब्रेक की ओर, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लेकर के आएंगे आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वाला एक नेक्स्ट टॉपिक। तो चलें अंशिका।
7: बिल्कुल, चलिए लिसनर्स चलते हैं एक बहुत ही प्यारे सॉन्ग की तरफ। बस यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
6: गई आपकी आज क्षमता। तो चलिए फटाफट चलते हैं कुछ प्लांट्स की ओर, क्योंकि आज हमारा बहुत ही स्पेशल वाला जो कि एक सेक्शन होता है वो भी प्लांट्स के लिए होता है। तो आइए जानते हैं, लेकिन उसके पहले धर्मेंद्र मोहन जी आ गए हैं, शुभ दोपहरिया। एंड प्रीति जी शुभ दोपहरिया, चाहत शर्मा शुभ दोपहरिया, और लवली सिंह गोंडा। कोई बात नहीं है, मेरा नाम लिख रहे हैं कि सॉरी समता जी आपका नाम गलत हो गया, इट्स ओके। लिख रहे हैं समता जी एंड अनुष्का जी। अनुष्का, अनुष्का तुम्हारा कब से नाम हो गया?
7: मैम नामकरण
6: अंशिका, अंशिका नाम है इनका। एंड गुड आफ्टरनून एंड शुभ दोपहरिया।
7: शुभ दोपहरिया भी, गुड आफ्टरनून भी।
6: एंड गीता जी शुभ दोपहरिया आपको भी।
7: शुभ दोपहरिया गीता जी।
6: तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हमारा बहुत ही प्यारा सा जो कि एक टॉपिक है, जो कि है प्लांट्स के लिए।
7: तो आज प्लांट्स के लिए हम ये बताने वाले हैं कि देखिए, जैसे घर में बना हुआ खाना होता है ना, वो हमारी बॉडी को बहुत एनर्जी देता है। हम हमेशा कहते हैं कि खाना जब भी आप खाएं तो घर में बना हुआ ही खाना चाहिए। ठीक उसी तरह प्लांट्स के लिए भी होता है कि ऑर्गेनिक जो खाद होती है, यानी कि जो हमारे घर की चीज़ों से बनती है, वो उन्हें एक अलग तरह की एनर्जी देती है और उनके ग्रोथ लेवल को बढ़ा देती है। इसलिए जब भी आप अपने प्लांट्स के लिए खाद का यूज करें तो वो आपको हमेशा घर की खाद का यूज करना चाहिए। तो आज घर की खाद में मैं आपको बताऊं कि सबसे अच्छी एक चीज होती है जो हमारे घर में बहुत ज्यादा यूज भी होती है और पौधों के लिए तो बहुत अच्छी होती है।
6: क्या?
7: चाय पत्ती।
6: अरे और पता है, देखो तुम, मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली कि मतलब ये चीज करनी चाहिए, बट मैं आपका नुस्खा बताने से पहले मैं बता दूं, उसके बाद मैं जानना चाहती हूँ कि मैं सही करती हूँ कि गलत। देखो मैंने अभी okay. सुना नहीं है, ठीक है?
7: ठीक है मैम।
6: जब हमारे यहाँ चाय बनती है ना, तो चाय को जब हम लोग उसको फ्राई बन को रख देते हैं, तो मेरी आदत है, मतलब बहुत टाइम से मेरी आदत है कि जो चाय पत्ती छन के आती है ना, मैं सब प्लांट्स में थोड़ी थोड़ी डाल देती हूँ।
7: ओके।
6: और वही चाय पत्ती जब छन के सब प्लांट्स में चली जाती है, और मैं काफी दिन से देख रही हूँ, मेरा एक तुलसी का पौधा है, बहुत ही बढ़िया सा हरा भरा है। तो अब आप क्या बता रही थी, तुलसी का और चाय पत्ती का?
7: यही जो भी आपने बताया।
6: पक्का वाला?
7: पक्का वाला।
6: ओके ठीक है।
7: तो इसे ही कहते हैं फिर
6: घर के बड़े बुजुर्ग का होना, है ना?
7: यस। आपने मेरी लाइन कंप्लीट कर दी। देखा लिसनर्स, मैम मेरे दिल की बात जो है दिल से समझ जाती है।
6: ठीक है, हो गया,
7: हो गया।
6: चलो
7: तो मैम ने अभी अभी जैसे कि आपको बताया कि वो तुलसी के पौधे में से डालती है, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घर में गुड़हल का पौधा है या आपने अभी गुलाब लगाया हुआ है अपने घर में, तो उन दोनों में इसे जरूर डालना चाहिए।
6: हाँ।
7: बहुत अच्छी ग्रोथ गुलाब में भी होगी और साथ ही साथ में गुड़हल में भी होगी। अब आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे।
6: ठीक है।
7: दूसरा वाला पॉइंट ये है कि पौधों को पोटेशियम की बहुत जरूरत होती है ग्रोथ करने के लिए, और पोटेशियम एक ऐसा फल होता है जिसमें पोटेशियम पूरी पूरी मात्रा में पाया जाता है।
6: कौन सा फल?
7: और येलो उसमें आता है, येलो कवर में, बहुत ही अच्छा सा
6: पपीता?
7: होता है। नहीं,
6: येलो कवर मैंगो?
7: नहीं।
6: तो कौन सा फल आता है फिर?
7: बनाना।
6: ओके ओके ओके ओके
7: बनाना। तो बनाना बहुत ही अच्छा सा एक फल आता है। तो क्या करना है आपको कि बनाना के जो मतलब उसके ऊपर के जो छिलके होते हैं ना, उनको आपको काट लेना है अच्छे से, उसको मतलब पीसेस कर लेने हैं उसके, और फिर 2 से 3 दिन आपको उसे पानी में भिगो देना है
6: छिलकों को।
7: हाँ
6: अच्छा।
7: और फिर उस पानी को छान करके छिलके आपको अलग कर लेने हैं, और वो पानी आपको पौधों की जड़ों में डालना है।
6: ओफो।
7: इससे आपके पौधों में पोटेशियम की मात्रा कभी कम नहीं होगी, और पौधे कभी जड़ से नहीं सूखेंगे।
6: यानी अगर आपके घर में फ्रूट्स आ रहे हैं, अगर आपके घर में बनाना आ रहा है, तो उन छिलकों को यूं ही जाया न करें। आप घर की ही ऑर्गेनिक खाद को आप और उसका पानी भी बना सकते हैं।
7: बिल्कुल। अब आते हैं उनके लिए जो नॉनवेज खाते हैं। अगर आप खाते हैं तो ही ये करिएगा, वरना मत करिएगा।
6: जी,
7: तो क्या करना है आपको कि जिनके भी घर में अंडे आते होंगे, अंडे के जो छिलके होते हैं वो आपको 2 से 3 दिन तक धूप में उसको अच्छे से सुखा लेना है।
6: हाँ।
7: जब वो पूरा सूख जाए उसके बाद आपको उसको पाउडर बना लेना है। पाउडर बना करके इसको रख लीजिएगा और ये पाउडर आप अपने पौधों पे थोड़ा थोड़ा डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जैसे आपने मान लीजिए टमाटर के पौधे लगाए हैं या मिर्च के पौधे या बैंगन के, बहुत लोगों का मैंने देखा है सब्जियों में, तो अगर वो पाउडर आप थोड़ा थोड़ा पौधों पे डाल देंगे तो उससे ये तीनों पौधे खराब नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा कि सिर्फ मिर्चे के, टमाटर के और बैंगन के पौधों में ही आप इसे डाल सकते हैं, बाकी किसी और पौधे में आप इसे नहीं डाल सकते।
6: ऐसा क्यों?
7: ऐसा इसलिए मैम कि जैसे फूल के पौधे की अगर बात करें तो बहुत सेंसिटिव होता है, और हम हमेशा कहते हैं ना कि आपने देखा होगा अंडे में एक्स्ट्रा गर्मी होती है।
6: हाँ।
7: इसीलिए ये कहा जाता है कि कभी भी अंडा गर्मी में नहीं खाना चाहिए, जहाँ तक हो सके आप उसको अवॉइड करें। तो इसी की वजह से अगर आप इसका छिलका डाल रहे हैं तो उसमें भी प्रॉपर गर्माहट है अभी भी, तो ये फूल के जो सेंसिटिव पौधे होते हैं उन्हें खराब कर देती है। इसलिए आप मिर्चे में, बैंगन में, टमाटर में डालिए, क्योंकि इनकी जो सोप करने की पावर होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, वो उसकी गर्मी को सोप करके ही पकते हैं।
6: अच्छा।
7: इसलिए नुकसान नहीं करते, और बाकी पौधे इसकी एक्स्ट्रा गर्मी से सड़ने लगते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती
6: है। तो आपके कहने का सेंस ये है कि आप मतलब कुछ ही ऐसे पौधे हैं जिसमें आप ये एग का ऊपर वाला यूज कर सकते हैं,
7: सभी में नहीं। अब आते हैं कि एक ये ऐसी चीज है जो आप सभी पौधों में यूज कर सकते हैं। जब भी हम घर में दाल, चावल या सब्जियां धोते हैं,
6: हाँ।
7: तो उसका जो पानी बचता है हम उसे फेंक देते हैं या जैसे भी यूज करते हैं, लेकिन अब आप इसका पानी पौधों में डाल सकते हैं।
6: अच्छा, मैं ये भी करती हूँ। अगर दाल का पानी है, अगर मैंने कभी संडे को खाना बना लिया दिन में, तो उसका पानी सबसे पहले, या चावल का पानी, दोनों को मिक्स कर लिया, या फिर सब्जी धुल रहे हैं, जो पहला पानी होता है सब्जियों का, वो भी आपको कभी नहीं वेस्ट करना है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप आलू काट रहे हैं, सब्जी कोई भी काट रहे हैं, लौकी काट रहे हैं, या फिर कोई, तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि उसको कट करके तब धुलते हैं।
7: जी मैम।
6: सिवाय भिंडी, एक ऐसी सब्जी जिसको कट करने के बाद नहीं धुला जाता है। बाकी सब चीजें ऐसे, बैंगन भी आप क्या कहते हैं कट करके धुल सकते हैं। तो आपका जो भी सब्जियों का पहला पानी होगा, मतलब आपने जब आप धुल रहे हैं और वो पहला पानी जो होगा थोड़ा सा मटमैला हो जाएगा या आपको दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, वो पानी आपके पौधों के लिए सबसे बेस्ट ऑन बेस्ट माना गया है।
7: Yes.
6: तो मैं तो ऐसा करती हूँ। और आपके घर में जैसे दाल चावल बन रहा है, कोई भी दाल बन रही है, तो वो भी आप उसका पानी भी बजाय आप सिंक में, बजाय आप नालियों में बहाने से, आप अपने घर के प्लांट्स में यूज करिए, क्योंकि उसकी ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट माना गया है।
7: बिल्कुल। अब आते हैं कि हमें कुछ, जैसे घर में वेस्ट बहुत लोगों के बॉक्सेस पड़े होते हैं।
6: हाँ।
7: बड़े वाले बॉक्सेस जिनमें कभी पार्सल आता है, सामान आता है, तो हम सोचते हैं कि इनका क्या करें, ये तो वेस्ट है, इन्हें आप फेंक दीजिए।
6: हाँ।
7: लेकिन मैं बताऊं कि आप उससे भी खाद बना सकते हैं।
6: वेस्ट किससे?
7: जो बड़े बड़े कर्टन्स आते हैं मैम हमारे घर में, जो सामान कभी आता है, जैसे फ्रिज आता है, या छोटे छोटे कर्टन भी घर में होते हैं, तो उनको आपको क्या करना है कि उन कर्टन्स को आपको छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, या फिर जो अखबार हैं आपके घर में उनके टुकड़े कर लीजिए, और उन टुकड़ों को थोड़ी देर के लिए पानी में आप भिगो दीजिए। भिगोना है बस एक रात के लिए।
6: अच्छा।
7: एक रात के लिए आपने भिगो दिया, तो जब दूसरे दिन आप देखेंगे तो वो कागज, अखबार जो होता है वो पूरा सोप कर लेता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उनको निकाल देना है, कर्टन्स को और जो भी न्यूज़पेपर है उसे, उसका जो पानी है वो पानी आपको पौधों में डालना है। क्योंकि दफ्ती जो होती है, कागज किससे बनता है? पेड़ों से बनता है, ट्रीज से बनता है। इसलिए हम कहते हैं कि कागज ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनमें वो प्रोटीन्स होते हैं जो पौधों के लिए काम आते हैं। न्यूज़पेपर जब छपता है तो उसमें इंक का यूज होता है, उस इंक में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पौधों के बहुत ज्यादा काम आती है। इसलिए आप उन्हें वेस्ट ना करें, उन्हें यूटिलाइज करें और इन्हें अपने पौधों में जरूर डालें। नारियल का छिलका बहुत ज्यादा अच्छा होता है पौधों के लिए। कौन से नारियल? जैसे जब हम पानी वाला नारियल लाते हैं घर पे यूज करने के लिए,
6: उसके ऊपर वाला जो होता है, ब्राउन कलर का ना, वो छिलका।
7: जी मैम। वो बहुत,
6: हाँ मैंने वो भी सुना है कि उनको ना आपने जैसे आपके घर नारियल आया तो उसको ऊपर का जो बहुत सख्त वाला होता है उसके ऊपर जो ब्राउन कलर के बाल बाल जैसे हम लोग बोलते हैं उसको निकाल लीजिए और उसको छोटे छोटे आप उसके पीसेस कर लीजिए कैंची से, क्योंकि हार्ड होता है, कैंची से या चाकू से आप उसका छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी भी ऑर्गेनिक खाद बहुत बढ़िया बनती है।
7: बिल्कुल, तो आप इसे बना सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। और एक बात और आती है कि आपने देखा होगा कि कभी फर्नीचर का कोई काम हमारे घर पे होता है, ये लकड़ी का कोई काम होता है तो उसमें से बुरादे निकलते हैं।
6: हाँ।
7: जब वो लकड़ी काटते हैं या काम करते हैं तो वो बुरादा आप पौधों में जरूर डालिए।
6: हाँ।
7: क्योंकि वो उनके लिए बहुत अच्छा
6: होता है। भी एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है,
7: बेस्ट ऑप्शन है, तो आप जरूर डालिए इन सभी को जो हमने आपको बताया और पौधों के लिए घर पे ही इन खाद को बनाए।
6: जी, तो आपने जो भी जानकारी ली उस संपूर्ण जानकारी के लिए मुझे सिर्फ यही कहना है कि आप इन इस सारी जानकारियों के लिए एक फीडबैक हमें ज़रूर दिया करिए, क्योंकि आपके एक फीडबैक से ना हम लोगों को लगता है कि हाँ हम लोग ने जो आपको बताया वो आप लोगों ने सुना और उस पर अमल आप ज़रूर करेंगे। तो चलिए अब बारी है किसी एक सॉन्ग की,
7: तो चलिए लिसनर्स चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग तैयार कर रहा है, सुनते हैं बस यूं गए और यूं आए स्टूडियो।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज का जो है टिप ऑफ द डे, आइए जानते हैं।
2: आज का टिप ऑफ द डे कहता है कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों को थोड़ी जिम्मेदारियां देनी चाहिए, जिसकी वजह से उनका जो पुराना आत्मविश्वास होता है, जो खुशी होती है, वो वापस लौट कर आ जाती है। छोटी छोटी जिम्मेदारियां देने का मतलब है, जैसे घर में बच्चे होते हैं बहुत लोगों के, मम्मी पापा बाहर जाते हैं, तो उनको कह करके जाना कि मम्मी जरा मैं जा रही हूँ और आप इस ध्यान रखना बाबू का। या फिर छोटी छोटी जिम्मेदारियां देने का मतलब होता है कि घर में कोई आने वाला है अगर गेस्ट, तो आपको उनको कहना है कि ये गेस्ट आने वाला है और आपके साथ उसके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करना, तब तक मैं आ जाऊंगी। अगर हम इस तरह के छोटे छोटे काम उन्हें देते हैं तो इससे उनके अंदर जो एक खालीपन आता है कि मैं चीज़ों को कैसे करूँगा या कर पाऊँगा या नहीं, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है और वो बहुत बेटर भी फील करते हैं।
1: ओके, तो आज का मोटिवेशन, आज का यानी कि जैसे कहते हैं ना कि टिप ऑफ द डे क्या हुआ,
2: टिप ऑफ द डे आज हमारा यही मोटिवेशन है। क्योंकि जैसे हमें अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए एक दवाइयों की जरूरत होती है, वैसे मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए मोटिवेशन की जरूरत।
1: एग्जैक्टली, मोटिवेशन को हमेशा से बनाए रखना चाहिए हमारे घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में। तो आज का सेक्शन हम यहीं पर करते हैं एंड, और आपको सभी को पता होगा कि कल से आपकी नई होस्ट आ गई है, यानी कि हमारी आरजे अंशिका जो कि करती है आपका कॉलर ट्यून गोंडा। तो बस हम उन्हें देंगे अभी 2 मिनट के लिए इजाजत, उनसे हम बाय शाय नहीं कराएंगे क्योंकि वो बहुत थक जाएंगी फिर, आप सभी को पता है। तो ये आपसे बाय करेंगी हमारे कॉलर ट्यून गोंडा में, हमें दे इजाजत, हम मैं मिलूंगी और अंशिका मिलेंगी कल सेम प्लेस सेम टाइम पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

हम ना डरें दुनिया के सितम से, आंखें मिलाएं हर एक गम से। भाई क्या डरना, क्या ही डरना, कुछ भी नहीं डरना। और आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने वाले शो कॉलिंग वाले प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, और मेरे साथ आप इंजॉय करने वाले हैं अपना बेहद पसंदीदा कॉलिंग प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा। तो चलिए सीधे चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारी जो पहली फरमाइश है वो किसकी है और क्या है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहले बेहद ही ब्यूटीफुल सॉन्ग के साथ आज हम शुरुआत करने वाले हैं, जो कि है बागों में बहार है। भाई बागों में बहार तो बिल्कुल है, और चलिए देखते हैं ये फरमाइश किसकी है। तो ये फरमाइश है देवी प्रसाद जी की। तो आइए सुनते हैं देवी प्रसाद जी के सॉन्ग को, और देवी प्रसाद जी के सॉन्ग के बाद में हम सुनेंगे सुनील कुशवाहा जी के सॉन्ग को। तो आइए पहला सॉन्ग सुनते हैं, जो कि है बागों में बहार है।

0: जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो।
1: दुनिया में आई हो तो लव कर लो, दुनिया में आई हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो थोड़ा।

लव कर लो, बेहद ही ब्यूटीफुल सॉन्ग जो कि जुड़वा मूवी का, और इस सॉन्ग की डिमांड की थी सुनील कुशवाहा जी ने। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ, यानी कि हमारी नेक्स्ट डिमांड की तरफ, जो कि है साहिबा जी की। और साहिबा जी को सॉन्ग सुनना है आगे आगे चाहत चली, तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग। और इसके बाद हम सुनेंगे रीना जी के सॉन्ग को, और रीना जी के सॉन्ग के बाद में बारी होगी धर्मेंद्र जी के सॉन्ग की। तो आइए सीधे चलते हैं साहिबा जी के सॉन्ग की तरफ।

भाई बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग, कहाँ जाते हो रुक जाओ, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है जो कि फरमाइश की थी धर्मेंद्र मोहन जी ने। इसी तरह अगर आप भी गानों की फरमाइश करना चाहते हैं या फिर किसी अपने किसी को भी गाना डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप भी कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर है 6933164 29 पे कॉल करिए और अपनी सॉन्ग को हमें भेजिए और हम उसे ज़रूर से प्ले करेंगे। तो चलिए लिसनर्स चलते हैं अब हमारी नेक्स्ट फरमाइश की तरफ जो कि है अलीशा जी की। अलीशा जी के सॉन्ग के बाद में हम चलाएंगे आन्या जी के सॉन्ग को सुनेंगे और आन्या जी के सॉन्ग के बाद में बारी होगी सुरेन जी के सॉन्ग की। तो आइए फिलहाल सुनते हैं अलीशा जी के सॉन्ग को और बने रहिए अपने फेवरेट वाले प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में मैं यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: नजरों से।
1: बिल्कुल मुझे देखना ऐसी नजरों से महबूब सनम तुझे, मेरी कसम बेहद ही ब्यूटीफुल सॉन्ग जो कि फरमाइश की थी सुरेन जी ने। तो अब सुरेन जी के सॉन्ग के बाद में बारी आती है राकेश जी के सॉन्ग की, तो आइए सुनते हैं राकेश जी के सॉन्ग को जो कि है करती हूँ मैं प्यार मिस्टर इंडिया से, मिस्टर इंडिया मूवी से। और इसके बाद में हम सुनेंगे राजू जी के सॉन्ग को, और राजू जी के सॉन्ग के बाद में बारी होगी राजेश जी के सॉन्ग की। तो आइए चलते हैं सीधे इस बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग की तरफ, और आप बने रहिए आपके अपने प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। स्टे ट्यून्ड।

मुबारक। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरा सोना सजन घर आया भाई, बहुत ही अच्छा सा ये सॉन्ग, और जो कि राजेश जी की फरमाइश थी। चलिए अब आगे चलते हैं धर्मेश जी के सॉन्ग की तरफ, जो कि है तुझ में रब दिखता है। और इसके बाद हम सुनेंगे बबलू पांडे जी के सॉन्ग को, जो कि है सावन के झूलों ने मुझे बुलाया। तो आइए सीधे चलते हैं हम नेक्स्ट वाले सॉन्ग।

सॉन्ग के साथ आज हम अपने कॉलर ट्यून गोंडा प्रोग्राम को एंड करने जा रहे हैं, जो कि है सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है। इस सॉन्ग के साथ आज के लिए मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और पानी जरूर पीते रहें। और जिनकी भी फरमाइशें आज पूरी नहीं हो पाई थी, उनके सॉन्ग्स को हम जरूर आप कल कॉल कीजिएगा और कल जरूर हम आपके सॉन्ग्स को प्ले करेंगे।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
5: मतलब
4: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक

0: स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
0: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
0: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया

0: जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैम्ब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: दोस्तों नमस्कार, ठीक शाम के 5 बज चुके हैं और 5 बजे होता है हमारा गोधूली स्पेशल, और गोधूली स्पेशल कार्यक्रम में होता है कार्यक्रम खेत खलिहान, और हम लोग बातचीत करते हैं अलग अलग विषयों पे। जैसे और दोस्तों आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम लोग फसल करते हैं, फसल के साथ में बहुत सारी फसल करते हैं, जैसे गन्ने की फसल है, धान की फसल है, गेहूँ की फसल है और साग सब्जी। तो ऐसे खरीफ का समय चल रहा है, इस समय जो है हमारे कुछ किसान भाई बहन जो है वो जिनकी जो गन्ने की फसल है वो लगी हुई है, और उसमें बहुत सारे जो है कीट जो है वो लग जाते हैं, बहुत सारे जैसे लाल जो कुछ ऐसे पत्ते जो है उसको खाने लगते हैं, कुछ कीड़े ऐसे होते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बातचीत करेंगे, यानी गन्ने की जो फसल है उसमें कीट प्रबंधन कैसे करें और उससे कैसे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मयंक सिंह, जो कि एक शोध छात्र हैं वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय से, पादप रोग विज्ञान विभाग के PhD शोध छात्र हैं डॉक्टर श्री नयन सिंह। तो दोस्तों आज हमारे साथ में हो, आइए उनका परिचय कराते हैं एक बार पुनः। सर आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद सर।
1: सर हम चाहेंगे अपने बारे में कुछ बताइए।
2: किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम नयन सिंह है, मैं पादप रोग विज्ञान विभाग का शोध छात्र हूँ, मैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूँ। किसान भाइयों नमस्कार, गन्ने में कीट की रोग या लगने वाली जो शर्तें हैं उनके लक्षणों को सही से पहचानना, अगर लक्षण पहचान में गलती हुई तो दवा भी बेकार और खर्च भी बेकार, इसलिए आज मैं हर समस्या के बारीक बारीक संकेत बताऊंगा और फिर झटपट उसका उपचार भी। चलिए शुरू करते हैं
1: जी। अब सर हम जानना चाहेंगे सर, आपने सर आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानना चाहेंगे, सर आपकी पढ़ाई लिखाई मतलब कहाँ से शुरू हुई, अपने बारे में थोड़ा और बताएं सर, हमारे जो हमारे किसान भाई बहन सुन रहे हैं सर।
2: मेरी पढ़ाई बैचलर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो कि वाराणसी में है वहाँ से हुई है, और मास्टर्स मेरा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में और TD कॉलेज से हुआ है मेरा, और मैं वहाँ का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और मैं तत्काल में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में शोध छात्र हूँ पादप रोग विज्ञान विभाग का।
1: जी तो सर अभी आपने बताया सर कि गोल्ड मतलब आपको मिला है इसके लिए आपने सर, और जो आपको जो हमारे किसान भाई बहन सुन रहे हैं, बहुत सारे किसान भाई बहनों के मन में सवाल होते हैं, उनके जो भी बच्चे होते हैं वो भी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर?
2: संदेश सर ये सर कि किसान भाइयों को सही सटीक जानकारी देना
1: जी
2: हम लोग की बहुत ही एक महत्वपूर्ण काम है, जो कि किसान को सही ना बता पाना किसी भी चीज बीमारी के बारे में या किसी भी चीज को जो पेस्ट होते हैं डिजीज होते हैं नहीं बता पाना बहुत बड़ी समस्या होती है, जिससे किसान को बहुत भारी नुकसान होता है हर साल
1: जी।
2: और इस चीज को जानने के लिए पादप रोग विज्ञान विभाग और एंटोमोलॉजी विभाग के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें डीपली नॉलेज होता है कैसे प्रबंधन करना है, क्या करना है, कैसे करना है, इस चीज को वो बारीकी से बता सकता है
1: जी। अब आते हैं सर रोग पर, क्योंकि रोग जो है वो गन्ने में कौन कौन सी रोग जो है वो लग जाता है और उससे कैसे अपनी फसल को हम किसान भाई बहन बचाएं। सर एक रोग है सर तना छेदक सर, क्योंकि अक्सर करके हम गन्नों की फसल में जरूर देखते हैं कि तना छेदक जो है वो लग जाता है सर, जो तने को मतलब पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है और गन्ने की जो ग्रोथ है वो रुक जाती, ये सर तना छेदक है क्या सर?
2: देखिए इसके लक्षण बारे में बताता हूँ, पहले इसके लक्षण कैसे होते हैं
1: जी।
2: सबसे पहले गन्ने की जो मिड रिब होती है पीली पड़कर मुरझाने लगती हैं, बस मुरझाई हुई पत्ती को हल्के से खींचें तो आसानी से टूटकर बाहर आ जाती है
1: जी,
2: इसे डेड हार्ट कहते हैं। तने के निचले हिस्से पर सुई के नुकीले छेद जी। जिसको पिन होल का दिखाई देता है, पिन होल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं वो दिखाई देते हैं, जहाँ से झिल्ली अंदर घुसी हुई होती है उसकी। तने को लंबा काटें तो अंदर लाल भूरे रंग की टनल्स दिखाई देते हैं, सुरंग नुमा दिखाई देती हैं, जो पूरे तने को खोखला कर देती हैं। इस कारण पौधा बौना रह जाता है और ऊपर से सूखा सा दिखता रहे।
1: जी सर, जैसे मान लीजिए तना छेदक की बात हो रही सर, अगर इस कीट से अगर हम अपनी फसल को बचाना चाहें किसान भाई बहन, तो कैसे सर इसकी जो है शुरुआती में कैसे वो बचा सकते हैं सर?
2: देखिए, बुवाई से पहले सेट्स को 0.1% कार्बेंडाजिम से उपचारित करते हैं।
1: जी,
2: प्रारंभिक अवस्था में कार्बोफ्यूरान 3% सीजी @13 किलो प्रति एकड़ की दर से खेत में बुरकाव करते हैं और सुरंग सिंचाई कर देते हैं ताकि दवा जड़ों तक पहुंच सके। और इसकी बात कहें या जैविक रूप से अगर खेतों में अगर हमें उपयोग करना है तो ट्राइकोडर्मा का कल्चर 2.5 किलो प्रति एकड़ गोबर की खाद में मिलाकर इसे सुंडी की जो मिट्टी में नष्ट हो जाते हैं।
1: जी सर, एक रोग है इसी में गन्ने में जो अक्सर करके लग जाता है सर, और उससे जो है किसान भाई बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। अक्सर करके हमारे यहाँ देखा भी गया है सर, ये चोटी बेधक कीट जर अक्सर करके सर जब गन्ना कभी कभी थोड़ा बड़ा होता है या गन्ना छोटा रहता है तो अक्सर करके चोटी जो बेधक कीट है उसका जो है प्रकोप बहुत देखने को मिलता है और जो ग्रोथ पॉइंट पर हमला करता है, ज़्यादातर ग्रोथ जो पॉइंट होता है उस पर हमला कर देता है, उसकी ग्रोथ को जो है वो रोक देता है। कभी कभी जब किसान बहुत परेशान हो जाते हैं तो ये चोटी बेधक जो कीट है इसके प्रकोप को से कैसे हमारे किसान भाई बहन जो है अपनी फसल को बचाएं सर?
2: देखिए, पहले चोटी बेधक कैसा होता है वो हम जान लेते हैं।
1: जी बिल्कुल सर,
2: यह गन्ने के ग्रोथ पॉइंट पर हमला करता है।
1: जी,
2: ये प्रारंभ में ऊपरी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, उन पर पिन होल्स छोटे गोल छेद की कतारें बन जाती हैं। बाद में गन्ने का जो ऊपरी सिरा होता है जिसे ताज बोलते हैं पूरी तरह सूखकर मर जाता है, इसे डेड हार्ट कहते हैं। लेकिन यह ऊपर से होता है, सूखे हुए इस ऊपरी हिस्सों को तोड़े तो अंदर से लाल सफेद इल्ली जिसको सुंडी कहते हैं वो निकलता है और प्रभावित पौधों के नीचे से कई कमजोर साइड शूट निकल आते हैं जिसे गन्ना झाड़ीदार सा दिखता है परंतु उसका मुख्य तना नष्ट हो जाता है।
1: जी सर, इसमें और भी जो है कुछ ऐसे जो रोग हैं ये चोटी बेधक में, और भी कुछ ऐसे मतलब जो है वो फसल को अपनी बचा सकते हैं किसान भाई बहनों?
2: बिल्कुल बचा सकते हैं, इसका मैं प्रबंध बता देता हूँ आपको।
1: जी बिल्कुल सर,
2: जैसे ही इस ऊपर का सूखा सिरा दिखे
1: जी
2: उसे काटकर खेत से बाहर जला दें।
1: जी,
2: और क्लोरोपाइरीफॉस 20% इसी 2.5 मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें।
1: जी,
2: इसके अलावा जैविक नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा नामक परजीवी ततैया के अंडे जो हैं 50,000 प्रति एकड़
1: जी
2: छोटे से छोटी बेधक के अंडों को ही खत्म कर देता है।
1: जी सर, अंडे को खत्म कर देता है, इसे मान लीजिए सर अगर इसको डालना है तो कितना मात्रा, एक बार हम चाहेंगे सर हमारे जो किसान भाई बहन सुन रहे हैं एक बार हम चाहेंगे सर फिर मात्रा दोबारा बता दीजिए सर।
2: क्लोरोपाइरीफॉस 20% इसी इमल्शन कंसेंट्रेट होता है जो, उसको 2.5 ml प्रति लीटर पानी
1: जी
2: का मिक्स करके छिड़काव करते हैं।
1: जी, अब सर आते हैं एक रोग जो है गन्ने में, वो भी एक रोग है सफेद मक्खी का नाम कुछ किसान भाई बहन सुने होंगे। ये सफेद मक्खी जो है ये किस प्रकार से जो है गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाती है और गन्ने की जो है उसके जो जो ग्रोथ है उसको रोक देती है? सफेद मक्खी अक्सर करके जब गन्ना जो है बड़ा हो जाता है उस समय गन्ना जब ग्रोथ पूरी तरीके से कर लेता है तो ये सफेद मक्खी जो है उसका अटैक जो है वो निचली सतह पर रस जहाँ बनता है उस समय देखने को मिलता है, तो इस सफेद मक्की से हमारे किसान भाई बहने अपनी जो फसल का जो है वो कैसे बचाव करें सर?
2: देखिए, इसका बचाव करने के लिए हमें इमिडिका क्लोप्रिड 17.8% SL 0.5 ml या थियामैक्सोथ 25% WDG
1: जी
2: का छिड़काव करें। जैविक विकल्प से रूप में जानेंगे 3% नीम का तेल प्लस गौमूत्र का मिश्रण करके यह मक्खी के प्रजनन चक्र को बाधित करता है।
1: जी,
2: खेत में घनी बुवाई न करें ताकि हवा का संचार बना रहे, ये मैनेजमेंट हम करते हैं तो हम व्हाइट फ्लाई जो होते हैं सफेद मक्खी उससे हम बच सकते हैं।
1: जी सर, और इसमें क्या प्रबंधन कर सकते हैं किसान भाई बहन?
2: सर, इसे जो हमने बताया 17.8% SL जो इमिडिका क्लोप्रिड है
1: जी
2: उसे 0.5 ml/L
1: जी
2: इसका कर सकते हैं, या दूसरा थियामैथोक्स 25% WG
1: जी
2: WG रहेगा
1: जी
2: का छिड़काव करें। और वैकल्प रूप में नीम का तेल हम ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होते हैं उसको हम यूज करते हैं।
1: जी बिल्कुल सर। आप सर नीम की जो मतलब पत्ती है या हाँ। नीम की जो फल है
2: हाँ।
1: ये भी हम जैविक तरीके से उसका छिड़काव करके अपनी गन्ने की जो फसल है उसको हम बचा सकते हैं।
2: बिल्कुल सर, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, इसमें बहुत सारे गौमूत्र के जो बनते हैं ये एक तरीके से सर ऑर्गेनिक फार्मिंग इसको यूज करते हैं।
1: जी कभी कभी क्या होता है कि सर हम ज्यादा रसायन डाल रहे हैं तो उससे हमारी जो फसल की जो वो है ग्रोथ है वो रुक जाती है, तो हमें कुछ जैविक जो है खाद है जैविक जो दवाएं हैं उसका हमें जो है वो छिड़काव करना चाहिए। इससे क्या है कि फसल भी अच्छी रहती है और जो हमारी जो मिट्टी है वो भी अच्छी रहती है। ज्यादा रसायन जब हम डालते हैं तो कहीं ना कहीं जो है मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो नष्ट हो जाती है, तो हम इससे क्या है जो अगर जैविक अगर आ रहे हैं जैविक की तरफ से तो हमारी जो फसल है वो अच्छी रहेगी और हमें उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। सर अब आते हैं अगले सवाल पर, जानना चाहेंगे सर ये लीफ हॉपर क्या है, सर इस पे कौन सा कैसे इससे बचाया जा सकता है, क्योंकि सर हम पहली बार सुन रहे हैं लीफ हॉपर। सर
2: लीफ हॉपर को सर पत्ती झुलसा कीट भी कहते हैं।
1: जी
2: इसके लक्षण ये है कि रस चूसता है।
1: जी
2: इसका विशेष लक्षण यह है कि पत्तियों की नोक और किनारे पहले पीले पड़ेंगे
1: जी,
2: फिर लाल भूरे रंग के होकर सूख जाते हैं।
1: जी
2: यह सुखावट नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है
1: जी,
2: और पत्तियां किनारे से अंदर की ओर मुड़कर सिकुड़ जाती हैं
1: जी।
2: इस स्थिति को हॉपर बर्न कहते हैं
1: जी।
2: अत्यधिक प्रकोप में पूरी पत्तियां झुलसी हुई दिखाई देती हैं, जिससे गन्ने की लंबाई तो रुक जाती है उसकी मोटाई भी असमान होती है
1: जी। तो अब सर जानना चाहेंगे कोई रोग अगर लग गया है सर तो उसका जो हमारे किसान भाई बहन जो है उसका प्रबंधन कैसे करें सर?
2: जी सर, प्रबंधन करने के लिए मेलाथियान 50% इसी 1.5 ml प्रति लीटर का और किनालफास एक होता है 25% इसी का, उसका छिड़काव करते हैं हम। और इसका एक और उपाय है कि रात के समय में ये खेत में लाइट ट्रैप लगाते हैं, जो कि ये जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं वो प्रकाश की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और प्रारंभ में हम 1.5 क्विंटल प्रति एकड़ नीम की खली डालने से इसका हम आक्रमण रोक सकते हैं। इससे हम ये जो प्रबंधन मैंने बताया इसको हम यूज करेंगे तो लीफ हॉपर का ये जो होता है पत्ती झुलसा कीट ये प्रबंध हो जाएगा।
1: जी अब सर हम आते हैं अगले सवाल पर, जानना चाहेंगे सर कि लाल सड़न जो है रोग है, लाल सड़न रोग अक्सर करके गन्नों में सर ये सितंबर और अक्टूबर के बीच में या नवंबर के जो महीने में वो लाल सड़न जो रोग है वो देखने को मिलता है। नीचे की तरफ जो गन्ना का जो नीचे का जो हिस्सा होता है या ऊपर का हिस्सा होता है ये गन्ना जो है सर वो सूखने लगता है पूरा।
2: जी सर,
1: हमें लग रहा है यही चीज है लाल सड़न रोग। हम जानना चाहेंगे सर लाल सड़न रोग है क्या सर?
2: देखिए सर, लाल सड़न रोग गन्ने का प्रमुख बीमारी है, सबसे अधिक बीमारी होती है
1: जी।
2: और इसके वजह से गन्ने की जो शर्करा होती है जो चीनी की मात्रा वो कम हो जाती है और गन्ने के जो प्रोडक्शन है जो पैसे आदमी किसान गन्ने को उपजाऊ करने ये फार्मिंग करने के लिए जो डालता है तो ये दिक्कत ये होती है कि उसमें आपका प्रोडक्शन कम हो जाता है
1: जी।
2: लाल सड़न की वजह से अधिकतर मुझे लगता है कि 60-70% आदमी की लॉस सिर्फ अकेले लाल सड़न रोग से ही हो जाता है। अगर इसका मैं लक्षण बताऊं तो इसका लक्षण ये होता है कि ये जो तने के ऊपरी छिलके होते हैं छोटे छोटे धसे हुए लाल भूरे धब्बे दिखते हैं, लाल भूरे धब्बे दिखेंगे बिल्कुल। और अगर हम जो हमारा गन्ना है उसको हम काट कर देखें तो अंदर गूदा जो है गहरा लाल हो जाता है
1: जी।
2: और उसमें सफ़ेद रंग की धारियां दिखेंगी आपको, बीच में सफेद रंग की धारियां दिखेंगी और अंदर पूरा लाल रंग दिखेगा, जैसे लगेगा ब्लड जैसा है। और उसके साथ उसको अगर हम स्मेल करें या सूंघेंगे तो आपको लगेगा जैसे कोई अल्कोहल पी के आदमी आता है या फिर अल्कोहल कहीं हो ऐसा महसूस होगा आपको और सड़ा हुआ महसूस होता है आपको और दुर्गंध बहुत दूर तक जाती है, वो आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता उस चीज़ को। और बाद में क्या है इसका लक्षण कि ये बाद में पूरा तना सूख करके सिकुड़ करके पूरा सूख जाता है पौधा ही, अब पत्तियां पीली होकर झड़ जाती हैं और गन्ना पूरी तरीके से सूख जाता है ये
1: जी। अब सर आते हैं कि प्रबंधन जो है वो प्रबंधन कैसे करें इसका, क्योंकि जब कोई रोग हो जाता है तो हम उसको बचाने के लिए जरूर कोई ना कोई उपाय करते हैं, कोई प्रबंधन करते हैं कि अपने जो गन्ने की फसल है वो हमारी बच सके।
2: देखिए सर, गन्ने का ये जो लाल सड़न रोग है इसको सबसे बढ़िया अगर रोग आपके खेत में आ गया ये पहली बात तो ये बीजाणु जो है जो जो जीवित बीजाणु होते हैं उससे फैलता है, इसलिए रोगों के जो पौधे होते हैं उसे उखाड़ करके जड़ सहित या तो उसको खेत से बाहर दूर ले जाकर मिट्टी में दबा दें या उसको जला दें, सबसे बढ़िया उपाय। दूसरा चीज, अगर इसको उपचार करना, जो इसका ट्रीटमेंट है, उपचार करना चाह रहे हैं आप, तो कार्बेंडाजिम 0.1% या फिर 52 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म पानी में 30 मिनट के लिए जो आपका गन्ने का सेड्स होता है, जो टुकड़ा होता है, उसको डुबो दीजिए। उसमें लाल सड़न प्रतिरोधक जो किस्में हैं उसको लगाइए, जिसे CO038 कोसी, एक वैरायटी है जो लाल गन्ने सड़न के प्रतिरोधक क्षमता रखता है, इससे कम लगते हैं सड़न। अब प्रभावित खेत में, अगर आप जिस खेत में आपका ये रोग लग रहा है, उस प्रभावित खेत में आप कम से कम 2 साल तक गन्ना न बोएं, बल्कि धान गेहूं का फसल चक्र अपनाएं, यानी कि हम ये क्रॉप रोटेशन कर दें उसमें
1: जी।
2: ये प्रबंधन हम करके लाल सड़न से हम बच सकते हैं
1: जी। आइए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, और ब्रेक के बाद में हाजिर होता हूँ आपका कार्यक्रम लेकर खेत खलियान। तो सुनते रहिए प्यारा सा गीत।
3: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

हाँ।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: तो एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर ब्रेक के बाद में आपका पसंदीदा कार्यक्रम खेत खलियान। और आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं गन्ने की फसल में रोग प्रबंधन कैसे करें, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में शोध छात्र हैं जो कि आए हैं बड़ी दूर से। तो आइए सर का एक बार फिर से स्टूडियो में स्वागत करते हैं सर। तो आप सर जानना सर। चाहेंगे सर, क्योंकि रोग की बात हो रही है तो रोग से कैसे फसल को बचाया जाए। सर अब एक रोग है सर गन्ने में, सर कंडुआ रोग, जो कि अक्सर करके अपने यहाँ पर जो है वो देखा गया है, कंडुआ रोग लग जाता है तो ये भी गन्ने की जो फसल है उसको काफी नुकसान पहुँचाता है सर।
3: जी सर, ये भी कंडुआ रोग जो है बहुत ही खतरनाक है और गन्ने के लिए बहुत ही लाभ हानिकारक है ये बहुत ज्यादा। और इसके सर लक्षण जो हम जानेंगे उसको ध्यान से किसान भाई जाने, क्योंकि ये बहुत ही लाल सड़न जैसे ही बहुत ही खतरनाक है गन्ने के लिए। रोगी पौधों को ग्रोथ बहुत रुक जाती है इसकी,

0: कुछ दिनों बाद ये फट जाता है झिल्ली। ये जब झिल्ली फटता है उसमें से पाउडर जैसा निकलेगा काला काला
1: जी,
0: और लाखों पाउडर होंगे
1: जी,
0: और ये उड़ करके हवा में वो एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतर होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, और जो पूरे के खेत में संक्रमण जैसे पूरा फैल जाएगा
1: जी।
0: और जैसे ये फैलता है, बीमार जो पौधे हैं उसके जो टिलरिंग होती है, जो कल्ले निकलते हैं, ये बहुत तेज बढ़ते हैं
1: जी।
0: और जब बढ़ते हैं तो जैसे आपको लगेगा कि हमारा पौधा जो है झाड़ी नुमा दिख रहा है
1: जी,
0: और उसका जो जो अंदर का स्टरो है जो वो कमजोर हो जाता है
1: जी।
0: आपको देखने लगा कि हाँ ये पौधा हमारा अच्छा है, झाड़ी नुमा दिख रहा है, पर उसका जो मेन प्ररोह है वो पतले और कमजोर हो जाएंगे
1: जी। अब सर आते हैं कि इसका प्रबंधन जैसे कैसे करें सर किसान भाई बहन
0: जी। सर प्रबंधन के लिए सबसे पहले हम ये कहें देखेंगे कि खेत में अगर कहीं काली कोड़ी अगर दिखे, जो प्लाग स्ट्रक्चर बताया मैंने, जो चादी की झिल्ली जैसा दिखता है, ढका होता है
1: जी,
0: अगर वो दिखे तो उसको प्लास्टिक बैग से ढक दीजिए, या प्लास्टिक आपके पास हो कोई चीज ऐसी तो उसको ढक दीजिए, ताकि बीजाणु जो है वो हवा में उड़ने ना पाए। हवा में नहीं उड़ेगा तो आपके जो पौधे में ये स्प्रेड नहीं होगा, फैलेगा नहीं
1: जी।
0: उसे खेत से बाहर निकाल दे दें, और बाहर निकालने के बाद डीजल से उसको जलाते हैं, डीजल में डुबो कर नष्ट कर दीजिए या उसको जला दीजिए, या फिर ये जो आप गन्ना लगा रहे हैं या फिर जो आपका सेट्स है जिसको गन्ने का सेट्स बोलते हैं, तो वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म पानी में 2 घंटे रखकर उसको उपचारित करते हैं
1: जी।
0: और स्मट प्रतिरोधी किस्म जैसे वो जो हमारा ये स्मट है, ये जो कंडुआ रोग स्मट बोलते हैं
1: जी,
0: उसका हम रेजिस्टेंट वैरायटी लगाएंगे, जैसे CO775 का इस्तेमाल ही हमेशा करना चाहिए
1: जी।
0: ये रेजिस्टेंट वैरायटी है, जिस तरीके से हम कंडुआ रोग का हम प्रबंध कर सकते हैं
1: जी। अब सर आते हैं अगले रोग पर, वो जानते हैं कि उससे कैसे हम बचें। सर एक उकठा रोग होता है गन्ने में, क्योंकि आज हम लोग रोग पर ही बात कर रहे हैं गन्ने के रोग, तो एक ऐसे ही एक रोग है उकठा रोग, तो इसको जो है गन्ने की जो जब हो जाता है तो इसमें भी गन्ना बहुत सारा जो है ग्रोथ नहीं कर पाता है, बढ़ता नहीं है, उत्पादन कम मिलता है, तो ये सर उकठा रोग है क्या सर?
0: देखिए उकठा रोग आपने देखा होगा, पौधा पूरा सूख जाता है, सबसे बड़ा लक्षण तो ये होगा पौधा पूरा सूख रहा है, तो आपको लगेगा पौधा सूख क्यों रहा है, तो लोग जनरली कहते हैं उकठा रोग है। उसको हम डिटेल में जानेंगे कि उकठा रोग के लक्षण क्या क्या हैं। यह रोग जो है पत्तियों से शुरू होता है, पहले पत्तियां पीली पड़कर मुरझाने लगेंगी, और मुरझाकर धीरे धीरे ऊपर से पत्तियों तक बढ़ जाती हैं, ऊपर की पत्तियाँ जो है वहाँ तक बढ़ जाएंगी, और तने को चीर कर अगर देखेंगे तो अंदर से वैस्कुलर बंडल जो होते हैं, संवाहक नलिकाएँ जो होती हैं, लाल भूरी रंग की दिखाई पड़ती हैं, और जो कमजोर पड़कर तने से लगती हैं और पौधों आसानी से जमीन से उखड़ जाते हैं
1: जी।
0: ये आपका लक्षण है
1: सर। इसका प्रबंधन जानते हैं कि प्रबंधन जो है वो किसान भाई बहन कैसे करें?
0: देखिए सर इसमें क्या है कि लक्षण ये जो आपने बताया मैंने भी
1: जी,
0: लक्षण हमारा विल्ट रोग था ये उकठा रोग, साथ में आपका सेट रॉट भी इसको एक उसमें है
1: जी, जी।
0: तो सेट रॉट भी उसमें साथ में ही आता है, उसका लक्षण मिलता जुलता है
1: जी।
0: तो सेट रॉट के बारे में भी बता देता हूँ मैं आपको इसी लगे
1: जी।
0: तो बुआई के समय ध्यान देना है कि उसमें जो टुकड़े जो सेट होते हैं अंकुरित नहीं होते हैं, जब आप सोइंग करेंगे उसको तो जर्मिनेशन उसका होगा नहीं। यदि सेट को अगर गड्ढे से अगर खोद के देखा जाए तो भीगा हुआ दिखेगा और गहरे लाल रंग का दिखेगा वो, और वह सड़ा हुआ मिलेगा आपको, जिस पर सफेद या गुलाबी रंग का फफूंद दिखेगा, फंगस जिसको फ्यूजोरियम बोलते हैं
1: जी।
0: और जो जर्मिनेशन है वो 50% से भी कम हो जाएगा आपका
1: जी।
0: और बचे हुए जो जर्मिनेशन है वो भी कमजोर निकलेंगे
1: जी।
0: ये आपका जो सेट रॉट है उसका लक्षण है
1: जी। तो सर अब इसका प्रबंधन हम कैसे करें सर?
0: हाँ सर, इसका प्रबंधन करने के लिए हमें सर्वोत्तम पहले उपाय यही करना है कि ट्राइकोडर्मा विरिडी आता है
1: जी,
0: 2.5 किलो प्रति एकड़ गोबर की खाद के साथ, गोबर की खाद हमारा 200 किलो होगा और 2.5 किलो हमारा प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा यूज करता हूँ, और इसको 15 दिन पहले खेत में डालते हैं बुआई से 15 दिन पहले
1: जी।
0: और उसके बाद इसको पानी की जो निकासी होती है अपने खेत में उसको उत्तम बनाएं, ताकि हमारा पानी जो है खेत में जमा ना हो
1: जी।
0: और जो हमारा कटा हुआ सेट्स है, जो गन्ने का पार्ट है, सेट्स बोलते हैं उसको, उसको 0.25% मैंको जेब प्लस 0.1% कार्बेंडाजीम के घोल में 10 मिनट तक डुबोएं, उसके बाद इसको स्वाइंग करें। इससे हमारा जो सेट रॉट है वो, उसके पहले था हमारा विल्ट, दोनों हमारा जो है इससे मैनेजमेंट हो जाएगा।
1: तो अब सर आते हैं अगले सवाल पर, जानते हैं सर ये पीढ़ी कुठन रोग क्या है और

0: इससे जो है कैसे अपनी फसल को जो है एक मिठास की फसल गन्ने की कहा जाता है। मिठास जो है उस बहुत अच्छा होता है गन्ने में, तो इसमें रोग भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, बहुत प्रकार के रोग लग जाते हैं। तो हमारे किसान भाई बहन जो है अपनी मिठास की फसल को कैसे बचाएं?
1: देखिए सर, ये रेतून स्टंटिंग डिजीज कहते हैं, जैसे आपने बोला पेड़ी कुंठन रोग
0: जी,
1: इसको रेतून स्टंटिंग डिजीज बोलते हैं
0: जी।
1: इसके बारे में मैं आपको लक्षण सही बहुत सटीक बताऊंगा
0: जी।
1: यह वायरस जैसा होता है
0: जी,
1: जिसको फाइटोप्लाज्मा रोग कहते हैं
0: जी,
1: जिसमें पौधे ऊंचाई तो थोड़ा बढ़ता है लेकिन बाद में इसकी जो मोटाई होती है ना वो कम हो जाती है। जो गन्ने की है ऊंचाई तो बढ़ जाएगी पर उसके बाद ये जो हमारी मोटाई होती है गन्ने की वो हमारी कम रहती है। अब पौधे जो है सुई की तरह पतला दिखता है, अब पत्तियां संकरी हो जाएंगी और पीली धारियां जिसे मोजेक वाली होती हैं वैसा हो जाएगा
0: जी।
1: इसके सबसे बड़ा नुकसान ये है कि गन्ने में जो शुगर की मात्रा शर्करा जो होती है वो बिल्कुल घट जाती है
0: जी।
1: जिसको बोलते हैं ब्रिक्स परसेंटेज
0: जी।
1: बिल्कुल घट जाएंगी वो
0: जी।
1: और रस में भैंसे का मक्खन जो होता है, भैंस के मक्खन जिसे बोलते हैं ब्यूटेरिक एसिड होता है, उसका स्मेल आने लगता है
0: जी।
1: दुर्गंध आएगा, बहुत बुरी तरीके से आता है। और रेतून स्टंट में क्या है कि रेतून में यह रोग दूसरे वर्ष 40% तक गिर सकता है सर
0: जी। सर अब आते हैं इसके प्रबंधन में कि इसका प्रबंधन जो है वो किसान भाई बहन कैसे करें?
1: देखिए सर, इसका प्रबंधन रोग कटाई से चाकू स्यारी के जो हम लोग काटते हैं
0: जी,
1: रोग कटाई जब चालू होता है हमारा
0: जी,
1: जो चाकू इस्तेमाल करते हैं आरी इस्तेमाल करते हैं
0: जी,
1: एक पेड़ी से दूसरे पेड़ी में फैल जाता है जिससे हम काट रहे हैं उसमें कोई डिजीज लगा है उसको रख दिया
0: जी।
1: उसके बाद हम उसी चीज से दूसरे प्लांट में काट रहे हैं, दूसरे पौधे में काट रहे हैं, तो उसमें क्या है फंगस उस पौधे में चला जाता है
0: जी।
1: वो इससे वो स्प्रेड होता है और नुकसान करता है। इसलिए कटाई के औजार को हमेशा काटने से पहले 2% ब्लीचिंग पाउडर या डिटर्जेंट पाउडर जो होते हैं हमारे घर में मिलते हैं उसको घोल बना करके 10 मिनट बाद उसमें धो देते हैं 10 मिनट के लिए
0: जी।
1: उसके बाद उससे बचाव हमारा असरदार तरीका दिखता है। अब भी दूसरा चीज है कि इसमें अगर हम जो स्विंग कर रहे हैं सेट्स को
0: जी,
1: उसको हम 54°C गर्म पानी में ठीक 2 घंटे रखकर उपचारित करें जिससे यह बीजाणु पूरी तरह मर जाता है
0: जी।
1: ये हम मैनेजमेंट करेंगे तो हमारा पेड़ी कुंठन रोग जिसे रेतून स्टंटिंग डिजीज कहते हैं ये हमारा मैनेजमेंट हो जाएगा
0: जी। अब सर हम जानना चाहेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, तो अब हम जानना चाहेंगे सर हमारे किसान भाई बहनों को क्या एक संदेश देना चाहते हैं सर कि वो अपनी गन्ने की फसल जो है एक मिठास की फसल जो है वो कैसे वो अपने गन्ने की जो फसल है उसको कैसे बचाएं, उसका रख रखाव कैसे रखें और उनकी जो फसल है वो अच्छी ग्रोथ करें।
1: किसान भाइयों, अब आपने हर कीट और बीमारी के बारे बारीकी से जाना, उसके लक्षण के साथ साथ उसे लागू करने वाले प्रबंध को जाना। इस एक बात को ध्यान रखना हमेशा कि सांस्कृतिक उपाय जैसे कि गर्म पानी से जो ट्रीटमेंट करते हैं, बीज उपचार करते हैं, फसल चक्र अपनाते हैं, संतुलित खाद पानी देते हैं और खरपतवार नियंत्रण ही आपकी ढाल है। रसायनों का स्प्रे तभी करें जब कीट की संख्या आर्थिक क्षति सीमा के ऊपर पहुंच जाए। समझदारी से फसल उगाएं और मेरी तरह से यही सुझाव है कि किसी भी असामान्य लक्षण पर तुरंत ही अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र पर संपर्क करें
0: जी। तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज स्टूडियो में थे श्री नयन सिंह जी जो कि गन्ने में रोग एवं उसका प्रबंधन कैसे करें, तो आपने आज समस्या और उसकी जड़ से समझाया कि किसान भाई बहन जो है वो कैसे अपनी गन्ने की फसल को बचाएं। तो ज्ञानस्थली रेडियो की परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और अब लेते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान से इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए गोंडा शहर की धड़कन को।
2: जो तेरे कद से इरादे

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

Dun-ta-dun-ta-ta-ta.

के हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: मेरा मेरा मेरा इस मामले में ये कहना है कि नो कमेंट।
1: सर आप प्रेस को बुलाकर कहते हैं नो कमेंट।
2: मगर सर क्या ये सच नहीं है कि आप ही जॉर्डन की अगली एल्बम रिलीज कर रहे हैं, जो गाने उसने आपके लिए यूरोप में रिकॉर्ड करे थे?
1: नो कमेंट।
3: मार्केट में एल्बम खुलता है और आर्टिस्ट जेल के अंदर। दिस इज माय विजन।
2: इस आंगन में खेलने वाला लड़का आज सलाखों के पीछे है।
3: नेगेटिव चलता है मीडिया।
2: पीतमपुरा का ये वही घर है जहाँ से

0: कैसी हमारी परवाज हो गई। हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
7: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
6: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
7: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
6: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
0: आप सबन का शाम के राम राम। और भाई, शाम होते जब केहू के नाम याद आवत है तो बस आरजे बीना का ट्यून करे के समय हो जाता है। तो सभी के स्वागत है आज आपके भोजपुरिया शाम माँ। और कहा थे ना कि जब सबका याद करे के बात होती तो बहनी और भैया लोगन का आरजे बीना बुलाई लेती चिल्लाए चिल्लाए के, कहे कि आपन रेडियो स्टेशन पर आप सब ट्यून कर चुका हो आपन प्रोग्राम गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला अपने पसंदीदा फ्रिक्वेंसी ज्ञान स्थली 89.6 FM पर, यहा गोंडा शहर के धड़कन। ता आज आपके अपन आरजे बीना के साथ आप सब सुनत तो हो कुछ खास चीज, कहे कि आज जो हमार ना बहुत प्रसन्न है। काहे प्रसन्न है? काहे कि आज है वो दिन जोने के कारण हमार सबके जो बंधन है वो इतना मजबूत भय है। अब आप सोचत हुई है कि आए ये कौन मतलब बात हुई गवा। हाँ हाँ, आज है प्रसारण दिवस। हाँ, वो दिन जब रेडियो के आवाज लाखन करोड़न दिलन पर पहुँचे लाग रही और जानकारी, मनोरंजन और अपनापन के जोन है ना प्रचार प्रसार के नवा सफर शुरू हो गया रहा। रेडियो खाली एगो मशीन नहीं है, ई त भाव प्रकट करे के एगो पुल बन गए है। कभू गीत बन के छू लेते है, त कभू खबर बन के जागरूक कर देते है, त कभू साथी बन के अकेलापनों दूर कर देते है। कहा थे कि आवाजन के ई कारवां दिल से दिल तक जात रहे, हर सुख दुख मा साथ निभावत रेडियो इहुई गूंजत रहे। ना दूर रोके ना दीवार रोके, ना दूरी रोके ना दीवार रोके, प्रसारण जोड़े सारा संसार बने, प्रसारण जोड़े सारा संसार बने। ताज आप सभन के साथ है, हम पहले तो उन सभी उद्घोषकन का, आरजे लोगन का धन्यवाद कहा चाहित है जो हमार बचपन से लेके दोरा लोगन के बचपन तक प्रसार किहीन ऊ प्रचार किहीन जोने के उम्मीद नहीं रही, मतलब चाहे जंगल हो चाहे बन हो हर जगह ही वो आवाज़ पहुंच जात रही जोने का सुने के इंतजार रहा। यहाँ तक कि आप सबन का पता हुई कि आज़ादी के बारे में गांव के लोगन का जानकारी आप लोगन के रेडियो से ही पहुंची रही। तो सोची कि आज़ादी के जोन चश्मदीद गवाह बना उके बना, हाँ हाँ आप सबन के आपन रेडियो बना। ता आप सबन का आज बतावे के कि प्रसारण के जो जर्नी है ये जो सफर है इमन आप सब हिस्सा कोने सनमा बनो, मतलब कौन ऐसा साल रहा जब आप पहली बार रेडियो से रूबरू भयो या आपके जिंदगी में रेडियो का जो कहा था ना प्रवेश भवा। तो सुन के बताई तब तक के लिए ई शाम के जो कहा था ना अवधी भोजपुरी के जो बहिनी भाई वाला जो रिश्ता है ओका निभावे के सफर शुरू हो चुका है। तो चलिए सुना जाए कुछ गीत संगीत और आज के प्रसारण दिवस का मनावा जाए बिल्कुल दिल से।

0: बोला
1: जाने कैसन जादू कैलू मंत्र दिलू मार

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

सबका फिर से राम राम भैनी और भैया लोग, और सबके का हाल चाल बा। और आप सब सुनत हैं 89.6 FM ज्ञानस्थली पर आरजे बीना के संग आपन प्रोग्राम गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला। सर अगर लोग ये बताएं कि का हाल है, तो हाल के साथ है आप सब का बताए दी कि आज तो भाई प्रसारण दिवस है और हमारे सबके देश के खातिर ये बहुत खास दिन है। ठीक है, प्रसारण दिवस के बाद तो हुई गए जिसन की हम सभी का पता है कि अब चाहे हमारे सबके पसंदीदा गीत होए, चाहे समाचार होए, चाहे कोनो खास जानकारी होए, वो सब हमें सबका सच्चाई के संग अपने पन के संगे अपने अपने रेडियो स्टेशन से मिल जाता है। लेकिन अगर आज के खास दिन की बात करी, आज है तारीख 23 जुलाई, और 23 जुलाई इतिहास के पन्ने में अपन एगो अलग पहचान रखत है। अब सोचो तो ये कि काहे आज के तारीख के काहे चर्चा होते, तो आप सबन का बताई दी कि आज के तारीख सिर्फ तारीख नहीं है, बल्कि आज के तारीख जोन है आप सबन के लिए और हमरे लिए भी, आज के तारीख है सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्ति का याद करे के तारीख। जी हाँ, आज के दिन हमारे देश के खातिर गौरव के दिन है। आज के दिन का हम सब का नमन करे चाहिए, काहे कि आज़ादी के दुई महान सपूतन जिनके नाव है लोकमान्य तिलक या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के जन्म दिवस है। एक और तिलक जी जिनकर बुलंद नारा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, स्वतंत्रता आंदोलन में नई दिशा देश। वहीं दूसर और चंद्रशेखर आज़ाद जेकर साहस त्याग और देश प्रेम आज भी नौजवानन का प्रेरित करत है। आज के दिन खाली उनका याद करे के दिन नहीं है, उनके जो व्यक्तित्व है उनका समझे के दिन भी है, उनका जाने के दिन भी है कि कैसे वह देश के खातिर का से का कह दिन। सबसे पहले चला बात किया जाए लोकमान्य तिलक के, यानी कि बाल गंगाधर तिलक के, जेकर जन्म भय रहा 23 जुलाई 1856 में महाराष्ट्र में। वो विद्वान शिक्षक, पत्रकार, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी रहे। वो केसरी और मराठा अखबार के माध्यम से जनता में राष्ट्र चेतना जगावत रहे। गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव के सार्वजनिक रूप से वह समाज का एकजुट करे का एक मौका समझत रहे। अब आप सबसे पूछा चाहिए था कि लोकमान्य तिलक कोने प्रसिद्ध अखबार के नेतृत्व करत रहे। अब चलिए एगो देशभक्ति गीत इनके सबके लिए सुन लीन जाए। हमारे सबके साथ है रोशनी है समस्तीपुर बिहार से, धर्मेश जी हैं, धर्मेश त्रिपाठी, शुभ संध्या धर्मेश जी, का हाल है। सबलू सावंत जी मुंबई से हैं, शुभ संध्या, का हाल है। और भोजपुरिया प्रणाम, का बात है, हाजिरी लगाए के बहुत बहुत शुक्रिया। और चला जाए आज ये दुई महान व्यक्तित्व के जिन बारीकी से उनके जीवन के सार होगा समझा जाए, और समझत समझत आप सबका बताई कि उनके सबके जीवन देश के लिए तो न्यौछावर भवा, लेकिन खाली देश के लिए न्यौछावर नहीं भवा, बल्कि वे हमें सबका ई बताएं कि अपने जीवन का कैसे किनारे रख के हम सब देशभक्ति का अपन सर्वोपर कर सकी थे, कैसे अपने आप का हम सब अलग कह के देश के लिए प्राण न्यौछावर करे के लिए तैयार रह सकी थे। इस सिर्फ तबे हो सकत है जब अपन देश के बारी होए। तो चलिए सुनी एगो गीत जो उनके आप सबके अंदर भी उनके दोनों जन के प्रेम का जागृत कह दिया।

देश की रक्षा के खातिर हर देश के जवान अपने परिवार के प्रेम, सजनी के प्रेम सब छोड़ के देश के पार पहुंच जाते हैं। और चला आज बात किया जाए, सबसे पहले लोकमान्य तिलक के जीवन के गो जुड़ा प्रसंग के। वे अक्सर कहते रहे कि जब भी आपके साथे अन्याय हुए तो उकरे सामने शीश ना झुकाएं। अगर आपके साथे कोई गलत करे तो इनाई कि आप गलत बर्दाश्त करी, उकर डट के सामना करी। एक बार के बात है, वे क्लास में अपने कक्षा में बैठा रहे और सब लड़का लोग हुआ क्लास में मूँगफली खरीद के खाए और पूरे क्लास का गंदा कर दिन। और टीचर आए और मास्टर आए के बाद में खूब गुस्सा ने और सब लड़के इनका मारे का शुरू किन। तो जब इनके बारी आए तो ये अपन हाथ आगे नहीं बढ़ाएं, कहीं कि हम कक्षा का गंदा नहीं किए ने, यही से हम आज मार ना खा। तो ये बात से टीचर बहुत नाराज हो गया और प्रधानाचार्य का शिकायत किन कि लड़का तो भाई आगे से जवाब दिए थे। तो उनके पिताजी का जब बुलावा गए तो उनके पिताजी कहीं कि हमारा लड़का स्कूल में पैसा नहीं ले जाते और यही से ये मूँगफली ना खरीदिस हुई ना खाइस हुई, यही से वो मार खाए के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाई। ये बात देख के सबके मन में ही सोचे के मजबूर पड़े पड़ा कि निर्दोष का कभी भी सजा नहीं मिलने चाहिए। और अगर उस दिन शिक्षक के डर से तिलक मार खाए ले होते तो शायद उनके बचपन में ही साहस दिखावे का जो जज्बा है वो उही के उही खत्म हो चुका होते। तो ये बाल गंगाधर तिलक के जीवन से जुड़ी कुछ कहानी रही। अनुशासन और उकर पालन करब उन्हें बहुत पसंद रहा। वे कक्षा में हमेशा हर कार्य सबसे पहले करते रहे। उनके गणित में बड़ी रुचि रही, एक से कठिन सवाल कह के वे दिखाई देते रहे। उनके दोस्त लोग जब उनसे पूछे कि यार तिलक तू एक से एक कठिन सवाल कैसे कह लेते हो, तुका डर नहीं लगत कहीं अगर कठिन सवाल ना आए तो उसका चुनौती समझ के हम सब पार कैसे कर सीखब, आए वाले जीवन में बड़ी बड़ी चुनौती देखेगा सुने का मिली। तो ये बात से लोकमान्य तिलक के जीवन में कुछ अलग प्रभाव रहा। वे शुरू से ही अपने मतलब उसूलन पे बना रहे, उनके उसूल जोन कहत रहे वह करते रहे। अब आप सब बताएं कि आपका नहीं लागत कि तिलक देश के लिए का नहीं कहीं, और आज उनका याद करे के दिन है तो हमें सबका कुछ उनके लिए ज़रूर लिखे का चाहिए। तो आप सबसे निवेदन है कि बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों लोगों के बारे में आप चार चार पंक्ति ज़रूर लिखें। जब भी बात कोनो महान इंसान के बात करे के होती तो कुछ नाम ऐसा है जिकर इतिहास

आसमां अमर स्थान है, वहीं में से लोकमान्य तिलक भी हैं। 23 जुलाई 1956 में इनकर जन्म भवा और 1 अगस्त 1920 माँ ये दुनिया का अलविदा कह दिन। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के ये महान नेता रहे, समाज सुधारक रहे और संगे संग पत्रकार रहे। पत्रकार जोने के समाज में बदलाव लावे के एगो अलग पहचान होती। वह कहीं की स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये प्रसिद्ध नारा अगर एक बार बोलो तो अपने आप में ही एगो एनर्जी या कहा जाए ऊर्जा महसूस होती कि सही जन्म अगर भवा है तो अपने अधिकार का से अधिकार से पीछे कैसे हटा जा सकत है। वह अगर देश के भविष्य के बारे में ना सोचते तो आज हमारे सबके वर्तमान का होत। अंग्रेज उन्हें कहते रहे कि वह भारतीय अशांति के जनक है, अशांति के जनक। अब अशांति के जनक समझे या चाहे जोन समझे, हमारे सबके देश का आजादी दिलावे वाले एक महान आजादी के क्रांतिकारी रहे। उनके जब जन्म भवा महाराष्ट्र में तो रत्नागिरी जिले में वह रहीं। वह शिक्षा का सबसे पहला अधिकार अपन समझें, वकील बनें और संस्कृत के एगो विद्वान रहे। पत्रकारिता के बात की जाए तो वह अंग्रेजी में मराठा और मराठी के केसरी में समाचार पत्र शुरू की, जिकर माध्यम से लोगन के बीच में राष्ट्र प्रेम के भावना जगाई जा सके। भाई सबका जानकारी ना मिली देश प्रेम के बारे में, बहुत सारे ऐसे लोग रहे जो ना अपन जीवन ऐसे जियत रहे, उन्हें लगा थे यह हमारे सबके भविष्य भी है और वर्तमान भी है, लेकिन उन्हें सबका जब पता चला कि आज़ादी जैसी भी कोनो चीज़ होती तो मैं सब हिस्सा लिए लागिन। भले वह हुआ जाए के हिस्सा ना लिहिन, लेकिन अपने सोच में परिवर्तन लाई के भी हिस्सा लिहिन। जरूरी नहीं कि आप जाए के सरहद पर लड़ें, लेकिन सरहद पे लड़े वालन के लिए सम्मान रखब एक जिम्मेदारी हो जाती भारतीय नागरिक का। अब बात करी सामाजिक योगदान के तो वह समाज का एकजुट करे के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव करते रहे और शिवाजी जयंती मनावत रहे, जिक्र बारे में हम पहले भी आपका बता चुकी हैं कि वह ईद हुई जयंती और ईद हुई उत्सव के माध्यम से सबका एक कह देते रहे। कहे कि कहा था ना कि पर्व और त्यौहार सबका सब भेदभाव भुलाए के बाद एकजुट होए पे मजबूर कह देते हैं। जेल में जब उन्हें अंग्रेज लोग डाल दीन तो गीता रहस्य नाम के एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे जिका सब बहुत सराहना दीन। और गांधी जी उन्हें कहते रहे आधुनिक भारत के निर्माता, जिका इतनी बड़ी बड़ी उपाधि मिली उनके व्यक्तित्व तो सोचा कितना महान रहा हुई। वे ना सिर्फ देश के पराकाष्ठा बदलिन बल्कि हमारे सबके लिए उदाहरण दीन कि जो उन सोच हमें सबका आज ले वैक चाहिए और सोच लावे के पहले भी हम सब सोचे थे, तो कहूँ ना कहूँ हमारे सबके कहूँ ना कहूँ सोच में थोड़ा सा डर है। वो डर का दूर करें और अपने अधिकार से लड़ें, अपने अधिकार के लिए हर वो प्रयास करें जो उनकी ज़रूरी है। गलत बर्दाश्त ना करें और ना ही गलत में हिस्सा लें। तिलक जी 1890 में नेशनल कांग्रेस में सम्मिलित भइन और 14 सितंबर 1997 में कमिश्नर रैंड के हत्या के बाद चेफ कफर बंधु लोग उन्हें उकसावे लगे और ओकरे आरोप में उन्हें 1.5 साल के सजा मिली, जिक्रे बाद वे ई महाग्रंथ लिखें। तो ये तो उनके जीवन के सार रहा। अब बात करना चाहिए थे आज़ाद के। जी हाँ, जिक्र नाम में ही आज़ाद है, वो सोचा देश का आज़ाद करने के लिए काका की हुई। चंद्रशेखर आज़ाद के जन्म 23 जुलाई 1906 माँ मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में भवा। अब उनके बारे में भी शुरू से जाना जाए कि चंद्रशेखर आज़ाद आखिर काहे इतना खास रहे, उनके शुरुआती जीवन कैसन रहा, का बचपन से बहु क्रांतिकारी रहे या कुछ और। हम सबके मन में हमेशा से जिज्ञासा रहा थी कि ई व्यक्तित्व जोन है ई कैसन रहा, इनके जीवन के शुरुआत कैसे भय रही हुई, का शुरू से ये सब क्रांतिकारी रहे, का शुरू से इनके सबके अंदर आज़ादी के जोन ज्वाला रही उजलत रही, सोचे का मजबूर करते। अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अगर एगो निडर क्रांतिकारी के नाम लिया जाए तो मन चंद्रशेखर के आज़ाद हमेशा रहा थे।
उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करे के एगो सशस्त्र नेतृत्व करे के एगो कहा जाते ना कि उज्ज्वलता रही उनके अंदर, एगो आक्रोश रहा कि बस हमें नेतृत्व करे के। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के ये पुनर्गठन भी किए। उनके प्रतिज्ञा रही कि अंग्रेजन का हाथों हाथ कोनों में देश से बाहर निकाले है और अंग्रेजन के हाथे हमें नहीं आवक है, वह हमें अगर जिंदा पकड़ भी लिए तो हमार वह कुछ ना कह पाई हैं। उनके प्रारंभिक जीवन की बात करी तो भाबरा माँ उनका जन्म भवा और उन्हीं के एगो गांव रहा अलीराजपुर, उन्हीं के गांव माँ उनके पूरी की पूरी जो कहा जाता ना कि शिक्षा दीक्षा भय। चंद्रशेखर के पूरा जो नाम रहा वो रहा चंद्रशेखर तिवारी। आज़ाद नाम के उत्पत्ति 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान 15 वर्ष के आयु में जब वह गिरफ्तार भय तब भय। अदालत में मजिस्ट्रेट द्वारा पूछे जाए पर वह अपन नाव आज़ाद बताइन, पिता के नाव स्वतंत्रता बताइन और पता के नाव जेल बताइन। अगर उनके क्रांतिकारी गतिविधि की बात करी तो राम प्रसाद बिस्मिल भगत सिंह जैसन क्रांतिकारी के साथ मिलकर वह काकोरी ट्रेन एक्शन जो 1925 में भवा, सैंडर्स हत्याकांड इमन ये अहम भूमिका निभाएं। 27 फरवरी 1931 में प्रयागराज में अल्फर्ड पार्क में ब्रिटिश पुलिस के साथ मुठभेड़ भय उनके और वह अपने पिस्तौल से अपने आप का आखिरी गोली मार लें। इरा उनके खास व्यक्तित्व जिका समझब जिका जानब बड़ा जरूरी है। अगर बात करी हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन आर्मी के तो एकर यह प्रमुख नेतृत्व की हिंद अपने दोनों दोस्त के साथ मिलकर राम प्रसाद बिस्मिल और सचिविंद्र सन्याल के साथ। इनके जो उन जीवन रहा वो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए रहा। हाँ इनके अंदर आक्रोश थोड़ा ज्यादा रहा और सेनानी के तुलना में, पर जैसन भी रहा अपने देश के लिए बड़ा खास रहा। तो चलिए इनके लिए वो गीत सुना जाए और फिर शुरू की जाए अपने धमाल वाली शाम यानी कि आप संग के संग आप सबन के संगे भोजपुरी गाना के फरमाइश वाली शाम। लेकिन आप सबसे ज़रूर कहा कि चार पंक्ति ज़रूर देश के दोनों महान व्यक्तित्व के लिए ज़रूर लिखें।

सबिन को बताए थी कुछ देर माँ यानी कि 7 बजे से आप सबके भोजपुरी फरमाइश शुरू हो जाए, लेकिन फरमाइश ऐसा हुई कि जगह सुने के बाद आरजे बिना 10 माँ 10 नंबर दे सके।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: Delicious.
5: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
4: और क्या क्या है खास?
5: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
4: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
6: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 88 40 98 123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।

सो वापस से सबन के स्वागत है। और सबसे पहली जो फरमाइश है उबजे के समय है, और कमल एन के फरमाइश है ओढ़नी के रंग पियर। तो चला सुना जाए सबसे पहली फरमाइश, और आप सबन के फरमाइश लाइव रही भोजपुरी गाना के 7:45 तक। बस अपने गाना के जो चयन है वो बढ़िया कीन जाए, नहीं तो नंबर माँ चना ही मिली। हाँ बिल्कुल, ये गाना का हम दिया चाहे थे 10 में से 9 अंक, और बहुत ही प्यारा गाना है कमल जी, शुक्रिया।

कहते हैं सबलू जी कि शेर के दहाड़ सी गर्जना थी, भारत माँ के सच्चे लाल थे, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, कहने वाले बाल गंगाधर तिलक महान थे। अंग्रेजों की जेलों में भी जिनके हौसले ना कभी डिगे, अंग्रेजों की जेलों में भी जिनके हौसले ना कभी डिगे, केसरी और मराठा के जरिए जिनके विचारों में फूल खिले। गणेश उत्सव शिवाजी जयंती से जिन्होंने एकता का पाठ पढ़ाया, गीता रहस्य मांडले जेल में लिखकर ज्ञान का अनमोल दीप जलाया, ऐसे थे लोकमान्य तिलक जिन पर सारा देश अभिमान करे। आइए आज उनके पद चिन्हों पर चल के उनके सपनों का भारत निर्माण करे। क्या बात। चला अब बारी है गाना सुने के धर्मेंद्र जी के फरमाइश। तो चला धर्मेंद्र जी के फरमाइश है, बबुनी के लागल बस शहर के हवा का बात है। चलिए सुन के बताएं कैसन है गीत।

तई गाना का हम दिया चाहे थे 10 में से 8 अंक। गाना तो अच्छा है लेकिन अगर लिरिक्स समझा ला गए तो लड़की लोगन के तो दिमाग खराब हो जाए कि पढ़े से थोड़ो ना कोनो के हवा लागत है। तो चलिए अगला गाना की तरफ रुक किया जाए, धर्मेश जी के फरमाइश के गाना है, चलिए देखा जाए कौन गाना है। पिया धुन में सुना जाए पवन सिंह की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत धर्मेश के फरमाइश पे।

शुभ संध्या मनी जी, शुभ संध्या जुगल किशोर जी, सभी का शुभ संध्या। मुश्तफा सऊदी से आपका शुभ संध्या। रवा कैसन बानी, सबके स्वागत है।

इतना खूबसूरत गाना सुने के बाद माँ दिल तुम्हार गार्डन गार्डन एक बार धर्मेश आपके गाना का मिली 10 में से 9 अंक। बेहतरीन गाना की फरमाइश रही। और अब चला आगे के गाना सुना जाए, अगला गाना कौन है? और अगला गाना वैभव जी की फरमाइश पे चला सुना जाए। वैभव जी हमारे सबके बहुत बढ़िया लिसनर हैं और आज वे फरमाइश करे आ रहे, तो चला उनके फरमाइश पे गाना सुना जाए और देखा जाए कौन गाना सुने के फरमाइश है। तो सबसे पहला जो गाना है वो है समर जी के आवाज़ माँ, जो उनकी वैभव जी फरमाइश की है, चला सुना जाए।

चला अगला गाना क्यों रुक किया जाए, रोशनी की फरमाइश के गाना जोन की हमें सबका सुना थी बिहार से, और ये गाना का वैभव जी के फरमाइश के गाना के मिला 10 में से 7 अंक। कही कि ये गाना अच्छा है लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना आप सबके बाकी के फरमाइश है, तो अगली बार से और फरमाइश सोच समझ के करिए, जोने की 10 में 10 मिले। तो चला रोशनी की फरमाइश सुना जाए, गम का मारी।

बहुत ही प्यारा सा गाना सुने के बाद ये गाना का मिले 10 में से 8 अंक। बहुत प्यारा जो न ऊ रही मतलब एक लिरिक्स। और चला अगला गाना सुना जाए, सोहरा के राखब सजना पलकन के छाँव में, और ये फरमाइश है निशा के। तो चला निशा आपके फरमाइश के गाना सुना जाए, तोहरा के राखब सजना पलकन के छाँव में।

अगला गाना सुनने के बारी है और अगला गाना की फरमाइश है सबलू सावंत जी के मुंबई से सुनत हैं कन बलिया गाना सुनने के तैयारी है तो चलिए सुना जाए देखा जाए कैसे नहीं गाना।

तो चला अगली फरमाइश सुना जाए। राजकुमार जी के फरमाइश कमर कर धनिया राम स्वरूप के आवाज में आप सबन के संगे चला सुनी और बताई कैसे नहीं गाना।

तो शालिनी जी के फरमाइश के गाना तो बिल्कुल उपलब्ध नहीं, लेकिन शालिनी जी के फरमाइश के लिए वो गाना प्ले किया जाता है, कोनो देवता के गढ़ल सवारल हऊ, चला सुना जाए शालिनी के लिए ई गाना।

0: बाबूजी
1: अब बारी है अगला फरमाइश सुने के जो उनकी है इम्तियाज अहमद के फरमाइश और गाना है कमरिया पे साड़ी। चला सुना जाए और बताएं कैसे नहीं गाना।

अगला फरमाइश रानी के फरमाइश के गाना, और ये गाना है रानी गुप्ता के फरमाइश। चला सुना जाए कैसे नहीं गाना।

अगला गाना है दुर्गा के फरमाइश के, बहुत ही प्यारा गीत है, दिलवा के बात बड़ा देर दिन कहलू। चला सुना और बताएं कैसे।

बहुत ही प्यारा सा गाना दुर्गा जी के फरमाइश के सुने के बाद अब बारी है सबीहा के फरमाइश के गाना सुने के। फोटो करके जूम जूम नीलकमल की आवाज़ में, चली सुनी सबीहा के फरमाइश के गाना।

चलो अब सुना जाए कबो ना बियाहवा रचई थी, और अब सुनो बारी है बर्थडे सॉन्ग के, जो उनकी अनोखी डेडिकेट करा चाहती तस्बीह के तबिश खान के। तबिश आपके फरमाइश के गाना, आपके जन्मदिन पर गाना, जन्मदिन के बहुत सारी शुभकामना। चलिए सुने, जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साला।

के संग अंतिम फरमाइश सुनी है पागल बने बेकार पदर की गाना के बाद। ये गाना है तबिश के लिए और शिवा आप अपना गाना ही गाना के बाद सुनी है पागल बने बेकार पदर की और एक साथ है आरजे बिना के दिए इजाजत। कल फिर मिली है आपके संग करे के लिए फिल्मी बात यानी कि बॉलीवुडिया शाम में हुई है कई फिल्मन के बाद और आप सभी जरूर बताएं आपके पसंदीदा फिल्म के बारे में हीरो हीरोइन के बारे में और उनसे जुड़ी कोनो कहानी के बारे में। आहा जिया हो बिहार के लाला जिया तू हजार साला। यही के साथ जिया हजार साला तुरे सब लोग और एक साथ है आरजे बिना के दिए इजाजत। सुनत रहे आपन फेवरेट फ्रिक्वेंसी 89.6 FM यह गोंडा शहर के धड़कन। स्टे ट्यून्ड और आप सुनत रहे हो कुछ आपन खास यानी कि गोंडा मैसी मसाला आरजे बिना वाला आरजे बिना के संगे।

और जस्ट सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आर जस्ट सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप डेफिनेटली सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। दोस्तों आज मैं कुछ अलग कहना चाहूंगी। जिन लोगों ने तब तक अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए। उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा गाना टटोल लीजिए। उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत चांद, जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके और ये आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल हमेशा हमेशा के लिए आपकी है। दोस्तों मैं कहना चाहूंगी कि इश्क अदा नजाकत सब गा चुके हैं हम, इश्क अदा नजाकत सब गा चुके हैं हम, एंटरटेनमेंट का झूठा चश्मा हटा चुके हैं हम। आज धड़कनों को म्यूट करके जरा ये शोर सुनिए, आज धड़कनों को म्यूट करके जरा ये शोर सुनिए, ये जो सड़कों पर चीख रहा है वो दौर सुनिए। यूपी से बिहार तक, मुंबई से दिल की छाती पर, सवालों की एक आग लगी है इस देश की माटी पर। जंतर मंतर पर बैठा युवा कोई तमाशा नहीं है, उसकी आंखों में गुस्सा है अब बेबसी या निराशा नहीं है। तुम डिग्रियों की रद्दी बेचकर हुकूमत का ख्वाब सजाते हो, तुम डिग्रियों की रद्दी बेचकर हुकूमत का ख्वाब सजाते हो, हम हक मांगे तो हमें भटके हुए बताते हो। लाठियों के साए में कब तक भविष्य बोओगे, लाठियों के साए में कब तक भविष्य बोओगे, जो आज जवानी रो रही है कल तुम कुर्सी खोओगे। रेडियो पर तो अक्सर हम दिल के किस्से सुनते हैं मेरे यार, रेडियो पर तो अक्सर हम दिल के किस्से सुनते हैं मेरे यार, पर आज जलते हुए सपनों के छाले नजर आएंगे। अगर इस सच पर भी मेरी आवाज कांप जाए जो अभी तक चुप थी, अगर इस सच पर भी मेरी आवाज कांप जाए तो लानत है ऐसे माइक पर जो युवा का दर्द छुपा जाए। सो स्वागत है आप सभी का आज के युवा वाली महफिल में, और जितने दिल के दर्द है, जितने दिल के जज्बात है, सबको बाहर निकालने का समय आ चुका है। दोस्तों अब देर की तो बहुत देर हो जाएगी, कुछ ने आंखें खोलनी है, कुछ को आंखें खोलनी है, कुछ है जो दबे हुए हैं परिवार के वजह से, अपनों के वजह से, रिश्तों के वजह से, किसी ना किसी बंधन की वजह से, लेकिन अपने राइट्स को समझने का समय आ चुका है। फिलहाल चलते हमारी आज की फरमाइशी की महफिल की तरफ। दोस्तों वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। शिवा पटेल, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, पांडे एग्रीकल्चरिस्ट गोंडा से, महेंद्र राजस्थान से, नवीन राजपूत जी एमपी से, सुरेंद्र यादव गौरा चौकी से, अनिल वर्मा जी सैदापुर से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से, अजय मिश्रा, कार्तिक कश्यप आपका भी स्वागत है, अक्षय सिंह, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से, उषा कश्यप जी गोंडा से, सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बजी रानी बाजार सोनारगली गोंडा से, मुमताज अंसारी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, चांदनी गोंडा से, अरमान पटेल नगर गोंडा से, रईस जी इम्तियाज अहमद गोंडा से, नागेश्वर धाकर द ग्रेट से, साहब प्रीति शुक्ला जी बहराइच से, आशा मिश्रा जी लखनऊ से, आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल करती है आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। सो नॉट सो सिंपल वाला टैग सबको लगाना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब तक आप दिखाओगे कि आप सिंपल हो आप सब जगह ठगे जाओगे, फिर वो चाहे लीगली ठगे जाओगे चाहे आप इलीगली ठगे जाओगे, लेकिन आप ठगे जरूर जाओगे। सो एंजॉय करते हैं बिना किसी तरीके हमारी आज की पहली फरमाइश। दोस्तों हमारे पास में पहली फरमाइश आई हुई है जुगल किशोर वर्मा जी की एमपी से, और जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है गाना तौबा कैसे है नादान पायल घुंघरू के। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा नगमा सिर्फ और सिर्फ जग्गू दादा की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी और तलख बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

मिल के है अरमान घुंघरू पायल के और तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के। लता मंगेशकर जी की आवाज में अर्पण पिक्चर का ये गाना हमने एंजॉय किया है। दोस्तों बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ और अगली फरमाइश हमारे पास में है पांडे एग्रीकल्चरिस्ट की जो की है गोंडा से और उनको सुनना है गाना तेरी आंखें हैं मधुशाला। तो एंजॉय करते हैं इस सुपर डुपर हिट सदाबहार सुनहरा नगमा मेलोडियस सॉन्ग।

मधुशाला इस पर शेर लिखूं या गजल कहूं। अच्छा जी, हमने एंजॉय किया ये वाला नगमा सिर्फ और सिर्फ पांडे एग्रीकल्चरिस्ट की फरमाइश पर, जो कि है गोंडा से। इतना बड़ा नाम रखेंगे ना तो बार बार मैं आपका नाम ही नहीं ले पाऊंगी, और बार बार की बात ही नहीं है, अगर इतना बड़ा नाम रखेंगे ना आप तो फिर मैं प्यार से आपका नाम नहीं ले पाऊंगी। और जहाँ भाव नहीं निकले वहाँ शब्दों का कुछ मतलब नहीं होता, क्यों सही कहा ना मैंने। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। दीपेन को राजस्थान से सुनना है गाना चांदनी और मेरी चांदनी। सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा, श्रीदेवी ऋषि कपूर का नगमा, चांदनी पिक्चर का नगमा, हमारे महेंद्र दीपेन की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। बताओ, किसी को आंखों पे गजल लिखने का मन करता है, किसी को शेर लिखने का मन करता है, यहाँ कोई एक रुपए का मेलोडी टॉफी

नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। बिन पूछे ये काम किया,

0: चांदनी।
1: अरे चाचा, चांदनी चांदनी करता है।
2: हमने एंजॉय किया चांदनी, ओ मेरी चांदनी, सिर्फ और सिर्फ हमारी चांदनी, हमारे शो की चांदनी, महेंद्र की फरमाइश पर जो की है राजस्थान से। और इसी के साथ में महेंद्र का कुछ और भी कहना है, इनका कहना है कि सुरीली आवाज और मीठे बोल आरजे सिंपल मैम की पहचान है। किसने कहा, कहां से सुन लिया ये सुरीली आवाज, कहां से लगती है ये मीठे बोल। सुरीली आवाज और मीठे बोल आरजे सिंपल मैम की पहचान है, रेडियो गोंडा की हर एक धुन में बसी हमारी जान है। चांदनी गाना बजाकर आपने जो खुशी दी है, आज हमारे दिल ने आपको दिल से दुआ दी है। ऐसे ही हर रोज दिल छू जाने वाले गीत सुनाइए और अपनी प्यारी बातों से रेडियो के रौनक बढ़ाइए। सो ये लाइंस थी दीपेन की तरफ से, महेंद्र दीपेन की तरफ से। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। दोस्तों अगली फरमाइश हमारे पास में है एमपी से नवीन राजपूत जी की, और नवीन राजपूत जी को एमपी से सुनना है उनकी बिटिया कनक राजपूत के लिए गाना, क्योंकि आज उनका है जन्मदिवस। तो हैप्पी हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे। एंजॉय करते हैं बहुत ही खूबसूरत सा नगमा कनक राजपूत के लिए। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

दोस्तों हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारी कनक राजपूत की बर्थडे पर, उनका आज है जन्म दिवस और उनके पिताजी ने फरमाइश की थी इस गाने की। सो हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है मोहित की मालवीय नगर गोंडा से, उनको सुनना है गाना अरिजीत सिंह की आवाज में, धुरंधर मूवी का।

अरिजीत सिंह की आवाज में मोहित की फरमाइश पर जो कि है मालवीय नगर गोंडा से, और इस गाने ने कुछ याद दिलाया है। किसी का कहना है कि दिल की बात छुपानी आती नहीं, दिल की बात छुपानी आती नहीं, किसी को रीत बतानी आती नहीं, हम तो बस इश्क के मारे हैं यारो, हमें सौदेबाजी आनी आती नहीं। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से, उनको सुनना है गाना ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में। वैसे सपनों के गांव में लेके तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन उस सपनों के गांव को असली में सपने का गांव बहुत कम बना पाते हैं। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

गांव में हमने एंजॉय किया है ये ओल्ड इज गोल्ड रिवर्जन एआई वर्जन सिर्फ और सिर्फ सुरेंद्र यादव की फरमाइश पर जो कि है गौरा चौकी से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। फरमाइशों का सिलसिला चलता रहेगा मेरे यारों, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, लेकिन उसके पहले आपकी अर्जी सिंपल कुछ कहना चाहेगी। सो अर्ज किया है, अब तो इस दिल से दुआ मांगना भी छोड़ दिया, अब तो इस दिल से दुआ मांगना भी छोड़ दिया, जो पत्थर के सनम हो उन्हें पुकारा क्या करें, इश्क के नाम पर बिकते हैं यहाँ रोज जमीर, ऐसे बाजार में हम दिल को उतारा क्या करें। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों चांदनी की, और चांदनी को सुनना है गाना बर्बाद। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट नगमा सैयारा का, सबके दिल के करीब रहने वाला गाना सिर्फ और सिर्फ चांदनी की फरमाइश पर। आई रियली लव दिस सॉन्ग।

0: प्यार होने का डर किसी को नहीं होता, मोहब्बत होने का डर किसी को नहीं होता, लेकिन इश्क होने का डर सबको होता है। मुझे ऐसा लगता है, पहले मुझे नहीं पता थी इश्क मोहब्बत प्यार की परिभाषा, लेकिन अब मुझे लगता है कि सच में प्यार का अर्थ कुछ अलग होता है, मोहब्बत का अर्थ कुछ अलग होता है और इश्क का अर्थ कुछ अलग होता है। जहाँ इश्क हो जाता है, बेहद बेशुमार हो जाता है, वहाँ सच में एक जिंदा दिल बर्बाद हो जाता है। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है अनिल वर्मा जी की सैदापुर से। उनको सुनना है गाना, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, लगे गम गले तो मेरे दिल में आ जाना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।
1: कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना।
0: आखिर ऐसा कोई दिल बचा है?

कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। हमें एंजॉय किया ये दिल में दस्तक देने वाला नगमा अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो गौरव इंडिया वाले, आपका स्वागत है। और इसी के साथ में रामपाल जी आपका भी स्वागत है, संतोष कुमार गिलौरी से, स्टे ट्यून एंड वेलकम इन योर शो। गौरव इंडिया वाले का कहना है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन नाग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की ये लाइंस गौरव इंडिया वाले ने भेजी है और इसका पूरा का पूरा अर्थ, मीनिंग और डेडिकेशन किधर है मैं सब कुछ समझ रही हूँ। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो एंड थैंक्स अ लॉट। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में धर्मेश त्रिपाठी की, उनको सुनना है गाना क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, मेरे दिल भर आने वाले हैं कलियां ना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। सो उदित नारायण की आवाज में एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा रोमानियत से भरा हुआ नगमा। स्टे ट्यून्ड।

पर कलियां न बिछाना राहों में, हम तो अंगारे बिछाने वाले हैं। हम तो अब किसी भी दिलबर के बिना परीक्षा लिए कुछ भी डिसीजन लेने के काबिल बचे ही नहीं हैं दोस्तों, क्योंकि जिसको भी दिल दिया है उसने सौदा ही किया है, फिर वो चाहे जैसा भी रिश्ता हो। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की, और मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा को सुनना है हम सबके बचपन वाला गाना, मुझसे शादी करोगी, टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग, मुझसे शादी करोगी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से जो अजय मिश्रा है ना, वो शायद मुझे बचपन से जानते हैं। तो he knows me very well, no? Stay tuned everyone, enjoy करते हैं ये मेरे बचपन वाला गाना और इनके बचपन वाला गाना।

नहीं छुपाओगी रानी, कवारों को कितना सताओगी रानी, और कभी तो किसी की ऑब्वियसली दुल्हनिया बनोगी, तो क्यों ना मुझसे शादी करोगी। अच्छा जी, उसको जिसकी दुल्हनिया बननी होगी उसकी दुल्हनिया बनेगी, उसने प्री डिसाइडेड अगर कर रखा हो उसका दूल्हा तो तेरी दुल्हनिया काय को बनेगी रे। सो हमने एंजॉय किया है ये नगमा मिश्रा ऑप्टिकल कौन ऐसे अजय मिश्रा की फरमाइश पर, और इनकी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट बिखेरना चाहते हैं और हमारे सिंगल लड़कों को और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड बनाना चाहते हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ इस गाने की फरमाइश करने का यही सिर्फ मकसद और मोटिव था। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है कार्तिक कश्यप की। कार्तिक कश्यप को सुनना है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो, और आन बान शान या की जान का हुदान, आज एक धनुष के बाढ़ पे उतार दो। सो एंजॉय करते हैं ये प्रचंड गाना, एनर्जी से भरपूर मोटिवेशनल।

सिर्फ कार्तिक कश्यप की फरमाइश पर। और इसी के साथ में धर्मेश त्रिपाठी का कहना है कि मैम जी, आपने मेरी फरमाइशी गीत को बजा के मेरा दिल खुश कर दिया है, क्या तुम्हें पता है गुलशन। और आज भी महक उठा क्योंकि मेरी पसंद का गीत आपकी आवाज के साथ सुनने को मिला, दिल से शुक्रिया। और जिस सिंपल जी, आपने सिर्फ एक गाना नहीं बजाया बल्कि मेरी भावनाओं को भी आवाज दी है। ईश्वर करे आपकी मुस्कान और आपकी आवाज हमेशा यूं ही सबके दिलों को छूती रहे। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नागेश्वर धाकड़। एंजॉय करते हैं ये वाले फरमाइशी गीत। और इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे दोस्तों, हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होंगे देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन लेकिन लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस अपने नाम से, वो भी आपकी अपनी खट्टी मीठी कड़वी आर जो सिंपल नॉट है सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थली 89.67 गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, मिलते हैं सीधे 9 बजे। जिन लोगों ने अभी तक पेट पूजा नहीं की है, अगर किसी ने नहीं पूछा है तो आपके आज सिंपल नॉट तो सिंपल ने ऐलान कर दिया है कि जिन्होंने पेट पूजा नहीं की है फटाफट से जाके पेट पूजा करके आए, नहीं तो फरमाइशी की महफिल के बाद में उनको प्रसाद नहीं मिलेगा। सो एंजॉय करते हैं ये वाली फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, मिलते हैं सीधे 9 बजे।

प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन भान शान या

0: जान ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।
1: आरंभ है

ज्योति पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो।

0: किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्य वंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बगैर समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
3: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे। उनके हमरा
2: अमृत और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है।
4: At the level of the Prime Minister,
5: प्रधानमंत्री द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी जा चुकी है। आज सुनवाई के लिए अदालती कार्रवाई शुरू करने और परीक्षा की पवित्रता भंग करने वाले लोगों के लिए ही सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने वास्तव में यह अपराध किया था।
2: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया गया है।
6: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं, शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
2: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। इस हंगामे की वजह से आज लोकसभा और राज्यसभा में कोई खास कामकाज नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह भरोसा दिलाए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे पहले से शर्तें थोप रहे हैं और नीट पेपर लीक मामले पर पर बहस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में भी हालात ऐसे ही रहे। गतिरोध जारी रहने के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई भी व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
3: भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए। मनीला में 21वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि नाविकों, नागरिक जहाजों या बुनियादी ढांचे पर हमले किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। श्री जयशंकर ने आसियान की केंद्रीयता, क्षेत्रीय स्थिरता और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री ने आज फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और आसियान की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत फिलीपींस सहयोग में मजबूती आ रही है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सबरीमला सोना घोटाला मामले में आज विशेष जांच दल SIT ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड TDB के पूर्व अध्यक्ष PS प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व TDB अध्यक्ष पर यह आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2025 में सबरीमला मंदिर से सोने की परत चढ़े पैनलों को मरम्मत के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा है कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा है कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
5: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं, और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
3: श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री को लाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के लगभग 1.1 करोड़ उपयोगकर्ता हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन भी प्रभावित है। हमारी संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।
6: गुजरात में कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें खास करके दक्षिण और मध्य गुजरात के जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। नवसारी के खेरगाम में आज सुबह से शाम तक 16 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि सूरत के उमरपाड़ा में 15 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बाढ़ की परिस्थिति को देखते हुए उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने नवसारी पहुंचकर शीर्ष अधिकारियों के साथ डिजास्टर कंट्रोल रूम में आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की है। राहत और बचाव युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जहां एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित आश्रय स्थानों में पहुंचा रहे हैं। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले दो दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में भी अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। विभाग के अनुसार कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे और तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में कल बादल छाए रह सकते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज रात ग्लासगो में होगी। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डेन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के विरुद्ध पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

So, एक बार फिर से स्वागत और इस्तकबाल करती है आपके अपनी आज सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल आप सभी का आपके अपनी शो फरमाइशी में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। दोस्तों, रेडियो की सुरीली दुनिया से बाहर आई, आज हवा में प्यार का सुर नहीं, सिस्टम के सीने पर उगते सवालों का शोर मचाई। फूलों की बात बहुत हुई, अब कांटों का हिसाब होगा, हर नाकाबिल कुर्सी से तीखा हर एक सवाल होगा। तुम कागजों पर विकास के बड़े बड़े पुल बांधते हो और जमीन पर बेरोजगारों के सपनों को कुचल जाते हो। पीपल्स प्लाजा से लेकर संसद के उन ठंडे कमरों तक हर युवा का सब्र टूट रहा है इन अंधेरे लम्हों तक। वो जो ठंड में ठिठुर रहा है वो तुम्हारी नाकामी का इश्तहार है। सुन लो हुक्मरानों, ये बगावत की पहली फुहार है। नौकरियों के इम्तिहानों में जब पर्चे लीक होते हैं तो करोड़ों के घरों के चिराग चुपचाप सिसक कर रोते हैं। तुम भाषणों में अमृतकाल का नया सुर सजाते हो और हम हक मांगे तो हमें शहरी नक्सली बताते हो। अरे, माइक के इस पार बैठी ये शख्स भी इस माटी की है। अरे माइक के इस पार बैठा शख्स भी इस माटी का लाल है। यही हर एक नौजवान के कंधे पर उम्मीदों का बवाल है। अगर आज इस सच को कहने में मेरी सांस उखड़ जाए तो खुदा की कसम ये आरजे माइक छोड़कर सड़क पर आ जाए। सियासत ने तो ऐसी घुट्टी दबा रखी है और ऐसी घुट्टी पिला रखी है कि कुछ अंधभक्तों को अभी भी होश नहीं आएगा। दोस्तों, सो आप सभी से उम्मीद है कि आप लोगों को अब तक तो होश आ गया होगा कि तानाशाही का इंतजार है। फिलहाल एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है अक्षय सिंह की, और अक्षय सिंह को सुनना है गाना उफ तेरी अदा, आई लाइक द वे यू मूव, उफ तेरा बदन। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर डुपर डुपर डुपर हिट सा नगमा, तड़कता भड़कता सा नगमा, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक का नगमा, सिर्फ और सिर्फ अक्षय सिंह की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए डेफिनेटली रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। आज पता नहीं क्यों कुछ हो रहा है दोस्तों, ऐसा लग रहा है मुझे भी निकलना चाहिए, सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। मेरी जिंदगी तो निकल जाएगी, अगले जनरेशन का क्या होगा? रंग रज दे, बस कागजों में ही फंसे रहना है कि अपने अधिकार भी जानने हैं।

कॉलिंग कर दिखाइएगा ना अक्षय सिंह की फरमाइश पर। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। दोस्तों अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से, और धर्मेंद्र मोहन को आवाज विकास गोंडा से सुनना है गाना ऐसे वैसे न समझ सजना। तो एंजॉय करते हैं जानी दुश्मन का ये नगमा।

0: ऐसी वैसी ना समझ सजना, जानी दुश्मन का ये गाना हमने एंजॉय किया है। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है सौरभ मौर्य की गुड़वा घाट से, उनको सुनना है गाना बैरी, सो एंजॉय करते हैं। चांदनी रात में गोली चला गया लेके दुनाली हाथ में,
1: थारा पैर पैर पर बैरी
0: बैठा है। लव यू सौरभ, स्टे ट्यून्ड।

So, दिन में तो मने ढूंढे पुलिस आऊंगा आधी रात में, हमने एंजॉय किया है। ये नगमा बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है निशा की, पटेल नगर गोंडा से, और निशा को पटेल नगर गोंडा से सुनना है गाना रमता चौकी। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, दिल चीर देने वाला नगमा, आर पार कर देने वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। मैं पी आया। ओहो।

हाय हाय।

द प्याला पीना चाहिए। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, और इसी के साथ में आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल लेना चाहेगी अलविदा। सो दोस्तों, हमारे पास में अगली और आखिरी फरमाइश है सुनीता जी की, एंजॉय करेंगे ये फरमाइश और इसी के साथ में लेना चाहूंगी अलविदा। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज, हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड फैमिली एज वेल, समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्यों, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड एवरीवन, मिलते हैं कल, अलविदा दोस्तों, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना। गणपति बप्पा मौर्या, एवरीवन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।

0: हमारे शहर में लग न जाए आग नफरत की, हमारे शहर में मैं मोहब्बत हूँ, मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
5: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
5: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी करें 7234020202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा TV एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335984। अब बारी है आपकी।
6: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
7: मतलब
6: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप इस्तकबाल आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेशली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। जी हाँ, कल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई हमारे कालीन प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। यह आपका कार्यक्रम है जिसको आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाया, तो इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं जी। और एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष। रात रात जख्मों को छुपाने के लिए आती है, रात जख्मों को छुपाने के लिए आती है, रात कुछ फूल खिलाने के लिए आती है, रात रात बिछड़ों को मिलाने के लिए आती है, रात होती नहीं मायूस ख्यालों के लिए, रात होती नहीं मायूस ख्यालों के लिए, रात होती है फकत चाहने वालों के लिए। तो चाहने वालों की इस महफिल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन, नमन और इस्तकबाल। जी हाँ, हम हमेशा बात करते हैं कि किसी भी बिल्डिंग को देखते हैं, इमारत को देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये वास्तव में ये इमारत कितनी खूबसूरत है। लेकिन अगर हम जड़ में जाकर देखें तो जो उस इमारत की नींव है उसमें जो ईंट लगी हुई है वो किसी को दिखाई नहीं पड़ती, जबकि सारी की सारी इमारत उसी नींव पर टिकी हुई है, वही नींव की ईंट। और हम अपने कार्यक्रम में उन्हीं दानिश्वरों की बात करते हैं, उन्हीं कलमकारों की बात करते हैं, उन्हीं फनकारों की बात करते हैं जिन्होंने ये माना कि पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, जिन्होंने माना कि कलम में तलवार से ज़्यादा ताकत होती है और उसे अपनी ताकत बनाया। और उनके लिखे गए गीत जब गीतकार ने अपने कंठ से गाए, संगीत का प्यारा सा साथ मिला, तो वो लोगों की जुबान पर आए। संगीतकार हमको पता, गीतकार हमको पता, फिल्म हमको पता, लेकिन इस भीड़ में कहीं ना कहीं वो गुम हो जाते हैं जिन्होंने उस रचना को लिखा। बहारे गज़ल में हम उन शायरों की, उन कलमकारों की, उन दानिश्वरों की बात करते हैं जिनके दम पर ये संभव हो पाता है। आज जिस कलमकार को हम आपके बीच लेकर आए हैं उनका नाम आप सभी जानते हैं, पूरी दुनिया उन्हें जावेद अख्तर के नाम से जानती है। शबाना आजमी के पति, कैफी आजमी पिता हूं जिनके, बच्चे भी हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। जरा सा मिजाज जो उनका है वो जरा सा तल्ख है, मतलब तल्ख का मतलब लगता है कि वर्तमान परिपेक्ष को लेकर या साहित्य को लेकर या इस दुनिया की स्थिति को लेकर वो गंभीर कुछ ज़्यादा है। उनका कुछ नज़रिया ऐसा है, उन्होंने कुछ ऐसे अछूते मौजूआत को अपनी शायरी में लेकर आए जो शायद कभी किसी भी गज़ल का, नज़मों का हिस्सा नहीं बनी थी। बात करेंगे आज जावेद अख्तर की। जी हाँ, आपको सुनाते हैं प्यारी सी गज़ल और इसके बाद आपसे मिलते हैं जावेद अख्तर साहब के साथ। तो सुनते रहिए और रेडियो गणेशली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल हम आपको सुना रहे हैं और ख़ास बात यह है कि इसमें जो मेल वर्जन गाया है वो ऐसे सिंगर है जिनको हिंदी बोलनी नहीं आती थी। तो जी हाँ, ज़रा आप भी गेस कीजिए कि ये आवाज़ किसकी है, किस

गले की हम बात कर रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिनको हिंदी बोलनी नहीं आती और इतनी प्यारी सी गजल उन्होंने गाई। नाम किसका है इसकी प्रतीक्षा हम आपसे करेंगे। फिलहाल जी हाँ, अनिल शास्त्री जी हमारे साथ उपस्थित हैं, चरण स्पर्श करते हैं आपको दादा, और आइए आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गजल और मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार।

जी हाँ, एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन। और अब बात करेंगे जावेद अख्तर साहब की, एक ऐसे शायर जिनको हम एक व्यक्तित्व तो कह सकते हैं। और उन्होंने जब बहुत गहन अध्ययन किया तो बहुत ही गहन अध्ययन के बाद वो एथीस्ट हो गए, नास्तिक। आप अगर गूगल पर जाकर उनको सर्च करेंगे तो रिलीजन में एथीस्ट लिखा होगा। कहीं या तो भरोसा बहुत ज्यादा था तो टूटा, तो एथीस्ट होता है इंसान, क्यों होता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो हुए। और अभी एक बहस भी हुई थी, बहुत प्यारी, मतलब लल्लन टॉप पर डिबेट हुआ, डज गॉड एग्जिस्ट, और वहाँ पर जावेद अख्तर साहब ने अपनी बात रखी। मौका मिलेगा तो कभी देखिएगा, हो सकता है आप जावेद अख्तर साहब से कुछ संबंध जो धरती पर है उनसे हम कैसे बनाएं ये बेहतर सीख सकते। उन्होंने लिखा कि जीना मुश्किल है कि आसान, जरा देख तो लो। जीना मुश्किल है कि आसान, जरा देख तो लो। लोग लगते हैं परेशान, जरा देख तो लो। जीना मुश्किल है कि आसान, जरा देख तो लो। लोग लगते हैं परेशान, जरा देख तो लो। ये नया शहर तो है खूब बसाया तुमने, ये नया शहर तो है खूब बसाया तुमने, क्यों पुराना हुआ वीरान, जरा देख तो लो। इन चरागों के तले ऐसे अंधेरे क्यों हैं? अब ये कहावत को गजल बनाई जा रही है, चिराग तले अंधेरा, हम सब जानते हैं। इन चरागों के तले ऐसे अंधेरे क्यों हैं? तुम भी रह जाओगे हैरान, जरा देख तो लो। तुम ये कहते हो कि मैं गैर हूं, फिर भी शायद, तुम ये कहते हो कि मैं गैर हूं, फिर भी शायद निकल आए कोई पहचान, जरा देख तो लो। वो कहते हैं कि अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको हर कोई अपना मिलेगा, और अगर आप नकारने की कोशिश करेंगे तो हर कोई आपको गैर मिलेगा। और उन्होंने तो ये भी लिखा कि दिल की दुनिया है मुसीबत से भरी रहती है, दिल की दुनिया है मुसीबत से भरी रहती है, फिर भी हर शाख तमन्ना की हरी रहती है। मतलब इंसान को एक उम्मीद, अगर कोई मुझसे पूछता है कि जिंदगी का आधार क्या है तो मैं कहता हूं आशा, 3-11 to 11, आप लिखकर देखेंगे तो आशा आएगा। अगर सपने नहीं होंगे तो हकीकत इंसान को जीने की इजाजत नहीं देती है। दिल की दुनिया है मुसीबत से भरी रहती है, फिर भी हर शाख तमन्ना की हरी रहती है। ठीक है, एक सपना टूटा, फिर दूसरा सपना देखा, चलो फिर अच्छा होगा। जाने कब आके वो दरवाजे पे दस्तक दे दे, जाने कब आके वो दरवाजे पे दस्तक दे दे। जिंदगी मौत की आहट से डरी रहती है, मतलब अगले पल क्या होगा हम में से कोई नहीं जानता, वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते और वास्तव में नहीं जानते। तो जाने कब आके वो दरवाजे पे दस्तक दे दे, जिंदगी मौत की आहट से डरी रहती है। ख्वाब में भी नहीं देखा कभी चेहरा उसका, ख्वाब में भी नहीं देखा कभी चेहरा उसका, दिल के आईने में सुनते हैं पड़ी रहती है। मैं सिकंदर हूं
न सूफी न कलंदर यारों, मतलब न तो मैं सिकंदर हूं न मैं कोई संत हूं, सूफी मतलब संत और न कलंदर मतलब कलमकार, लिखने वाला, राइटर, लेखक, कवि। मैं सिकंदर हूं न सूफी न कलंदर यारों, फिर भी रोशन मेरी आसुफ्ता गिरी रहती है। मतलब आसुफ्ता गिरी का मतलब होता है तितर बितर हो जाना, जिसकी चीज़ें अक्सर जो आप शायर को देखते हैं, कवियों को देखते हैं, तो फसा उनकी लाइफ में अस्त व्यस्त चीज़ें अधिक होती हैं अन्य सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा, और एक ही पल में पलटती हैं लकीरों जैसी, एक ही पल में पलटती हैं लकीरों जैसी, जैसे हर सांस हथेली पे धरी रहती है। क्या बात है, मतलब आप सोच करके देखिए, दुनिया का सच अगर आप देखें तो इस दुनिया में दो चीज सब लोग जानते हैं कि विष, अमृत का विलोम विष होता है, आप सभी मानते होंगे और मैं भी मानता हूं, लेकिन हम में से किसी ने अमृत को नहीं देखा, जहर को देखा है। सबने जहर को देखा होगा, कुछ भी खा लीजिए, ये तमाम प्रकार की ऐसी औषधियां हैं जो, ऐसी चीजें हैं जो जहर का काम कर सकती हैं। सुनी सुधा देखी है गरल, सुनने में आता है कि अमृत है, लेकिन आज तक किसने देखा नहीं। एक शायर की पंक्ति है कि हमने तो बस जख्मों को देखा है, लोगों से सुनते हैं मरहम होता है। तो जख्म दिखाई पड़ते हैं, मरहम घाव को कैसे हील करता है, कैसे भरता है, वो दिखाई नहीं पड़ता। तो सुनने में आता है कि अमृत, लेकिन जो दिखाई पड़ता है वो विष। अगर अमृत है, अगर उसका एग्जिस्टेंस है, अगर वो एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में है, तो कहीं दिखाई पड़ना चाहिए, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। अक्सर अच्छी चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती, केवल उनके बारे में महसूस किया जाता है। जी हाँ, हमारे साथ इम्तियाज अहमद जी हैं भाई, आदाब करते हैं आपको, कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। कमल नयन जी, शुभ संध्या सर, गुड इवनिंग, और क्या बात है भाई। सविता जी ने उत्तर दे दिया, जी बिल्कुल यशुदास जी, बिल्कुल हिंदी बोलनी नहीं आती थी, लेकिन क्या कमाल की गज़ल गाई उन्होंने। हमारे साथ धर्मेंद्र मोहन जी हैं आवास विकास से, मनुष्य जी गुड इवनिंग और शुभ संध्या आपको भी भाई, शुभ संध्या। मुस्तफ़ा जी सऊदी से हैं, गुड इवनिंग सर, शुभ संध्या और आदाब आपको। थके थके हैं मगर फिर भी चल रहे हैं लोग, न जाने किस सांचे में ढल रहे हैं लोग। जी हाँ, ये पंक्ति है, और आइए आपको सुनाते हैं प्यारी सी गज़ल, और मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार। और इस प्यारी सी गज़ल को इस बार गाने वाले शख्सियत का नाम मखमली आवाज़, और जब मैं आवाज़ के साथ मखमली शब्द का प्रयोग कर दूं तो सिर्फ मेरे लिए एक कलाकार जहन में आते हैं, और उनका नाम है जगजीत सिंह। जी हाँ, हमने यशुदास को सुना, आइए अब सुनाते हैं आपको जगजीत सिंह की एक प्यारी सी गज़ल, और मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार।

वाह रे पंकज उदास, वाह क्या बात है। जिस दिन से जुदा वो हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। लिखने वाले भी बाकमाल, गाने वाले भी बाकमाल, और संगीत देने वाले भी बाकमाल, और हम सुनने वाले भी तो कमाल के हैं। अब उर्दू पद्य की एक विधा होती है जिसको बोलते हैं नज्म, आप सभी परिचित होंगे। जावेद अख्तर साहब ने एक नज्म लिखी है, मैं वो आपको सुनाता हूँ। अगर आप शतरंज के खेल से वाकिफ हैं तो आपको ये नज्म बहुत पसंद आएगी, अगर नहीं वाकिफ हैं तो शायद शायद थोड़ा सा कम हम पहुंच पाए वहाँ तक हम आप, लेकिन अगर थोड़ी बहुत आती है तो। अब देखिए, शतरंज एक खेल है, हिंदी में कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अब कैसे हम जब शतरंज को देखते हैं तो एक खेल के तरीके से देखते हैं, लेकिन जब एक साहित्यकार, एक कलमकार, एक दानिश्वर खेल को भी देखता है तो उसका नज़रिया दूसरों से अलग होता है। शतरंज की बात करेंगे, मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है, जावेद अख्तर साहब बोलते हैं। मुखालिफ मतलब जब आप खेलेंगे तो जो आपका अपोनेंट होगा, जो आपका विरोधी होगा, दो लोग खेलेंगे तो मुखालिफ वही है। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है, मगर मैं कब से सफेद खानों सियाह खानों में रखे। सफेद खाना अगर आपने देखा होगा, सियाह मतलब ब्लैक वाला जो स्क्वायर होता है उसको सियाह बोलते हैं। मगर मैं कब से सफेद खानों सियाह खानों में रखे, काले सफेद मोहरों को देखता हूँ, मैं सोचता हूँ ये मोहरे क्या हैं। अगर आपने शतरंज सुना होगा, देखा होगा, तो प्यादा होता है, हाथी होता है, वजीर होता है, राजा होता है, घोड़ा होता है। अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरे हैं सिर्फ लकड़ी के हैं खिलौने, तो जीतना क्या है, हारना क्या, न ये जरूरी न वो अहम है। अगर सिर्फ खेली है, लकड़ी के सिर्फ प्यादे हैं, तो अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरे हैं सिर्फ लकड़ी के हैं खिलौने, तो जीतना क्या है, हारना क्या, न ये जरूरी न वो अहम है। अगर खुशी है न जीतने की, न हारने का ही कोई गम है, तो खेल क्या है भाई। खेल में आप जीतेंगे तो खुशी, हारेंगे तो गम, इन दोनों में नहीं है तो खेल का मतलब नहीं। मैं सोचता हूं जो खेलना है तो अपने दिल में यकीन कर लूं,

मैं सोचता हूँ जो खेलना है तो अपने दिल में यकीन कर लूँ, ये मोहरे सचमुच के हैं बादशाह हो वजीर, सचमुच के हैं प्यादे, और इनके आगे है दुश्मनों की वो फौज, रखती है जो मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे सब इरादे। एक इधर एक उधर, आगे सैनिक होते हैं पीछे बड़े लोग होते हैं, मगर ऐसा जो मान भी लूं तो सोचता हूं ये खेल कब है, ये जंग है जिसको जीतना है, ये जंग है जिसमें सब है जायज, कोई ये कहता है जैसे मुझसे, ये जंग भी है ये खेल भी है, ये जंग है पर खिलाड़ियों की, ये खेल है जंग की तरह का, मैं सोचता हूं जो खेल है तो इसमें इस तरह का उसूल क्यों है। अब पंक्ति आएगी और आप ध्यान से सुनिएगा, मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है, कि कोई मोहरा रहे कि जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई याच भी ना आए। राजा को बचा कर रखा जाता है चेस के खेल में, अगर वो मेट हो गए तो मतलब खेल खत्म। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है, कि कोई मोहरा रहे कि जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई याच भी ना आए, वजीर को ही है बस इजाजत कि जिस तरफ भी वो चाहे जाए। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है। अब आम जनता की बात करते हुए शायर कहता है कि मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है, प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस न जाने पाए। अगर सिपाही एक बार निकल गया तो घर न जाए, मरना है उसको, राजा को हर हाल में बचाना है। क्यों? देखिए ये जावेद अख्तर की सोच है। मैं सोचता हूं अगर यही है उसूल तो फिर उसूल क्या है, अगर यही है खेल तो फिर खेल क्या है। मैं इन सवालों में जाने कब से उलझ रहा हूं, मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है। सबने शतरंज खेली होगी अगर आप में से, तो हमारे लिए वो खेल है, लेकिन जावेद अख्तर साहब कहाँ तक पहुँचते हैं। वजीर चाहे जहाँ जाए, राजा पर आँच ना आए, और सिपाही अगर घर से निकल गया तो वापस नहीं आएगा, मतलब उसको मरना है। व्हाई, क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों वाले प्रश्न शायर को महान बनाते हैं। जैसे जावेद अख्तर साहब ने एक नए तरीके से सोचा, और उन्होंने तो कहा भी था कि जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल, पामाल मतलब होता है आसान, मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता, गलत बातों को खामोशी से सुनना हामी भर लेना। गलत बात कही, खामोशी से सुन लीजिए, सही है, गलत बातों को खामोशी से सुनना हामी भर लेना, बहुत है फायदे इसमें मगर अच्छा नहीं लगता। और अंतिम पंक्तियां तो दिल को छूती हैं कि मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, मैं चाहता हूं कि दुश्मन भी गैरतमंद हो, खुददार हो, मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, किसी का भी हो सर कदमों में सर अच्छा नहीं लगता, सर किसी का भी हो पैरों में, अगर आप शत्रु है तो नहीं, ठीक है, इट्स ओके, आपने माफी मांग ली, लेकिन पैर मत पड़िए। और इसी बात को राहत इंदौरी ने कहा तो कुछ यूं कहा कि सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, ऐ खुदा दुश्मन भी हमें खानदानी चाहिए। जी हाँ, बात कर रहे हैं गजल की, और आज भाई बात करेंगे, जब गजलों की बात होती है तो एक प्यारा नाम मुझको याद आता है, कम गजलें गाई लेकिन लता जी ने जो गजलें गा दी वो बाकमाल गाई। आइए अब आपको सुनाते हैं लता जी के द्वारा गाई हुई
एक प्यारी सी गजल सुनते रहिए। और रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।

0: मैं कई बार पानी मांग चुका हूँ, आप पानी क्यों नहीं देते?
1: पानी आएगा तो मिल जाएगा।
0: मुझे अंधेरे में क्यों रखा हुआ है, रोशनी क्यों नहीं?
1: जब तक लालटेन नहीं आती तो मैं अंधेरे में ही रहना होगा।

जी हाँ, घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ गया है। जी हाँ, तो शुभ रात्रि, शब्बा खैर। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठ पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आसमान वाले ने चाहा तो शनिवार को पुनः आपसे मुलाकात हो गई आप ही के कार्यक्रम बहारे गजल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। एक बार पुनः आप सभी का

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी बनारसी इश्क। कहते हैं बनारस में मौत भी आ जाए तो इंसान तर जाता है, पर अगर यहां इश्क हो जाए तो इंसान जीते जी मोक्ष पा लेता है। अंकुर का इश्क भी कुछ ऐसा ही था जिसने उसे बनाया भी और अंदर तक मिटाया भी। वो ठेठ बनारसी लड़का था, पॉकेट में हमेशा 100-500 रुपए, जुबान पर गुरु और महादेव का नाम और शाम को 80 घाट पर दोस्तों के साथ बैठकर दुनिया जहान की राजनीति पर बहस करना, यही उसकी कुल जमा जिंदगी थी। उसे लगता था कि इस शहर की गलियों और घाटों से ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कुछ नहीं है, पर उसका ये भ्रम तब टूटा जब वो उसकी जिंदगी में आई। वो बनारस की नहीं थी, दिल्ली से आई थी अपनी पेंटिंग एग्जीबिशन के सिलसिले में। सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें जो हमेशा कुछ ढूंढती सी लगती थीं, और सूती कुर्ती के साथ पहने हुए चांदी के बड़े बड़े झुमके। वो पहली बार उसे दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों पर मिली थी। शाम की आरती शुरू होने वाली थी, चारों तरफ भीड़ का रेला था। वो एक कोने में खड़ी होकर अपने कैमरे से गंगा की लहरों पर तैरते दियों को कैद करने की नाकाम को

हिले तो झेपी, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी वो हंसी कसम बाबा विश्वनाथ की लगा जैसे संकट मोचन मंदिर में सुबह की आरती के वक्त सारी घंटियां एक साथ बज उठी हों।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के

0: इस सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ मेरी आज की कहानी है बनारसी इश्क। अब तक आपने सुना उससे अंकुर की पहली मुलाकात दशाश्वमेघ घाट पर हुई। वो दिल्ली से यहाँ अपने पेंटिंग एग्जीबिशन के काम से आई थी। उसका कैमरा पानी में गिरने वाला था कि अंकुर ने उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लिया। अब आगे उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, थैंक यू। इस पर अंकुर ने सीना तान कर कह दिया, तभी तो गुरु, यहां बनारस में नजर और नियत दोनों बाज जैसी तेज रखनी पड़ती है। अगली सुबह वो उसे फिर मिल गई, इस बार गदौलिया की एक तंग गली में। हाथ में गूगल मैप लिए परेशान खड़ी थी। अंकुर ने बाइक रोकी और कहा, अरे गुरु, काहे सुबह सुबह इस भूल भुलैया में खुद का तेल निकाल रही हैं? इस शहर में रास्ता गूगल मैप नहीं, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद दिखाता है। बैठिए, आपको असली बनारस का दीदार कराते हैं। वो हिचकिचाई पर बैठ गई। अंकुर उसे सीधे रामचंद्र चौरसिया की दुकान पर ले गया। वहां खोलते तेल की कढ़ाई से छन कर निकल रही हींग वाली कचौड़ियां और ऊपर से डलने वाली वो तीखी आलू चने की सब्जी देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब उसने पहली बाइट ली तो उसकी जुबान तीखेपन से जलने लगी, उफ करने लगी। अंकुर ने तपाक से पत्तल उसकी तरफ सरकाया और कहा, अरे गुरु, ये बनारस की हींग वाली कचौड़ी है। जब तक आंख से पानी और कान से धुआं ना निकले तब तक स्वाद का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तनिक ठहरिए, इसका इलाज भी है हमारे पास। वो दौड़कर बगल के ब्लू लस्सी वाले के यहाँ से कुल्हड़ भर के गाढ़ी मलाई मार के लस्सी ले आया। ऊपर से पड़ी रबड़ी और केसर के लच्छे देखकर उसके चेहरे पर रौनक आ गई। जैसे ही उसने लस्सी की एक घूंट ली उसने आंखें बंद कर ली। अंकुर ने हंसते हुए कहा, कैसा लगा? ये लस्सी जो है ना, ये बनारसी इश्क जैसी ही है। पहले कचौड़ी जैसा तीखा झटका देगी और फिर लस्सी की तरह ऐसा मीठा ठंडी पहुंचाएगी कि आप अपनी दिल्ली भूल जाएंगी। ये शहर तसल्ली का है, यहाँ हड़बड़ी करने वाले का भौकाल टाइट हो जाता है। उसने अपने होठों पर लगी मलाई पोंछते हुए कहा, तुम बनारसी लोग सच में बहुत अतरंगी होते हो, हर बात में एक अलग ही स्वैग है तुम्हारा।
1: पान बनारस वाला खाई के पान।

इठलाती है बल खाती है तन का चंदन वो छलक छलक झलकाती है वो नैन द्वार से तन में आके मन में ज्वाला जगाती है वो चंद्रमुखी है वो मृगनेनी है वो चंद्रमुखी है वो मृगनेनी है वो रूपवती है।

0: छोरा हो छोरा गंगा किनारे वाला हो छोरा गंगा किनारे वाला।
1: आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है बनारसी इश्क। अब तक आपने सुना वो अंकुर को पहली बार घाट की सीढ़ियों पर मिली, थोड़ी बातचीत हुई, दोबारा फिर बनारस की गलियों में मिली। अंकुर ने उसे बनारस दिखाने का प्रपोजल दिया और वो मान गई। अब आगे उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ जैसे सावन में गंगा का पानी बढ़ता है। उसे बनारस को अपनी कैनवस पर उतारना था और अंकुर को उसे अपना बनारस दिखाना था। वो सुबह 4 बजे उठकर सुबह बनारस देखने 80 घाट जाते। जब आसमान में लालिमा बिखरती तो वो चुपचाप अपनी डायरी में कुछ लिखने लगती और अंकुर उसे देखता रहता। फिर वो पप्पू की चाय की दुकान पर जाते। वहां की कड़क इलायची वाली चाय और ब्रेड मक्खन खाते हुए वो अंकुर से यहाँ के इतिहास के बारे में पूछती। एक दोपहर वो BHU के न्यू वीटी के पीछे वाले लॉन में बैठे थे। पेड़ों से छनकर आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अचानक अंकुर से पूछा, तुम हमेशा इतने शांत कैसे रह लेते हो? इस भागती हुई दुनिया में तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि तुम पीछे छूट जाओगे? अंकुर ने सामने उड़ते कबूतरों को देखा, अपने गमछे को कंधे पर सही किया और कहा, देखो ज्यादा लोड नहीं लेने का, ये बनारस है, यहाँ वक्त भागता नहीं है, यहाँ वक्त घाट की सीढ़ियों पर बैठकर सुस्ताता है। जो किस्मत में है वो बाबा विश्वनाथ खुद ढूंढ कर दे देंगे और जो नहीं है उसके पीछे भाग के अपनी किडनी सुखाने का क्या फायदा, लाइफ में चिल रहने का, समझी? उसने अंकुर की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। उसने हौले से अंकुर का हाथ पकड़ा और बोली, काश मैं भी तुम्हारी तरह सोच पाती। उस पल उस ठंडी हवा के बीच अंकुर को महसूस हुआ कि उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं रह गया था, वो अंकुर का बनारसी इश्क बन चुकी थी। बनारस का इश्क सिर्फ हंसने गाने का नाम नहीं है, इसमें एक वैराग्य भी है। एक शाम वो दोनों नाव में बैठकर मणिकर्णिका घाट के सामने से गुजर रहे थे। दूर चिताओं की लपटें आसमान को छू रही थीं। पानी में उन लपटों का अक्स तैर रहा था। उसने डरकर अंकुर के कंधे पर अपना सिर रख दिया और धीरे से बोली, यहां आकर जिंदगी और मौत का अंतर कितना कम लगने लगता है ना? अंकुर ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, यही तो इस शहर का जादू है गुरु, यहाँ मौत भी एक उत्सव है। दुनिया जहां जाकर खत्म होती है, बनारस वहां से शुरू होता है। इसीलिए जब तक जिंदगी है उसे खुल कर जी लो। इस पल में मैं हूं, तुम हो और ये गंगा जी हैं, बाकी सब तो माया है। आज है, कल सा

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है बनारसी इश्क। अब तक आपने सुना गंगा घाट के किनारे अंकुर और वो मिले। वो दिल्ली से आई थी, अंकुर ने उसे पूरा बनारस घुमाया और उन दोनों के बीच दोस्ती से कुछ बढ़कर हो गया। अब आगे, एक शाम उन्होंने एक बूढ़े मल्लाह की नाव किराए पर ली। नाव दशाश्वमेघ घाट से खुली और 80 की तरफ बढ़ने लगी। सूरज डूब रहा था और गंगा का पानी तांबे के रंग जैसा चमक रहा था। उसने बिना अंकुर की तरफ देखे कहा, बनारस एक जादुई आईना है, यहां इंसान अपनी असलियत देख लेता है। तुमने मुझे उस सच से मिलवाया जिससे शायद मैं भाग रही थी। तुमने मुझसे बिना कुछ मांगे जो इश्क किया है, उसने मेरे भीतर के सारे जख्म भर दिए हैं। अंकुर ने घबरा कर कहा, तुम ये बातें ऐसे क्यों कर रही हो जैसे तुम जाने वाली हो? वो सिर्फ मुस्कुराई। उसने अपने दुपट्टे से एक छोटा सा बेलपत्र निकाला, उसे चूमा और गंगा में प्रवाहित कर दिया। विसर्जन सिर्फ मूर्तियों का नहीं होता अंकुर, कभी कभी अपने दुखों का भी विसर्जन करना पड़ता है। उस रात जब वो घाट पर लौटे तो उसने अंकुर को बहुत देर तक देखा, जैसे वो उसके चेहरे का एक एक नक्श अपनी यादों में दर्ज कर रही हो। उसने अंकुर के कंधे पर सिर रखा और वो दोनों सुबह की पहली किरण तक वहीं बैठे रहे। सच तो ये था कि उसका बनारस का सफर खत्म हो रहा था, उसे वापस अपनी दुनिया में दिल्ली लौटना था। उनकी वो आखिरी शाम रामनगर किले के सामने नाव पर बीती। सूरज डूब रहा था और पूरा आसमान सिंदूरी हो गया था। उसने रोते हुए अंकुर से कहा, मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी, पर मेरी दुनिया अलग है, मेरे परिवार के सपने अलग हैं, मैं शायद कभी वापस ना आऊं। अंकुर का दिल अंदर से टूट रहा था, जैसे घाट का कोई पुराना पत्थर भरभरा कर गिर गया हो। पर उसने अपने आंसू छुपाए, एक लंबी सी सांस खींची और मुस्कुरा कर कहा, अरे पगली, रोती काहे हो? बनारस से कोई कभी दूर जाता है क्या? तुम जहां भी रहोगी, तुम्हारे भीतर ये बनारस हमेशा जिंदा रहेगा। वो हींग वाली कचौड़ी की तीखी याद, वो लस्सी की मिठास हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। और हमारा क्या है, हम तो यहीं घाट पर मिलेंगे, चाय का कुल्हड़ थामे और तुम्हारी यादों के साथ। क्योंकि बनारसी जिसका हाथ एक बार पकड़ लेता है ना, उसका साथ सात जन्म तक नहीं छोड़ता, चाहे वो कितनी भी दूर काहे ना चली जाए।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है बनारसी इश्क। अब तक आपने सुना, गंगा घाट के किनारे अंकुर और वो मिले और उनके बीच एक ऐसा एहसास पनपा जो दोस्ती से आगे था। फिर एक दिन उसने उससे कहा कि उसकी दुनिया अलग है और उसे जाना होगा। अब आगे उसने जाते जाते राघव के हाथों में एक चिट्ठी पकड़ाई। उसके चले जाने के बाद राघव ने कांपते हाथों से वो कागज खोला। उस पर उसकी खूबसूरत लिखावट में सिर्फ ये चंद लाइनें लिखी थीं। अंकुर, तुमने मुझे जीना सिखा दिया। मैं जब बनारस आई थी तो शायद अंदर से एकदम खाली थी, पर तुमने अपने निश्चल इश्क से मुझे महादेव का प्रसाद बना दिया। मैं अंदर से भर चुकी हूं। मैं वापस नई ऊर्जा के साथ अपने अधूरे छूटे संसार में वापस जा रही हूं। तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम मुझे ढूंढोगे कहां। मैं तो अब गंगा की हर लहर में और बनारस के इन घाटों के हर पत्थर में हूं। हमने एक दूसरे से यहां पर जो भी बातें की वो इस जन्म के लिए काफी हैं। अंकुर रोया नहीं। बनारस के घाट पर बैठकर कोई रोता नहीं है, क्योंकि यहाँ का हर पत्थर जानता है कि जो आया है उसे जाना ही है। अंकुर ने उस कागज के टुकड़े को अपनी जेब में रख लिया, उसकी खुशबू को अपनी सांसों में भरा और चुपचाप वहां से चल दिया। आज उस बात को कई साल बीत गए हैं। वो आज भी उसी रात के सन्नाटे में घाटों पर जाता है, पर अब अकेला नहीं होता। उसके साथ वो होती है, मौन। उसकी वो बातें होती हैं अंकुर के अंदर। लोग उससे पूछते हैं, अंकुर तुमने कभी शादी क्यों नहीं की? तुम्हारी कोई अधूरी प्रेम कहानी है क्या? अंकुर मुस्कुरा कर रह जाता है। उन्हें कैसे समझाए कि कहानियां इंसानों की होती हैं, जो शुरू और खत्म होती हैं। हमारा तो इश्क था जो बनारस की हवा और मिट्टी में मिलकर इबादत बन गया। वो जहां भी होगी एक मुकम्मल इंसान बनकर जी रही होगी, और मैं यहां खुश हूं क्योंकि महादेव साक्षी हैं। मेरा इश्क जिस्म की सीमाओं से परे रूह का था, और बनारस में जो रूहानी इश्क हो जाता है वो कभी अधूरा नहीं रहता। वो महादेव की तरह अनंत हो जाता है।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी बनारसी इश्क। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: चेहरे पर मासूमियत, आंखों में अनगिनत ख्वाब थे, हर मुस्कान में जैसे हजारों जवाब थे। पर्दे पर आई तो चांद भी शर्मा गया, मधुबाला नाम ही सिनेमा का खूबसूरत गुलाब थी। संघर्ष की राह पर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हर किरदार में अपनी आत्मा पूरी उतारी। दर्द दिल में था मगर चेहरे पर मुस्कान रहती थी, यही उनकी सबसे बड़ी और सच्ची अदाकारी थी।
2: प्रेम मिला, बिछड़ना भी मिला, फिर भी कभी शिकायत न की। जिंदगी ने जितनी परीक्षाएं ली उतनी ही शिद्दत से जी। कम उम्र में दुनिया छोड़ गई पर अमर हो गई, हर पीढ़ी के दिल में अपनी जगह हमेशा के लिए बना गई। मधुबाला हमें सिखाती है कि सुंदरता केवल चेहरे में नहीं होती, सच्ची पहचान इंसान के कर्मों और मुस्कान में होती है। वो आज भी हर दिल में एक चमकता सितारा है, भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत और अमर धरोवर है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
1: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
2: आज लेकर के आ रहे हैं उस सिनेमा की खूबसूरत धरोहर के बारे में, जो कि आज भी हमारे दिलों में सिर्फ एक प्यार भरा जब नाम आता है तो प्यारी सी गुदगुदाहट सी होने लगती है। वो प्यारा सा नाम मधुबाला। मधुबाला के नाम से ही हमारे सामने हमारी एक बहुत ही प्यारी सी प्रकृति सामने आती है, एक खूबसूरत सी प्रकृति, एक खूबसूरत सा चेहरा, एक खूबसूरत सी आवाज़, एक खूबसूरत सी अदाकारा। तो आइए चलते हैं आज के सफ़र में, हम इसी खूबसूरत सफ़र को लेकर के साथ में उनकी कई चीज़ों को, उनके कई बातों को आपके साथ आज हम शेयर करेंगे, उनके जीवन के बारे में, उनकी महकती यादों के बारे में। तो आज का सफ़र होने वाला है भूले बिसरे गीत में मधुबाला को लेकर के। तो आइए पहला गाना सुनते हैं एक प्यारे से गीत को।

0: मधुबाला भारतीय सिनेमा की सबसे सुंदर, प्रतिभाशाली और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उनका असली नाम मुमताज जहां बेगम देहलवी था। उनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने लगभग 22 वर्षों के फिल्मी करियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और आज भी उन्हें भारतीय सिनेमा की अमर अभिनेत्री माना जाता है।
1: मधुबाला का बचपन आर्थिक कठिनाइयों में बीता। उनके पिता की नौकरी छूटने के बाद पूरा परिवार मुंबई आ गया। परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। बाल कलाकार के रूप में उनकी पहली उल्लेखनीय फिल्म बसंत, जो कि 1942 में थी। बाद में निर्देशक किरदास शर्मा ने उन्हें नीलकमल 1947 में पहली बार मुख्य अभिनेत्री में अवसर दिया। तो आइए उन्हीं के फिल्म बसंत से एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: 1954 में आई फिल्म महल ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म का गीत आएगा आने वाला भी बहुत प्रसिद्ध हुआ और मधुबाला की लोकप्रियता पूरे देश में फैल गई। इसके बाद उन्होंने लगातार कई सफल फिल्में दी। इन फिल्मों में उन्होंने रोमांस, कॉमेडी, ऐतिहासिक और गंभीर हर प्रकार की भूमिका निभाई।
1: मधुबाला केवल अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए ही नहीं जानी जाती थी, असल में उनका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर था। बल्कि अपने विनम्र स्वभाव, मधुर मुस्कान और सरल व्यवहार के लिए भी प्रसिद्ध थी। उन्हें अक्सर भारतीय सिनेमा की वीनस कहा जाता था। वे समय की पाबंद, मेहनती और अपने काम के प्रति समर्पित थीं। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाई। वो कहा जाता है ना कि सूरत से सुंदर सीरत होनी चाहिए, और मधुबाला की सीरत उनके व्यक्तित्व का दर्पण थी। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जो कि मधुबाला के दर्पण में उनकी प्यारी सी छवि को दिखाता है।

हमारे भारतीय सिनेमा में प्रेम कहानियों का भी अपना ही दौर है। ऐसी एक प्रेम कहानी थी मधुबाला और दिलीप कुमार जी की, बहुत ही चर्चित। दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक मतभेदों और परिस्थितियों के कारण उनका रिश्ता टूट गया। बाद में उन्होंने 1960 से 61 के आसपास किशोर कुमार से विवाह कर लिया। तो आइए चलिए सुनते हैं मधुबाला जी का एक प्यारा संगीत।

मधुबाला का नाम आज भी भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग की सबसे चमकदार अभिनेत्रियों में लिया जाता है। उनकी फिल्म मुगले आजम में अनारकली का किरदार आज भी अभिनय की महान मिसाल माना जाता है। उनकी मुस्कान, मासूमियत और अभिनय ने उन्हें अमर बना दिया। अगर हम संक्षेप में यूं कहें कि मधुबाला का जीवन एक ऐसी कहानी है जिसमें संघर्ष, सफलता, प्रेम, पीड़ा और अमर विरासत सब कुछ समाहित है। उन्होंने बहुत छोटा जीवन जिया, लेकिन अपने अभिनय और व्यक्तित्व से भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ी। आइए सुनते हैं एक बहुत प्यारा सा गीत उनकी ऐसी अमर फिल्मों में से जो एक है।

0: प्यार किया तो डरना क्या। मुगले आजम फिल्म का ये गाना सिर्फ गाना नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक मील का पत्थर है। इसके पीछे दो सबसे बड़े किस्से बहुत ही मशहूर हैं। नौशाद और गीतकार शकील इस गाने की धुन को और बोल को तैयार कर रहे थे। दोनों पूरी रात जागते रहे लेकिन सही बोल नहीं मिल रहे थे। सुबह तड़के नौशाद को एक लोकगीत की पंक्ति याद आई, प्रेम किया क्या चोरी की। इसी को आधार बनाकर शकील ने तुरंत लिखा, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की।
1: आइए अब मैं आपको बताऊंगी इस गाने में जो कि मधुबाला ने बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर झेला, भारी जंजीरों का असली दर्द उन्होंने अपने ऊपर इस कदर से झेला था कि इस गाने और पूरी फिल्म में जब अनारकली यानी मधुबाला को जेल में दिखाया गया था तो उन पर असली और बेहद भारी लोहे की जंजीरें बांधी गई थीं। मधुबाला उस समय दिल की गंभीर बीमारी से भी जूझ रही थी लेकिन उनके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी और उसके बावजूद इतनी प्यारी अदाकारा होने के साथ साथ इस गाने को आज भी जब भी हम लोग देखते हैं और सुनते हैं तो ज़रा सा भी फील नहीं कर पाते हैं, ज़रा सा महसूस नहीं कर पाते हैं कि इतनी भारी जंजीरों का दर्द उन्होंने कैसे झेला होगा। भारी जंजीरों के कारण उनकी त्वचा भी छिल गई थी और वे दर्द से तड़प रही थीं, लेकिन कैमरे के सामने उन्होंने अपने चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं आने दी। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को एक नए अंदाज में।

एक लड़की भीगी भागी सी, ये बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित और रोमांटिक बारिश के गानों में से एक है। इसके पीछे की कहानी काफ़ी मज़ेदार है। किशोर कुमार हॉलीवुड और वेस्टर्न म्यूज़िक के बहुत बड़े दीवाने थे। वे इस गाने के लिए कुछ अनोखा संगीत चाहते थे। उन्होंने संगीतकार SD वर्मन से जिद की कि गाने की शुरुआत किसी वाद्य यंत्र से नहीं बल्कि गैराज के औजारों की आवाज़ से होनी चाहिए, और फिर वैसा ही हुआ। और जब ये गाना बना और सभी ने सुना तो बहुत ही लोकप्रिय हुआ।

आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, ये सॉन्ग ये गाना तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। और मेरे हिसाब से जब कभी कोई भी रोमांटिक कपल कहीं भी अगर घूमने जाते हैं और ये गाना ना सुने ऐसा हो ही नहीं सकता है। हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गाना आज भी सभी के दिलों को गुदगुदा जाता है। इस गाने ने मधुबाला को उस दौर की सबसे बोल्ड अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया था। एक ही दिन में दो बिल्कुल अलग रूप उनके देखे गए थे। फिल्म के निर्देशक शक्ति सावंत ने बताया था कि जब इस गाने की शूटिंग चल रही थी तब मधुबाला एक ही दिन में दो विपरीत दुनिया की जी रही थी। वे दिन के एक हिस्से में वेस्टर्न शॉर्ट ड्रेस पहनकर क्लब डांसर के रूप में आइए मेहरबा गाने पर थिरकती थी और दिन के दूसरे हिस्से में वे मुगले आजम के सेट पर भारी अनारकली सूट पहनकर प्यार किया तो डरना क्या कि शूटिंग कर रही होती थी। दो अलग अलग किरदारों को इतनी सहजता से निभाना उनकी महानता को दर्शाता है। तो आइए इस प्यारे से गीत को सुनते हैं जो कि है हावड़ा ब्रिज फिल्म से। आप सही बोला, फिल्म

0: मुस्कानों की वो रानी हर दिल की धड़कन थी, रूप पहले पर्दे पर उतारी जो जैसे चांद की किरण थी। हर अदा में जादू था, हर नज़र में प्यार था, मधुबाला का नाम ही सिनेमा का त्यौहार था। दर्द छुपाकर भी उन्होंने हंसना सीखा, हर किरदार में जीवन का रंग सजाया। वक्त ने बहुत कुछ छीना, फिर भी वो मुस्कुराती रहीं, अपनी कला से हर दिल में अपनी जगह बनाती रहीं।
1: मोहब्बत की कहानी थी, उसके संग अमर हो गई, हर गीत हर तस्वीर जैसे सुनहरी सहर हो गई। कम उम्र में चली गई पर यादों में बस गई, पीढ़ियों के दिलों में एक रोशनी बन गई। तो आइए दोस्तों, आज इस सफ़र को यही विराम देते हैं, लेकिन मधुबाला की मुस्कान के संग हम संग मधुबाला की मुस्कान के संग हम सभी उनको सलाम करते हैं, क्योंकि ये वो शख्सियत थी जिनके बहुत सारी ऐसे किरदारों को हमने अलग अलग रूप में देखा। जब वो सेट पे होती थी तब भी मुस्कुराते हुए काम करती थी, जब वो एक गंभीर बड़ी बीमारी के साथ जूझ रही थी तब भी उनके चेहरे पर हमेशा से मुस्कान हुआ करती थी। तो आइए दोस्तों, आज भूले बिसरे गीत को, इस महफिल को यही विराम देते हैं। मैं हूँ आपकी आज ख्वाहिश,
0: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: भूले बिसरे गीतों की ये शाम यही थम जाए, फिर मिलेंगे अगली महफिल में। तब तक आप सभी को शुभरात्रि।
0: शुभरात्रि।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल।

0: लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा, अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं। त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
0: और जेंट्स के लिए,
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ। कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283386।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।